0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिला लीजिए, सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

और 14 जुलाई 2026 के प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और नमस्कार। शुरू करते हैं हम स्थानीय खबरों के साथ। आज 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक बस्ती किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है। मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी रहे हैं। ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित है और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। और फ्रांस में बसे मॉरिशस के लोगों ने नए अवसरों के साथ बनाई नई पहचान लेकिन मातृभूमि से जुड़ाव आज भी कायम है। मॉरिशस में बढ़ती युवा बेरोजगारी के बीच बेहतर अवसरों की तलाश में युवा विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। इस पर हम अपने आने वाली बुलेटिनों में ज़्यादा जानकारी देंगे। और बात करें राष्ट्रीय सभा के बारे में, राष्ट्रीय सभा का सत्र सुबह 11:30 शुरू हो रहा है। पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किया जाएगा। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां, 114 मिलियन रुपये की रकम वाली सूटकेस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या कैसे जैसे मुद्दे शामिल होंगे। तथा मॉरिशस की संसद में आज मंगलवार के सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों से लगभग 50 सवाल पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर

पर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष फिर भड़का है। होर्मुज़ जल मार्ग को लेकर तनाव और गहरा हो गया है। इसी के चलते अमेरिका होर्मुज़ जल मार्ग से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर।

पर दोपहर बाद में पश्चिमी इलाकों में कुछ देर के लिए बादल विकसित होंगे और थोड़ी बारिश होगी। रात के दौरान पूर्वी और ऊंचाई वाली इलाकों में बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:46 पर।

अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताबे विलायत है अजमेर में, ज़ुल्फ़िशां जिसकी किरने कचौचा, मारिफत का समंदर अगर है वहाँ, मौजज़न उसकी लहरें कचौचा में हैं। मोहतरम व मोहतशम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबह अल खैर प्रोग्राम में आपका हम खैर मकदम करते हैं। आज का प्रोग्राम ख़ास हज़रत मखदूम सैदना अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह पर मुश्तमिल होगा, जिन्हें आज हम खिराज अकीदत

सामीन, जैसा कि आगाज़ में हमने आपको बताया कि आज हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस ख़ास प्रोग्राम में हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह को, अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह वो नाम है जो सदियों से हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में गूंज रहा है। यह दरबार है सुल्तान समनान का, जिन्होंने तख्त ताज छोड़कर राह सुकून तरीक़त अख्तियार की। यह दरगाह उस सूफ़ी बासफ़ा की है जिन्होंने अपने इनकलाबी ख्यालात और अंदाज़ फ़िक्र से फ़लसफ़े तसव्वुफ़ को नई बुलंदियाँ अता की। यह आस्ताना है उस फ़कीर बादशाह का जहाँ मांगने वालों की झोलियाँ मुरादों से भर जाती हैं। यह दरबार है जहाँ आकर इंसान अपना दर्द गम भूल जाता है। यह वो खानकाह है रूह आबाद है जिसके दरोबाम से सुकून कल्ब की बारिश बरसती है। और उन जैसा और कौन है हिंदुस्तान में, अशरफ पिया की धूम है सारे जहाँ में।

फरमाया अभी पैदा नहीं हुए हैं, अब मैं गुफ्तगू का आगाज करने चला हूँ, अभी पैदा नहीं हुए हैं, जब इनके वालिद ने हुजूर के कदमों पे सर रख के कहा हुजूर करम फरमाए एक बेटा चाहिए मेरे करीम से घर, पतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कहा हुजूर एक बेटा चाहिए ताकि सल्तनत संभाल ले। आका ने फरमाया इब्राहिम मेरे बेटे तुझे दो बेटे होंगे, एक तेरा होगा एक मेरा होगा, कुर्बान जाए विलादत से पहले तू बेटा मांग रहा है ना, बेटा होगा लेकिन एक नहीं दो, एक तेरे लिए एक हमारे लिए। और फिर कहा जो पहला बेटा हो ना उसका नाम मोहम्मद अशरफ रखना, और जो दूसरा हो उसका नाम मोहम्मद आरफ रखना, वो जो आरफ होंगे वो तेरी सल्तनत संभालेंगे और जो अशरफ होंगे वो मेरी सल्तनत संभालेंगे। बेटा होगा एक नहीं अब दो होंगे, एक दीन वाला होगा और एक तेरी सल्तनत को संभालेगा, एक अल्लाह तबारक व ताला के महबूब की सल्तनत को संभालेगा और एक तेरी सल्तनत को संभालेगा। वही बशारत दे के गए। और उसके बाद कुर्बान जाए जब शिकमे पाक में आमद हुई तो फिर मुबारकबादियों का सिलसिला जारी हुआ, उसकी तरफ मैं नहीं जाता। विलादत के बाद पैदाइश के बाद 14 साल की उम्र में सारे उलूम सीख लिया, 14 साल की उम्र में। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला ने वो मनसब अता किया कि आपको छोटी सी उम्र ही में सिमनान का बादशाह बना दिया गया। सिमनान के बादशाह बने और सिमनान के बादशाह बनने के बाद 12 साल तक आपने हुकूमत की। आप ऐसा नहीं कि एक दो दिन वहां तख्त पे बैठकर निकल गए, 12 साल तक बादशाहत की। और उस बादशाहत का मिजाज ये था, अंदाज ये था कि बादशाह होकर भी भूखे रहकर दूसरों को खिलाते थे, किसी पे जुल्म नहीं होता था, बल्कि आपने अपनी बादशाहत के दिनों में ऐसे फैसले किए हैं कि अकल दंग रहती है। एक वाकया ये हुआ कि आप शिकार के लिए निकले, सिपा साथ में थी, फौज साथ में थी, एक बूढ़ी औरत रोते हुए आई और आने के बाद कहती है ए बादशाह, क्योंकि अब तक लोग उन्हें बादशाही की हैसियत से जानते हैं, ए बादशाह तेरे एक सिपाही ने मेरा दही खा लिया है और जुल्मन खाया, कीमत नहीं दी, इसलिए मैं शिकायत तेरे पास लेकर आई हूं, जानती हूं कि तू बड़ा आदिल है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है। उस वक्त आपने फरमाया ये मेरी जितनी फौज खड़ी है इनमें से कोई है का नहीं, इनमें से कोई नहीं है। दूर से एक आदमी आता हुआ नजर आया शिकार लेकर, बुढ़िया ने कहा वो जो आ रहा है ना वही है, उसी ने मेरी दही छीन कर खाई है और मुझ पे जुल्म किया है। आपने कहा तुमने इस बुढ़िया की दही खाई, उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं खाई, झूठ बोल दिया उसने मैंने नहीं खाई। फरमाया बड़ी भी तेरे पास कोई गवाह है, कोई शाहिद है कि कोई गवाही दे सके कि इसने तेरी दही खाई, का मेरे पास कोई गवाह नहीं, कोई शाहिद नहीं, अल्लाह के सिवा इस बात को कौन जानता है। फरमाया रुक अभी मैं इंसाफ करता हूं और इंसाफ मैं हिकमत से करता हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसी हिकमतें सिखाई है कि मैं उसके जरिए से अभी मालूम कर लूंगा कि दही इसने खाई कि नहीं खाई, क्योंकि दही अगर खाई है तो ज्यादा वक्त तो गुजरा नहीं। आपने लोगों को मक्खियां पकड़ने का हुक्म दिया, चंद मक्खियां पकड़ी गई और उसको हुक्म फरमाया तू मक्खी खाएगा, उसको मक्खी खिलाया, जैसे ही मक्खी हलक के अंदर पहुंची तो मक्खियां खाने के बाद इंसान को उल्टी होती है, उसने मक्खियां जब खाई तो उल्टी हुई, चूंकि दही अभी हजम नहीं हुआ था, जब वो कह करने लगा तो उसमें दही निकलने लगी। आपने कहा झूठ बोलता है, उसका घोड़ा लिया, घोड़े की जीन वगैरह ली, कहा बुढ़िया ये तेरा दही का बदला ले जाए ये तेरे पास है, और उसको कहा आज के बाद तू मेरी फौज में रहने के काबिल नहीं है, और उसको खारिज कर दिया। एक मर्तबा एक सफर के दरमियान आप जंग पर जा रहे थे, एक सफर के दरमियान एक मर्द दरवेश आया और उसने कहा ए बादशाह अशरफ तेरे सिपाहियों में से किसी ने मेरी कुछ रकम चोरी कर ली है। आपने कहा इतने सारे हैं किसने चोरी की है बताओ, कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं

सो रहा था और मेरे पैसे चोरी हो गए, तो मखदूम पाक ने फरमाया अभी मैं इसका फैसला करूंगा। और एक एक को बुलाया और बुलाने के बाद उसके सीने पे हाथ रखा। पता है, अल्लाह अकबर, लोग कहते हैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, अरे खाक तुम्हारी साइकोलॉजी। अल्लाह का वली जितना साइकोलॉजी जानता है दुनिया का कोई इंसान जान ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, लोग जो है चेहरे देखकर कभी कभी बदगुमान होते हैं, लेकिन वली चेहरा भी पढ़ता है, दिल भी पढ़ता है। आप एक एक को बुलाते रहे, सीने पे हाथ रख करके चेक करते रहे, जो मुजरिम नहीं था वो तो यूं ही हटता चला गया, क्योंकि जो मुजरिम नहीं होगा वो बेखौफ होगा। तो जो मुजरिम नहीं था वो हटता चला गया। जब मुजरिम की बारी आई तो उसका दिल धक धक करने लगा। जब दिल धक धक करने लगा सीने पे हाथ रख के, आपने फरमाया मुजरिम तू ही है, पैसे वापस कर। जब उसको टॉर्चर किया गया तो उसके पास पैसे निकले, एक दिरहम कम था, बाकी सारे पैसे निकले। तो लोगों ने पूछा, ओ बादशाह अशरफ, ये तो बता कि आपने सीने पे हाथ रख के कैसे पता किया कि इसी के पास पैसे का, ये मुजरिम था। और जो मुजरिम होता है वो डरता है, तो जब इसका दिल धक धक करने लगा तो मैं जान गया, जब इसका दिल तेजी के साथ बोलने लगा तो मैं जान गया कि यही मुजरिम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये तो बादशाहत के जमाने के फैसले है। अल्लाह अकबर। और उन दिनों हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब तख्त पर जलवागर थे और खल्के खुदा का यूं इंसाफ करते थे, तो अल्लाह अकबर, उनको बातनी तालीम देने के लिए हजरत सैयदना खिजर अलैह सलाम तशरीफ लाते थे। हजरत खिजर ने आपको बातनी तौर पर जो है वो तालीम दी है। और इतना ही नहीं, इसलिए कि अगर कोई बंदा किसी पीर से पहले मुरीद हो जाता है तो उसकी तरबियत पीर करता है, और जो मुरीद नहीं हो पाता तो उसकी तरबियत हजरत खिज्र करते हैं और हजरत उवैसे करनी करते हैं। इसीलिए हजरत मखदूम अशरफ औलिया में उस वली का नाम है जिसकी बातनी तरबियत करने का मामला हजरत खिज्र के हाथ में था और हजरत उवैसे करने के हाथ में था। तो हजरत मखदूम अशरफ को तरबियत दी है हजरत खिज्र अलैहि सलाम और ख्वाजा उवैसे करनी ने। इसीलिए तो मुरीद होने से पहले ही हजारों करामतों का सुदूर है। मुरीद तो बाद में हुए हैं, मुरीद तो बाद में हुए। अरे मुरीद भी शान से हुए कि पीर भी इंतजार करता था। पीर भी जो है वो शहर के बाहर एक कोस आकर के पालकी पे बिठा के ले जाता था। वो तो अलग उनवान है, भी बहुत दूर है वहां पहुंचना। अभी तो ये इब्तदाई दिन है। जब आपने सफर शुरू किया तो अम्मी ने कहा बेटे तू जा रहा है ना, तू जा रहा है तो ऐसे जा फौज फाटे के साथ, मैं समझ लूंगी कि मेरा बेटा जिहाद पर गया है। आपने कहा ठीक है। फौज थी, लोगों को रुखसत करते रहे, कुछ बच गए, जो करीबी लोग थे वो बच गए, तो उनको लेकर मस्जिद में उतरते थे और मस्जिद के सहन में अपनी सवारी के जानवर बांधते थे। दो मौलवी लोग, यानी एक मौलवी वो होता है जो पढ़ता है किताब और उसको किसी अल्लाह वाले की नजर भी मिलती है, यानी किसी पीर का पहचान भी मिलता है, तो वो नहीं बिगड़ता मौलवी, वो मौलाना रोम बन जाता है, वो इमाम अहमद रजा बन जाता है, वो हजरत शेख सादी शिराजी बन जाता है ना। और जिन मौलवियों को सिर्फ किताबी पढ़ना मिलती है, किसी का फैजान नजर नहीं मिलता, तो अबुल फजल बन जाता है, फैजी बन जाता है ना। और इसी तरीके से जो बिगड़े हुए लोग हैं तो फिर वो नबी की तौहीन करता है, वली की तौहीन करता है, ये सब होता है। एक है इल्म और एक है फैजान इल्म। इल्म किताब से मिलता है, फैजान इल्म अदब से मिलता है, अल्लाह वालों की ताजीम से, अदब से मिलता है, उनकी गुलामी से मिलता है। किसी ने कहा ना, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो खिदमत कर फकीरों की। बात तवील हो रही, टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू जल्दी से समेट लूं और आगे बढ़ जाऊं। तो कभी कभी बेचारे दो चार वर्क पढ़ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यही कुल कायनात है, लेकिन उनको नहीं मालूम ये हरूफ के सिवा भी इसके अंदर कोई राज है, और उसके लिए किसी अल्लाह वाले की चौखट चाहिए, किसी वली का स्थान। मौलाना रोम जैसी शख्सियत कहती है मौलवी हरगिज न शुद्ध। मौलाए रोम पूरी जिंदगी इलाहियात का फलसफा पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी गुजर गई, लेकिन कहते हैं जब शम्स तबरेज का दामन मिला तब पता चला कि खुदा की शान क्या है।
और खुद आला हजरत इमाम अहमद

रजा ने भी लिखा, ऐ रजा ये करम है अहमद पाक का, वरना तुम क्या समझते खुदा कौन है। खुदा की मार्फत अल्लाह वालों की चौखट से मिलती, क्योंकि उसका ऐलान है वबतगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले का मतलब नमाज पढ़ो, हम कहते शैतान ने कम पढ़ी थी। बिल्कुल पढ़ो नमाज, नमाज की अहमियत है, नमाज फर्ज है, अफजलुल इबादात है, उसके बगैर तो कोई अमल कबूल ही नहीं है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि इबादत भी खुदा तक पहुंचने का वसीला है, लेकिन उससे मजबूत वसीला अल्लाह वालों की जात है, क्योंकि इबादत मर्दूद है या मकबूल इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अल्लाह वाले मकबूल ही है इसकी गारंटी मौजूद है। एक वक्त आया कि दो लोग बचे, एक वक्त आया कि सब छोड़ दिया, घोड़ा जीन सब खैरात कर दिया, कहां सिमनान की 12 साल हुकूमत और कहां अब सब खैरात किया है जो मां ने दिया था सब, सोते में साथियों को भी छोड़ दिया, पैदल निकल पड़े। लेकिन पैदल देखो अल्लाह की राह में जो कुर्बानी देता है मेरा रब उसे बहुत नवाजता है, पैरों में कांटे भी चुभते तो ऐसा लगता कि जैसे फूल पैरों के नीचे आ गए हैं। ये मखदूम पाक की करामतों से करामत है, और एक खास करामत जो मखदूम पाक की है, क्योंकि आप ईरान से चले ना, समनान ईरान का एक इलाका होता है, ईरान से चले हैं तो कई मुल्कों का आपने सफर किया है, और आपकी खास बात यह थी कि आप जिस मुल्क में जाते अल्लाह आपको उस मुल्क की जबान बोलने की ताकत अता करता। ये नहीं रसूलुल्लाह आपको उर्दू कहां से आ गई, अरे हुजूर उर्दू सीखने किसी मदरसे में जाएंगे खुदा की कसम, जब उनके शहजादे की शान ये है कि जिस सूबे में कदम रखे उस सूबे की जबान बोलने लगे, जिस मुल्क में कदम रखे उस मुल्क की जबान। हम ऐसे ऐसे हीरे की कान रखते हैं, हमें कोई कैसे पीतल पर जो है वो माजल्ला ललचाई हुई तबीयत की तरफ माइल कर सकता है, नहीं नहीं, जो सोना देख चुके हैं वो पीतल पे कभी फिदा नहीं हो सकता, इसलिए कि जौहरी जौहर की गत जानता है, जो जौहर में पला बड़ा हो उसे पता होता है कि जौहर क्या होता है, और वो जौहरी कहलाता बहरहाल। तो मेरे आका पैदल चलने लगे, जिस खित्ते में पहुंचे वहां की जबान बोली, लोगों को मुसलमान भी करते जाते थे, फैजान भी देते जाते थे, और बहुत घूमे। सरकार बंदा नवाज से मुलाकात हुई, हजरत हाफिज शिराजी तो उन्हीं के दर पे रहने वाले एक बुजुर्ग का नाम है। इस तरह बड़े बड़े औलिया अल्लाह से मुलाकात करते करते जब बिहार की सरजमीन पे कदम रखा अपने पीर और मुर्शिद की तलाश में, तो उस वक्त मखदूम बिहार हजरत अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनकी जिंदगी कभी याद दिलाएं तो अर्ज करूंगा, बहुत बड़े बुजुर्ग है, आला इनका दर्जा अल्लाह ने बहुत बुलंदी में अता की है। तो ये उस वक्त बिस्तर पर थे और अपने मुरीदों से कहते थे कि एक मखदूम जाता है, तवज्जो फरमाएं, इन्नल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह जो चाहता है वो होता है, अल्लाह जिसे जो चाहता है देता है। मखदूम बिहार कहते हैं लोगों मेरे मुरीदों, एक मखदूम जाता है दूसरा मखदूम आता है। कहा कौन मखदूम आता है? कहा एक हुसैनी सही नसब सैयद आने वाला है, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, गोरा गोरा रंग है, और उस गोरे रंग की वजह से उसकी दाढ़ी भी लाल है, और वो पान का शौकीन है, पान खाता है, तो उसके होठ पान की खूबसूरती से लाल है, और उसका नाम मोहम्मद अशरफ है, और वो हुसैनी सैयदों में से है। अल्लाहु अकबर, ये यहां तक बता दिया, कभी मुलाकात नहीं हुई, यहां तक बता दिया। देखो अल्लाह वाले ये सब कुछ जानते हैं, अल्लाह वालों को ये सब खबर होती है, अल्लाह के वली वो होते हैं। मुसलमानों औलिया से रिश्ता जोड़ो, फैजान मिलेगा, बरकतें मिलेगी। आज जो तुम तबाही के दहाने पर हो, वलियों से दूर होने की बुनियाद पर हो। अल्लाह अकबर, औलिया अल्लाह से तुम्हें दूर किया जा रहा है, जिनकी करामतें कुरान में बयान हुई, अहदीस में आई है, आओ उन वलियों से रिश्ते उस्तवार करें। और कहा कि उसका नाम ये होगा, और खबरदार मेरी नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा, वही जो हुसैनी सैयद आ रहा है ना, वो सैयद पढ़ाएगा मेरी नमाज जनाजा। और याद रखें, दुनिया में सैयदा फातिमा से लेकर अब तक जितने गौस हुए हैं वो सब नबी के खानदान के हुए हैं। गैर सादात को मकाम गौसियत मिला नहीं, मकाम गौसियत सिर्फ सादात के मुकद्दर में है, सिर्फ सादात के मुकद्दर में। ये रसूलुल्लाह के खून की बरकत है कि और लोगों को इबादत, हजारों दिन इबादत करके जो नहीं मिलता, वो सादात नबी के खानदान वालों को चंद दिन की इबादतों से वो मिल जाता है। ये शान है हुजूर के खून की, ये तासीर है रसूलुल्लाह के खून की, और कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा।

और मकाम गौसियत के लिए अल्लाह ने उस जमाने में मखदूम अशरफ का इंतखाब फरमाया था, क्योंकि वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। और जब आंखें बंद कर ली, मिसाल हो गया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, लेकिन अब जनाजे की नमाज का वक्त आया, तो नमाज जनाजा का टाइम आया, तो सोचा कि पीर की तो वसीयत है। ढूंढने लगे तो देखा कि सामने से खूबसूरत बंदा पैदल चला आता है, तो सलाम किया, पूछा आपका नाम मोहम्मद अशरफ है? कहा जी हाँ। आप सैयद हुसैनी? गर्दन नीची कर ली, कहा कि जी हाँ, ये बरकत भी मुझे हासिल है। और उसके बाद फिर लेकर के गए तो कहा कि नमाज जनाजा पढ़ाइए। कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ाता। कहा हमारे पीर की वसीयत है, आपको पढ़ानी होगी। कहा मैं इस काबिल नहीं, खुदा की कसम, क्या आजिज़ी, क्या आजिज़ी हूँ, यहाँ तो नमाज जनाजा के लिए झगड़े हैं, वहां वसीयत कर गए कि उसी को पढ़ा जिसके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुझको। लोगो अपनी सलाह करो, अल्लाह की तरफ आओ, मौला को राजी करो, उसकी तरफ बढ़ो। कुछ नहीं है दुनिया की झंझट में, कुछ नहीं है माल की लालच में, कुछ नहीं है गुनाहों की लज्जत में, कुछ नहीं है, खुदा से रिश्ता जोड़ो, वहां सारी लज्जतें मिलेगी। कहा हम नहीं पढ़ाएंगे इस काबिल अपने आप को नहीं समझते। कहा नहीं, आपके लिए तो हमारे पीर ने कहा आपको पढ़ाना होगा, पढ़ाइए, आप ही पढ़ाइए। फिर आगे बढ़े, नमाज पढ़ाई, दफन कर दिए गए। हजरत मखदूम बिहार को दफन किया गया, लेकिन जैसे उन्हें दफन किया गया, कब्र अनवर बना दी गई, हजरत मखदूम बिहार का हाथ बाहर आ गया। भाइयों, कब्र इतनी गहरी होती है कि अगर मुर्दा बढ़ा भी दे तो बाहर नहीं आता, लेकिन ये वली की शान है, सुभान अल्लाह। बाहर बाहर आया, मुरीदीन हैरान है कि हाथ बाहर क्यों आया है। ये सारी दास्तान हमारे यही मिलेगी, आपको अहले सुन्नत में मिलेगी, क्योंकि अल्लाह वालों की शान ही जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हादा मिन फज्ल रब्बी, हमारे रब का फज्ल है, हमारे यहाँ कैसे कैसे अल्लाह वाले मौजूद है, अल्लाह के वली, और सिर्फ हमारे यहाँ ही है ये बरकतें, सिर्फ आपको यही। हाथ बाहर आ गया, जब हाथ बाहर आया है, मुरीदीन हैरान, मुतकिदीन हैरान, सब परेशान है, ये क्या हो गया, कोई कुछ जानता नहीं। हुजूर मखदूम पाक के पास आए, और जब हुजूर मखदूम अशरफ के पास आए, तो आने के बाद कहा कि हुजूर, हुजूर असल ये हो गया कि हमारे पीर का हाथ बाहर आ गया, समझ नहीं आता क्यों बाहर आया। आपने आंखें बंद की मुराकबा किया, फरमाया कि तुम्हारे पीर साहब कह रहे हैं कि रिजालुल गैब से इनको कोई टोपी या ताज मिला था, और इन्होंने वसीयत की थी कि बतौर तबरुक इनके कफन में रख देना, तुम हमा हमी में गम में भूल गए, तो वही तो तुम्हारे पीर मांगते हैं कि हमारी अमानत वापस दो। तो लोगों ने कहा सही कहा, अपनी वसीयत तो थी, हम भूल गए, जिंदे भूल गए, कब्र में जाने वाले को याद है, ये अल्लाह के वलियों की शान है। इन्नल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाहु अकबर। जब वो ताज लाया गया और हाथ में रखा गया, तो आपने हाथ अंदर कर लिया, और फिर रूह शरफुद्दीन जय्या मुनीरी मखदूम पाक पर जाहिर हुई और कहा कि मेरा एक जुब्बा है जो बतौर अमानत मैंने रखा था, ए अशरफ, इसके हकदार तुम हो, इसलिए वो जुब्बा तुमको देते हैं, वो खरका तुमको देते हैं, ले लो वो खरका। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया उनके मुरीदीन से कि देखो भाई, मखदूम पाक ने मुझसे कहा कि उनका जुब्बा मुझे दे दो। कहा कि हम कैसे देंगे आपको, इतना सब कुछ देख कर भी जब देने की बात हुई, का कैसे देंगे, हमारे पीर का जुब्बा है। कहा देखो, तुम्हारे पीर की रूह ने मुझसे कहा कि दे दो। कहा नहीं देंगे। कहा फिर एक काम करो, तुम अपने पीर का जुब्बा उठा करके लाओ, उनकी कब्र पे रख दो, वो जिसको चाहेंगे उसको मिलेगा। इसका मतलब आज से 800 साल पहले भी ईमान वालों का यही अकीदा था कि वली कब्र में जाकर भी ताकत दिखा सकता है। ये मखदूम अशरफ का अकीदा है भाइयों, ये तारीख को सल्तनत मखदूम अशरफ का अकीदा है कि वली का पावर कब्र में जाने के बाद भी रहता है। कहा रख दो पीर की कब्र पे जुब्बा, फिर देखो, वो जिसको चाहेंगे उसी को मिलेगा। जुब्बा लाया मुरीदों ने, रखा कब्र पे मुरीदों ने, जब रख दिए गए तो कहा कि अब उठाओ बारी बारी। उठा करके लाए थे ना, उठा करके जुब्बा लाए थे ना, लेकिन जब कब्र पे रखा, एक एक आकर उठाते हो, जुब्बा उठता नहीं, दूसरा के उठाते उठता नहीं, तीसरा उठाते उठता नहीं। उसके बाद आखिरी में मखदूम पाक की बारी आई, जैसे फूल उठाया जाता है वैसे जुब्बा उठा लिया। कहा अब यकीन आ गया। और उसके बाद जब आपने जुब्बा पहना, तो उसके बाद जब जुब्बे के बाद फिर महफिल सजी, और महफिल सजने के बाद जब पढ़ने वालों ने पढ़ा, तो आपको वजद आया, आलम वजद में जुब्बा उतारा और पढ़ने वालों को तोहफतन दे दिया। जब पढ़ने वालों को दिया, तो लोगों ने कहा इतना कीमती जुब्बा, इतनी रूहानियत वाला जुब्बा, और आपने

आकर के पढ़ने वालों को दे दिया, पर मैं जुब्बे में जो था वो सब ले लिया है और जो कपड़ा बचा था वो वापस कर दिया। कपड़े की कोई खसूसियत नहीं होती, वो तो रूहानियत की खसूसियत होती है। जो लेना था वो मिल गया। ये मेरे मखदूमे में क्या क्या अर्ज करूं। अल्लाह इन आकाओं के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए, इनकी बरकतें हमें नसीब फरमाए और दोनों जहान में अल्लाह इनकी गुलामी नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।

सैयद मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह पर अभी आप इरफानी बयान समाप्त कर रहे थे। रब्बे कायनात इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

बचपन ही से सामीन हज़रत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह से हकजोई और खुदा तरसी की निशानियां जाहिर होने लगीं और आप रहमतुल्लाह अलैह उलूम तरीक़त की तरफ माइल नज़र आने लगे। राह मारिफत की कशिश बढ़ती गई। आपके वालिद माजिद सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद 15 बरस की उम्र में हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह सिमना के तख्त हुकूमत पर जलवा अफरोज़ हुए। मौर्य सल्तनत अंजाम देने के साथ साथ हज़रत मखदूम जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी रियाजत भी जारी रखी। इस तरह दिल में इश्क हकीकी की आग रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। कमोबेश आपने 10 साल तक हुकूमत संभाली। एक दिन जब आप एतिकाफ में थे तो आपको ये बशारत हुई कि ऐ अशरफ, हिजाब तख्त व ताज को दूर कर दो, लज्जत विसाल इलाही के लिए तैयार हो जाओ। तजल्लियात बारी तुम्हें अपनी ज़ेर साया लेने वाली है और हुकूमत और बादशाही को छोड़ दो।

सन 808 हिजरी मुहर्रम शरीफ की वो 28वीं तारीख थी जब जुहर की नमाज अदा फरमा कर हज़रत अशरफ मखदूम जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह आलम पनाह में रौनक अफरोज़ हुए। सिमना का यह सुल्तान, दुनियाए रूहानियत का यह आफ्ताब,

विलायत हिदायत के आसमान पर एक नूर बनकर चमका और देखते ही देखते चश्मे आलम से रूपोश हो गए और अपने खालिक कायनात से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत गौसुल आलम महबूब यजदानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्तान आलिया आज भी मलजाए खलाइक है। न जाने कितने औलिया अल्लाह ने इस सरजमीन को अपने लिए रुश्द व हिदायत का मरकज तसव्वुर किया। इस सरजमीन पाक में न जाने कितने शहदा, कितने उलमा, कितने औलिया, कितने कलंदर आसुदे खाक हैं। हज़रत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हर साल कचौचा शरीफ में 25 से 28 मुहर्रम हराम को बड़े तज़क्क़ो एहतिशाम से मनाया जाता है। मुल्क और बैरूनी मुल्क के हज़ारों ज़ायरीन बिला तफरीक़ो मिल्लत उर्स की तकरीबात में शिरकत करते हैं। बिलाशुबा सामीन यहाँ पर आने वाला अपने दामन आरज़ू को बारगाह अशरफ में कुशादा करता है और गौहर मुराद से अपनी खाली झोलियों को भरता है। ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता कलीदे करम कुशा। सामीन हज़रत सैयद मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह पर यह ख़ास प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पसीर हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको ताहियात ऐसे बुजुर्गान दीन से उल्फत मोहब्बत ताल्लुक रखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब तमाम लोगों को उर्से अशरफी मुबारक हो। दुआ में याद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

पिया प्रभु जो मणि यारो वैश हाथ मासड़ी कमरे छे ससुर मधुर झोले लावता जाए छटा एवी छे के आव्या जाने मेघ शोधे छे राधा ने लागतु ना मन प्रीत मा राधा नी थाया मगन दूर थी देखाई राधा रूपाड़ी के जोई ने प्रभु थाया प्रसन्न वगता ढोल बोले छे वासड़ी घेलु थयु छे कोकोड़ सांभड़ी आंखों थी अंतर नी बातो कहवा आव्या राधा रानी एमने सौथी लागे

चढ़े कोटड़ा वाड़ी वाड़ सिंह वाड़ी तू वाग वाड़ी तू जय हो त्रिशूल धारी धारी चंद मुन ना वध पची जगे चामुंडा पूम पाड़ी पाड़ी त्रिकाला दर्शी दूसरो ने भर की एवी तू बावा वाड़ी आंखों में तेज हाथे तलवार जेती सोबे गर्व गिरना तारा पर चामा ते जेचे रखड़ तू बोला भी नजीक उगाड़े सवार बौना पर रख तू जेचे तरस तू आपी दे जड़ तू आपी दे फड़ तू जी दे चढ़ियो हूँ तो आवी ने म

शक्ति। मंगलवार 14 जुलाई दिन के 10:45 हो चुके हैं और रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम को लेकर हम आ चुके हैं आपकी सेवा में। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं जो चलेगा अभी से लेकर दिन के 11:30 तक। अश्रोता, भक्ति की बात करें तो भक्ति ही अपने आप में एक ऐसा मार्ग है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है, और जो भी ईश्वर के समीप रहता है, जिसके भी जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वो जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, वो जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर की कृपा ये होती है कि जो हमें सच्चाई के मार्ग पर बने रहने में हमारी सहायता करती है। तो चलिए ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हुए आज के कार्यक्रम का श्री गणेश हम करते हैं।

चलिए हम भी इन भक्ति गीतों द्वारा ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना ही हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, ईश्वर से प्रार्थना ही हमें जीवन के सभी दुखों से पार लगाने में हमारी सहायता करती है। ये आंतरिक शक्ति ही है जो हमें जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें अच्छाई और बुराई के बीच फर्क करना सिखाती है। यह आंतरिक शक्ति ही है जो हमें इतना दृढ़ बनाती है कि फिर हमें बस उस ईश्वर के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। और कहते हैं ना कि जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो रहा हो जिसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे होते हैं या हमें उत्तर नहीं मिल रहा होता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब हमें अपने आप को, अपनी सभी परेशानियों को, अपनी सभी चिंताओं को, अपने सभी हालातों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर ही है जो हमें मार्ग दिखा सकते हैं।

0: शक्ति।
1: जी हाँ, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सर्वभू। चलिए, ईश्वर को जब भी हम अपने हृदय में बसाते हैं, जब भी हमारे हृदय में ईश्वर का वास होता है, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ईश्वर ही है जो हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर ही है जो हमें सही गलत के बारे में समझाते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर का आशीर्वाद जो प्राप्त कर लेता है, उसे जीवन में और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। और मानव जीवन हमें मिला है, तो मानव जीवन का परम धर्म है एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के जो है सुख में उनकी भागीदारी करना, एक दूसरे के दुख में उनके दुख को बांटना, एक दूसरे की सफलता में एक दूसरे के लिए जो है खुशी की अनुभूति करना। क्योंकि ये सब करके ही हम मानव जीवन को सही जो है प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये जीवन मिला है, तो अच्छे कर्मों द्वारा हमें अपने जीवन को आगे ले जाना चाहिए।

परमेश्वर ने बनाया है, तो यदि कोई संकट वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं संकट के साथ संकट का समाधान भी अवश्य देते हैं। कभी कभार हम उस संकट में, उस परेशानी में इस तरह से गिर जाते हैं कि रास्ता हमारे सामने होता है लेकिन देख कर भी हम देख नहीं पाते हैं। तो बस ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो भी हो रहा है कहते हैं ईश्वर की इच्छा से होता है और उनकी इच्छा से ही हमें जो है सभी चीज़ से हम पार लग पाते हैं।

राम कहो, श्याम कहो, जिस भी नाम से क्यों ना पुकारो, उस ईश्वर को बस सच्चे हृदय से, पूरी आस्था, पूरी लगन, पूरे विश्वास के साथ पुकारो तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता के लिए आ ही जाते हैं। कहते हैं ना कि सृष्टि तो उस परमपिता परमेश्वर

शक्ति श्रोताओ भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप हमारा साथ दे रहे हैं। मंगलवार का दिन है तो चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा हम हनुमान जी का ध्यान करते हुए कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं।

जी हाँ, आज मंगलवार है और मंगलवार का जो दिन है सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के इस भक्ति में शक्ति कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। 11:30 बजे आप चाइनीज़ भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे जिन की प्रस्तुति में, और हमारी आपकी भेंट दोबारा होगी 12 बजे सुहाना सफ़र इस कार्यक्रम में। तो यूँ ही रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिएगा। अभी के लिए नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता। नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मंगलवार सुबह 11:30 बजे से राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किया जा रहा है। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27

0: सवाल पूछे जाएंगे। आपको हम याद दिला देते हैं कि विपक्ष नेता जूली जोगाद के प्रश्न पर उन्होंने जूली जोगाद प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या वे पेंशन प्रणाली के सिलसिले में आयोजित ट्रेड यूनियनों के प्रदर्शन के बाद क्या वे फाइनेंस बिल को सस्पेंड करेंगे, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। इन सवालों में आपको हम याद दिला देती हैं कार्यसूची में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां, 114 मिलियन रुपए की रकम वाली सूटकेस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या जैसे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। रवि राज बिचुक का पिछले 5 वर्षों में मॉरीशस और विदेशों में सामने आए फर्जी पासपोर्ट मामलों का विवरण मांगते हुए इस मुद्दे को उठाएंगे, जबकि विपक्षी सांसद चेतन बाबूलाल प्लास्टिक बोतलों पर लगाए गए 2 रुपए के उत्पाद शुल्क को लेकर सवाल करेंगे और रुबना दोयाओ प्रधानमंत्री से ऑनलाइन नस्लीय घृणा फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सवाल करेंगी। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने पर भी चर्चा करेंगी। आज 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक बास्टिल किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है। मॉरीशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी रहे हैं। ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित है और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। अन्य खबरों में, मेबग में एक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस दल रॉयल रोड मेबग के एक मकान पहुंचा, जहां 37 वर्षीय वासुदेव ओखराज कमरे में बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े मिले। उनकी सांस नहीं चल रही थी, नारी नहीं थी और शरीर ठंडा पड़ चुका था। मौके पर सीपीआर का प्रयास किया गया लेकिन उन्हें बचा नहीं जा सका। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई सचिदानंद ओकाजा ने आरोप लगाया है कि उनके दूसरे भाई अश्विन ओकाजा ने लकड़ी से हमला किया था। सूचना मिलने पर सामीकी चिकित्सकीय टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बाद में मेबक सीआईडी की टीम ने आरोपी अश्विन ओकाजा को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है और दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार होर्मुज जलमार्ग में ईरान द्वारा व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करने और कुछ जहाज़ों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद अमरीका ने हवाई हमलों और समुद्री ड्रोन अभियानों की नई श्रृंखला शुरू की है। इसके चलते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमरीका होर्मुज जलमार्ग से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, बढ़ते हम शोक समाचार की ओर। शोक समाचार सुनिए। मर्डी लेन वाकवा में 61 साल की 61 years old की जैनबी तपसी पैदाश नाम अब्दुल करीम और जिन्हें जैना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 3 बजे इनके शौहर रफीक ममात तपसी के मकान वाकवा से उठाकर दफनाने के लिए बीगा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Mana.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। मंगलवार 14 जुलाई घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:06 रेडियो मनोरंजन पर। चलिए एक बार फिर से मौका मिला है हमें हमारे सभी लिसनर्स के साथ जुड़ने का, तो हम आ गए हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम यहाँ पर सुहाना सफ़र लेकर। सो उम्मीद करते हैं ये जो दिन है बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और अभी से लेकर 2 बजे तक खूबसूरत एवरग्रीन तराने आपके लिए यहाँ पर हम चलाएँगे, साथ ही में इंक्लूड करेंगे आपके डेडिकेशंस, आपकी फरमाइशें, और साथ ही थोड़ी देर में हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे। तो देर किस बात की है, बस जुड़ जाइए हमारे

साथ इस सुहाना सफर प्रोग्राम में चलिए साथ में मिलकर इस खूबसूरत सफर को हम और भी लवली और भी हसीन और भी यादगार करेंगे। और चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं रफी साहब की आवाज में इस खूबसूरत गीत के साथ।

चलिए सुहाना सफ़र का ये जो खूबसूरत सफ़र है, यहाँ पर आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, आपकी फरमाइश, आपके डेडिकेशंस हम तक पहुँच रहे हैं। और ऐसे में इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी हैं, तो जितने फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का भी वेलकम हम करते हैं। दोपहर का ये जो वक्त होता है, इस समय हम लंच करते करते जो है जुड़ रहे हैं बहुत सारे हमारे लिसनर्स और फॉलोअर्स, सो आप सभी को बुना पीछे शुभ आहार हम कहेंगे। और चलिए यहाँ पर अच्छे गाने हो तो समय अच्छे से बीत ही जाता है ना। सो चलिए सुहाना सफर ये जो प्रोग्राम है इसमें अगला तराना जो है परख फिल्म का ये गीत होगा, किशोर दा और हेमलता की आवाज़ों में गाना यहाँ पर जाता है। वीना जी आपके नाम नोवेल फ्रांस से हमारे साथ जुड़ी हुई है और ये गाना बड़े ही प्यार से वो अपने हस्बैंड देव के लिए रिक्वेस्ट कर रही है।

0: चलिए इन गानों को सुनकर दिल खो ही जाता है ना, न जाने कितनी यादें, कितनी मेमोरीज जैसे कि आ जाती है इन पुराने गानों को सुनकर।
1: सुहाना सफर,
0: चलिए कोई गाना आप भी सुनना चाहते हैं या किसी का नाम करना चाहते हैं, बेशक हमारा साथ दीजिए इन सुहाना सफ़र। जितने भी सुनने वाले साथ जुड़े हैं आप सभी का वेलकम है, और साथ ही इस समय हम हमारे रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, तो आप यहां पर भी हमारा साथ दे सकते हैं। दोपहर के 2 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है ऑन रेडियो मनोरंजन। चलिए शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, मनोज है, रिबेल है, कल्याणी जी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया, पिया जी अगला गाना आपके नाम और पूरे परिवार के नाम, अनुपमा फिल्म का ये तराना है, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है तो चलिए जैसी जिसका भी इंतज़ार आपको है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो, आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। कविता अनु जी यही गाना आपके नाम, स्वीटी जी आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया, रजनी जी आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं, हेलो कुसुम, जितेन है, मीरा है, एस नंद है, लवेना जी अगला गाना विकेश विकास बिगो के नाम जो फौजी साग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही आपकी मामा आशा के लिए जो पिचिराफ्रे से हमारा साथ दे रही है। पिया जी अभी तो आपने अनुपमा मूवी का गाना मांगा, अभी तो हमने चलाया भी नहीं, आपने दूसरे गाने की फरमाइश कर दी। चलिए कोशिश करेंगे अगर मौका मिला दोस्ती फिल्म का गाना चलाने के। यस रिबेल आपने सही कहा, आरोही है आपका नाम, रुजबल से आप हमारा साथ दे रही है, थैंक यू सो मच। रोहित यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राधे राधे आपको भी रोहित जी, सुरीनाम से आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो चलिए अनुपमा फिल्म का ये गाना आप सभी

0: RM3 Radio.
1: चलिए यहाँ पर देखते ही देखते दोपहर के 12:30 बज चुके हैं एंड दिस इज़ योर सुहाना सफ़र ऑन रेडियो मनोरंजन। और आजकल तो शादियों का सीज़न चल रहा है, हर वीकेंड न जाने कितनी शादियों के इनविटेशन मिलते हैं, कितनी शादियों में जाना पड़ता है। सो जितने भी लवली कपल्स हैं जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं, आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेज आप सभी को। और ये गाना आप सबके नाम सौतन फिल्म से लिया गया, लता जी किशोरदा और साथियों की आवाज़ों में।

0: और चलिए यहाँ पर चाय की बात होते ही मेरी खुशी जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
1: सुहाना सफर,
0: और जो लोग मुझे जानते हैं इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर जीजा जी सल्तू अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे आपको सल्तू जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं खासकर माधुरी जी की ओर से, बेस्ट विशेस पूरे परिवार की ओर से। और यहाँ पर रीमा जरी अपना बर्थडे मना रही है। रीमा जी आपको हैप्पी बर्थडे आपके मामा माला की ओर से, आपके पापा की ओर से और पूरे जरी परिवार की ओर से पिछली राफ्रे से ढेर सारी शुभकामनाएं आई हैं आपके नाम। और जितने भी लिसनर्स, जितने भी हमारे फॉलोअर्स आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। यकीनन बर्थडे का मौका बहुत ही खास होता है, बहुत ही स्पेशल होता है, और मुझे तो बर्थडे बचपन से ही पसंद है सेलिब्रेट करना। आप बताएं आप अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं। चलिए अभी के लिए आई मिलन की बेला फिल्म का ये तराना है उन सभी के नाम जिनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी हाँ, आई मिलन की बेला फिल्म का ये सदाबहार गीत, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बेशक ये सारे गाने टाइमलेस क्लासिक्स हैं, आज भी जिन्हें सुनते हैं तो मानो वही खुशी महसूस होती है।

चलिए खुशी की बात है कि इस समय हमारे सभी सुनने वाले और सभी फॉलोअर्स भी साथ दे रहे हैं। वी हैव यालेश सी रतन आशा जी हमारा साथ दे रही है, गाना जाता है यहाँ पर गिरीश और आशा आपके नाम, शारदा है यहाँ पर, एक सुमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है टिकटॉक के ज़रिए, तो आपका भी वेलकम हम करते हैं। हेलो मेधा जी, आपने जो गाना मांगा मेधा जी वो 90s का गाना है जो इस प्रोग्राम में हम शामिल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल किसी दिन अगर हम दिलों की आवाज़ प्रोग्राम कर रहे तो उसमें ज़रूर इंक्लूड करेंगे। कुर्सी जी ऑस्ट्रेलिया से हमारा साथ दे रहे हैं इसके लिए शुक्रिया। रंजीत जी थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। वीमी अपादू जी हमारे साथ जुड़ी है, गाना जाता है यहाँ पर बेटे पृथ्वी के लिए, साथ में यादव है, डॉटर इन लॉ है येशना, सभी कनाडा से हमारा साथ दे रहे हैं। हाय शवि कुलराज जी आपका भी वेलकम है। वी हैव गिरीश, वी हैव यश, इस समय प्रेमिला किम करण जी हमारे साथ जुड़ी हुई है वाकवा से, रोमांटिक सा गाना लव राज गुमानी के नाम, बिल्कुल अगला गाना यहाँ पर अनीता जी आपके लिए भी हम करते हैं, और यहाँ पर यही गाना जो अब चलने वाला है शैलेंद्र जी आपके नाम भी करते हैं, रुखसत फिल्म का ये तराना है, और यहाँ पर जो है साकुन जी आपकी ओर से ये अगला खूबसूरत सा तराना आपके पति के नाम जो थोड़े से बीमार है, तो हम विश करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अनीता जी आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करुणा जी आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो थैंक यू सो सो मच। आरती जी गाना जाता है आपकी ओर से आपके फैमिली के लिए, आपके हस्बैंड है संजीव, साथ में है आपके दो बेटे भविष्य है, बहू है प्रीति, साथ में है यश, और चलिए यहाँ पर माधुरी जी आपका साथ हमें मिल रहा है इसके लिए धन्यवाद, और ये गाना चल पड़ा यहाँ पर रुखसत फिल्म का आप सभी के लिए।

और यहाँ पर बर्थ यहाँ पर सिस्टर इंदिरा अपना बर्थडे मना रही हैं, तो आपको बर्थडे की शुभकामनाएं। साथ में ऑस्ट्रेलिया से संगीता जी भी हमारा साथ दे रही है।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर जी हाँ हाँ यहाँ पर छूटे गाना साथ हमारा जन्म जन्म जन्म के साथ का तो पता नहीं है लेकिन अभी के लिए दो बजे तक तो हम आपका साथ ज़रूर देंगे यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर इन सुहाना सफ़र और चलिए यहाँ पर अगला गाना यहाँ पर अ स्वीट सॉन्ग मेरे पोते अंतिश और बहू मनीषा के लिए ओके इनकी शादी की सालगिरह है शुभकामनाएं पापा राज मामा अनीता देवर अंकुश देवरानी आशिमा बेटे आंच बेटी हिमेशा साथ में आद्या है और जो है ये जो खूबसूरत सा तराना है आपके नाम जाता है और यहाँ पर इसी गाने को हम परी जी आपके नाम करते हैं इंदिरा जी और राजेश जी यही गाना आप लोगों के लिए भी प्रेमिला जी ये गाना आपकी ओर से राज के नाम शोभा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है तो चलिए इस गाने को आपके लिए भी हम करते हैं बेबी जेन हमारे साथ जुड़ चुकी है और अगला तराना दीप्ति गंदावरी आपके नाम आपके फैमिली और सभी फ्रेंड्स के लिए नाइमा आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्रिस्टीन मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं क्रिस्टीन जी फिरोज खान का कोई गाना और राइट थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे धर्मात्मा फिल्म का गाना अगर हमें चलाने का मौका मिला तो यशवंत जी आपके नाम हम ज़रूर करेंगे यस इनको हम हैप्पी बर्थडे कह चुके हैं नंदेव जी को एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे नंदेव जी अमीगो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं ऑलराइट सो जितने भी हमारे लिसनर्स हमारे फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया बॉम्बू से दनेश्वर जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है और गाना जाता है आपकी प्यारी पत्नी सुनीता के नाम सभी देवदोस्त परिवारों के नाम ये तराना चल पड़ा एक नहीं कई जन्मों का तेरा मेरा साथ है रविंद्र जैन और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा तराना उन सभी के नाम जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं

0: बिल्कुल एक नहीं कई जन्मों का तेरा मेरा साथ है और चलिए यहाँ पर ऐसे ही हमारा और आपका साथ बना रहने वाला है दोपहर के 2 बजे तक और इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर और समाचारों के उस पार जो है सुहाना सफर ये जो प्रोग्राम जारी रहेगा और अभी जो तराना हम चलाने वाले हैं धर्मात्मा फिल्म का ये गाना है मुकेश साहब और कंचन जी की आवाज़ों में गाना यशवंत जी आपके नाम हम करते हैं कुतेज से आप हमारा साथ दे रहे हैं और इस समय जितने भी हमारे सुनने वाले साथ जुड़े हैं आपके लिए भी ये खूबसूरत सा तराना चल पड़ा
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan
0: ये गाना शोभा जी आपके लिए भी वाकवा से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: देश विदेश की खबरें सुनते हैं आपसे सुबहरा नमस्कार आपको
3: नमस्कार आदाब राष्ट्रसभा में आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित रहा बजट 2026-2027 के सिलसिले में घोषित कदमों में बदलावों को लेकर जूली जोंगो ने स्पष्टीकरण चाहा अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि 500 घोषित कदमों में से सिर्फ एक कदम पर दोबारा गौर किया जा रहा है यानी स्टेट एज पेंशन के लिए मीन्स टेस्ट का रद्द किया जाना उन्होंने इस फैसले के संदर्भ में कई कमेटियों के क्याम का भी ऐलान किया राष्ट्रसभा में ही आज मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर बहसें की जा रही हैं जो भूमि और आवास मंत्रालय के अंतर्गत पेश किया गया है आज 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है और मॉरिशस और फ्रांस के बीच सदियों पुराना रिश्ता है उस वक्त से जब टापू में फ्रांसीसी हुकूमत थी मॉरिशस में आज गुजरे जमानों के बावजूद फ्रांसीसी प्रतीक और विरासतें जिंदा हैं इन गहरे संबंधों के आधार पर हमारे देश और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ क्षेत्रों में साझेदारी बरकरार है आज सापसी वाई टोली मेमोजिन नामी प्रोग्राम पेश करेगी रोश ब्रुले में आयोजित की जाने वाली इस गतिविधि में गास्तों वाला

0: बाइडेन और जॉन कातिया भी हिस्सा लेने वाले हैं। उमर रची मोलिस के आयोजक हैं। विदेश में ईरानी ताकतों ने अबनाए हॉर्मूज में यूएई के दो टैंकरों को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात को हमले किए हैं। ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में भी अमेरिकी सहूलतों पर हमले किए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। Avenue Simonette Kanot में 75 साल के 75 years old श्री बलराम कुदनी जो ब्लूका के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही कल सुबह 10 बजे इनके घर एवेन्यू सिमोनेट कानोट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताज साहब या बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। वन वे स्ट्रीट शिमे ग्रोनी में 64 साल की 64 years old श्रीमती बिंता रंगासामी पैदाइशी नाम तिहा जो सुरेखा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही कल दोपहर के दो बजे इनके पति सदा रंगासामी के घर वन वे स्ट्रीट शिमे ग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। मॉडेलिन वाकुआ में 61 साल की 61 years old मोहतरमा जनाइबी तेप्सी पैदाइशी नाम अब्दुल करीम जो जैना के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दोपहर तीन बजे इनके शौहर रफीक महमूद तेप्सी के घर मॉडेलिन वाकुआ से उठाकर दफनाने के लिए बीगागा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। Funeral today at 3 p.m. शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: You're listening to RM3 Radio. My

सुहाना सफर सुहाना सफर ट्यूसडे 14th ऑफ जुलाई घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 1:05 समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है ऑन रेडियो मनोरंजन और ये सुहाना सफर का सेकंड आवर है बड़े ही प्यार से आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे लिसनर्स तो हमारे साथ जुड़े ही हैं हमारे रेडियो के जरिए एमबीसी प्ले ऐप के जरिए और साथ ही यहां पर आप हमारा साथ दे रहे हैं टिकटॉक के इस लाइव के जरिए इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया और चलिए यहां पर गानों का ये जो कारवा है सुहाना सफर ये जो प्रोग्राम है इसे आगे ले जाते हैं उम्मीद करते हैं ये जो सफ़र है आप लोगों के लिए भी बहुत ही यादगार साबित हो रहा होगा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ये जो गाना है अभी हमसे किसी ने तो रिक्वेस्ट की थी इंदिरा जी ने है ना तो चलिए इंदिरा जी ये गाना आपके लिए हम करते हैं और यहाँ पर अगला गाना जाता है मामा के नाम विमला आपादव की ओर से मामा के लिए सिस्टर है प्रिया साथ में है रेशमा ब्रिटानिया से हमें सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ दे रहे हैं अमी चांद जी फिजी से हमारे साथ जुड़ी हुई है अगला गाना आपके लिए भी हम करते हैं और यहाँ पर चलिए इस गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हुए विजया जी आपको भी हम नहीं भूले हैं लीना जी आपका भी साथ मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साइलेश जी यही तराना आपके लिए भी हम करते हैं दीप्ति जी थैंक यू सो मच गानों को पसंद करने के लिए ललिता जी वाकवा से साथ दे रही है गानों का सिलेक्शन आपको अच्छा लग रहा है थैंक यू वेरी मच हॉलैंड से इस समय मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मनोज जी आपके प्यार भरे साथ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप कह रहे बहुत गर्मी है वहाँ पर चलिए आप अपना ख्याल रखिए यहाँ पर मनु बाला जी हाय आपका भी मैसेज हमें मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए अगला गाना आरती जी आपके नाम और आपकी ओर से आपके हस्बैंड संजीव के लिए ये गाना चल पड़ा कभी कभी फिल्म का ये टाइटल ट्रैक लताजी मुकेश साहब की आवाज़ों में

0: सुहाना सफर
1: सुहाना। जी हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो चलिए ख्यालों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। और आज सतीश जी और सुनीता रामसरन जी दोनों शादी की 35वीं सालगिरह मना रहे हैं। 35 years of togetherness, wow। तो चलिए सतीश जी और सुनीता जी, आप दोनों को ढेर सारी बेस्ट विशेस पूरे रामसरन परिवार की ओर से। मौदालबेयर से आपके सभी फैमिली मेंबर्स ने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। यहाँ पर रेखा जी, आपकी मामा और आपकी बहन दोनों ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो अगला गाना इन दोनों के नाम भी होगा। जफर जी, आपकी वाइफ सीमा का बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे आपकी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से, हैप्पी बर्थडे सीमा जी। रॉक गंगाराम जी, अगला गाना लव स्टोरी फिल्म का तराना है ऑब्वियसली, जिसमें कुमार गौरव नजर आए थे, ये तराना आपके नाम और सभी गंगाराम परिवार के नाम। तैयब जी, रीता जी, किरण जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूज़र 46456 इस समय गंगा तालाब में काम कर रहे हैं और गाना आपके सभी दोस्तों के नाम जाता है। प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए। वी हैव सुनीता, वी हैव राज, पेरिस से क्रेयों

1966 हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉक ये गाना जाता है आपकी बहन इंदिरा रुक्मिन के नाम, जिनका जन्मदिन है। ऑल राइट, ओके, सो आपको ये बहन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रीति जी, थैंक यू सो मच इस लाइव को शेयर करने के लिए। मुन एंड कृष्णा जी, आप अभी हमारा साथ दे रहे हैं। संगीता सुकारी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। हाय सूर्या जी, कैसे हैं आप? और चलिए यहाँ पर गानों का ये जो तराना है इसे आगे ले जाते हुए, लव स्टोरी फिल्म का ये तराना आप सभी के नाम करते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाने गीतों का ये जो सफर है ये जारी है रेडियो मनोरंजन पर, और आप लोगों के साथ समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता, देखते ही देखते यहाँ पर दोपहर के 1:20 ऑलरेडी होने को है। और चलिए गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। लेकिन पुराने गाने कुछ ऐसे हैं कि किस फिल्म से है, किसने गाया था, उस गाने में कौन नज़र आए थे, किस एक्टर का स्टाइल कैसा था, सब कुछ हमें याद होता है ना। और अभी कुछ नए गानों की बात करें तो कानों पर पड़ के लगता है कि गाया किसने है, इसमें कौन नज़र आए हैं, कितना फ़र्क है। ये बात नहीं है कि नए गाने अच्छे नहीं होते, नए गाने भी कुछ गाने काफ़ी लाजवाब है नो डाउट, लेकिन पुराने गानों की बात ही और है ना। जैसे कि जो अगला गाना हम चलाने वाले हैं, यादों की बारात फिल्म का ये तराना है, और शायद ही कोई होगा जो यादों की बारात इस फिल्म को नहीं पसंद करता है, यादों की बारात इस फिल्म के गानों को नहीं पसंद करता है। तो अगला जो तराना है एक बहुत ही पॉपुलर गाना है, आशा जी रफ़ी साहब की आवाज़ों में चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दीवा गर्ल। इस समय यूके से हमारे साथ जुड़ी हुई है, गाना जाता है आपके नाम, इम्तियाज़ अली जी यही गाना आपके नाम भी, संगीता है, जीतेन है, फिजी से हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं, वी हैव सूर्या, वी हैव बाबा राकेश, साथ में करिश्मा है, वीना जी आप भी लंदन से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाता है आपकी मामा प्रियंबदा के नाम, आपके पापा बिसुन के नाम, सभी रामलोल परिवार के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं। रीना जी गाना आपके प्यारे हस्बैंड के लिए, साथ में वीमा है, शामिला है, इब्राहिम जी है, मनी प्रिया जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, जो गाना आपने मांगा हम कोशिश करेंगे इस गाने को थोड़ी देर में चलाने की मौका मिला तो। नाज यहाँ पर हमारा साथ दे रही है, नाज जी अगला गाना आपके नाम भी हम करते हैं, राहुल फिल्म का तराना। नाज जी राहुल फिल्म का गाना तो इस प्रोग्राम में हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि इस प्रोग्राम में हम बस पुराने गाने चलाते हैं। राइट, और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हमारे इस लाइव को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा जी मामी के नाम एक गाना, सीता है, और आपके सिस्टर इन लॉ संजना के नाम, बिल्कुल। सूरज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू। तो चलिए गाना चल पड़ा।

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए यकीनन ये जो गाने हैं दिल चुरा ही लेते हैं, है ही इतने खूबसूरत के क्या कहे, है ना। तो चलिए गानों का ये जो कारवा है इसमें जोड़ते हैं इस अगले तराने को, और अगला तराना जो है हमारे इस समय निर्मला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान बिहारी जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, वाइफ सबिता है, साथ में सिस्टर इन लॉ है गीता, संजीव, सुनील, रानी, शीतल, सभी बड़े ही प्यार से सुन रहे हैं हमें। एंड इस समय लाइव पर हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं, फिजी से हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स है, वी हैव रोहिणी, लता, साथ में यहाँ पर संजू जी मिलान से हमारा साथ दे रहे हैं, रजनी जी है, मिस्टर तरुण है, राज है, इंदिरा है, कवि है, और पूजा जी ये जो अगला तराना है आपके नाम तुमने मुझे देखा, खासकर आपके मामा सिमी के लिए, साथ में इंदिरा है और कविता जी भी है। सिडनी से इस समय रोहिणी जी साथ दे रही है, ओके रोहिणी जी सिडनी से साथ दे रही है हमें, लेकिन है वो फिजी से, और राइट माला जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आपके बेटी को, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से। इंदिरा लौटन जी बिल्कुल ये अगला गाना आपके नाम हम करते हैं और चलिए आपके प्यार भरे मैसेजेस के

शुक्रिया आपके डेडिकेशंस के लिए शुक्रिया गिरीश जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए अनिल राम भजन जी हेलो कैसे हैं आप ठीक तो है ना थैंक यू आशा जी और चलिए दोपहर का वक्त और ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं तो मानो एक अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं है ना सो वी हैव स्वीटी एंजल वी हैव ज्योति नीलिमा जी अगला गाना आपके नाम ओह यानी कि सवेरे आप आज की चर्चा प्रोग्राम से जुड़ी थी और आपको प्रोग्राम अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच आज सवेरे जो प्रोग्राम था वो इंटरनेशनल डे ऑफ होप पर था जो 12 जुलाई को मनाया गया था कवि शिरीष जी ओह थैंक यू सो मच कवि शिरीष जी तो चलिए यहाँ पर अगले गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं तीसरी मंजिल फिल्म का ये तराना है रफ़ी साहब और साथियों की आवाज़ों में तुमने मुझे देखा चलिए अभी की तो हम तो नहीं देख पा रहे हमारे फॉलोअर्स को लेकिन हमारे फॉलोअर्स जो है बेशक टिकटॉक के ज़रिए हमें देख पा रहे हैं और साथ ही रेडियो के ज़रिए हमारे तमाम लिसनर्स हमें सुन रहे हैं शुक्रिया

0: सफर।
1: चलिए खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है इसमें आप जुड़ते जा रहे हैं, गानों को पसंद करते जा रहे हैं। ऐसे भी जितने भी गाने यहाँ पर चल रहे हैं वो आप ही की पसंद पर तो हम चला रहे हैं, आप ही की तो रिक्वेस्ट पर हम चला रहे हैं। जैसे कि जो अगला गाना है, हम किसी से कम नहीं फिल्म का तराना है, क्या हुआ तेरा वादा। और ये गाना जाई आपके नाम हम करते हैं, मोस्ट वेलकम आपके मैसेज के लिए। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहिनी दीनू जी यही गाना आपके लिए भी। पिया जी आपने कहा कि आपकी पसंद इस प्रोग्राम में बच्चों के लिए कोई गाना, आपकी पसंद प्रोग्राम हम गुरुवार को करेंगे तो उस दिन बिल्कुल हम आपके लिए गाना ज़रूर जोड़ेंगे। कसनिया जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं आप ठीक है। और चलिए जितने भी लोगों की गानों की रिक्वेस्ट यहाँ पूरी हो रही है, सभी थैंक यू कह रहे, तो मोस्ट वेलकम आपको। हमारी कोशिश होती है कि सभी के सभी रिक्वेस्ट को समय रहते हम पूरा कर पाए। हाँ कभी कभार हो जाता है, कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट होते हैं तो सभी रिक्वेस्ट को हम शामिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगली बार जब आते हैं तो ज़रूर उन गानों को चलाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर पूजा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा आपको। जिद्दी का कोई गाना, ऑलराइट हम कोशिश करेंगे। नीलिमा जी अगला गाना आपके हस्बैंड राकेश के नाम, मेरे हम सफ़र, ऑलराइट मौका मिला तो इसे हम ज़रूर चलाएंगे। मिडलैंड्स में वो इस समय काम कर रहे हैं। पिया तू अब तो आ जा, ओके ज़रूर टाइम मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। माधुरी को मैं भूल गई, ऐसे कैसे हो सकता है, माधुरी को मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। माधुरी जी हमें पता है आप यहाँ पर हमारे साथ साथ है और साथ साथ रहेंगी। प्रीति चामरू जी आप भी हमारा साथ दे रही है, तो चलिए चल पड़ा है ये पॉपुलर गाना, क्या हुआ तेरा वादा, फ्रॉम द मूवी हम किसी से कम नहीं। ऐसे हम भी किसी से कम नहीं हैं।

0: सुहाना सफर।
1: यकीनन ऐसा होता है कि वादे जब आप करते हैं तो वादों को तोड़ना नहीं चाहिए, और यहाँ पर हमारी भी कोशिश है कि सभी की सभी फरमाइशों को हम पूरा करें। हम तो वादा तो नहीं करते लेकिन कोशिश हम ज़रूर करते हैं। अच्छा, चलिए, ठोकर फिल्म का ये अगला गाना है, जाता है खासकर माधुरी जी आपके नाम, आपके जीजा जी जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए, रिया बंधन जी आपके लिए, ज्योति जी आपको भी हम नहीं भूले हैं, इम्तियाज़ अली जी, फिल्म कौन सी फिल्म आपने मांगी है मुझे नहीं पता पतर पर, चलिए जो अगला गाना है आप के नाम हम करते हैं। फातिमा जी हेलो, आप हमारे साथ जुड़ चुकी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर विमला जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, उमा जी क्यूपिप से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और चलिए ये गाना यहाँ पर आप सभी के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ में, और

0: RM3 Radio.
1: और चले यहाँ पर RM3 रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर ये प्रोग्राम चल रहा है और अगला जो गाना है बहुत ही खूबसूरत सा नजराना है भूपिंदर सिंह जी की आवाज़ है दिल ढूंढता है फिर वही फुरकत के रात दिन आप सभी के नाम यहाँ पर ये गाना जाता है सुनीता जी ग्रुआंगुप से हमेशा हमारा साथ देती है और कहती है कि बस किसी भी गाने में हमारा नाम जोड़ दे ऐसे माला जरी जी इस समय हमारा साथ दे रही है लेकिन कटरबोन से एक माला जी है माला सुमारू जी वो भी हमारे साथ साथ रहती है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चलिए ये गाना आप सभी के नाम और यहाँ पर जो है हमारे साथ एक नाम हम जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं पोटलू इससे मुझे वो नाम अभी याद नहीं आ रहा है आपके नाम भी ये गाना

0: चलिए, हमें यकीन है कि ये जो 2 घंटे का सफ़र रहा वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहा होगा इन गानों के ज़रिए। सुहाना सफ़र इस
1: सफर।
0: एंड विद दिस हम जो है सुहाना सफर इस प्रोग्राम के एंड तक आ गए हैं, और यहाँ पर आप सभी लवली लिसनर्स का, आप सभी लवली फॉलोअर्स का साथ हमें मिला। जाते जाते ये आखिरी गाना आप सभी के नाम हम करते हैं, जल्द फिर जुड़ेंगे रेडियो मनोरंजन पर आप सबके साथ, ऐसे ही खूबसूरत गानों का सफर लेकर आएंगे। और चलिए जाते जाते आपको बता दें 2 बजे आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद आप सुन पाएंगे उड़ान की कहानी इस प्रोग्राम को रत्ना की प्रस्तुति में। तो हमें दीजिए इजाज़त अभी के लिए, नमस्कार आप सभी को, ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिएगा, साथ देते रहिएगा, धन्यवाद।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. देश विदेश की खबरें सुनते हैं एक बार फिर आपसे सुमेरा नमस्कार आपको
1: नमस्कार आदाब आज 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है मॉरिशस और फ्रांस के बीच सदियों पुराना रिश्ता है उस वक्त से जब टापू में फ्रांसीसी हुकूमत थी मॉरिशस में आज गुजरे जमानों के बावजूद फ्रांसीसी प्रतीक और विरासतें जिंदा हैं इन गहरे संबंधों के आधार पर हमारे देश और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ क्षेत्रों में साझेदारी है राष्ट्रीय सभा में आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित रहा बजट 2026-2027 के सिलसिले में घोषित कदमों में बदलावों को लेकर जुले जोंगों ने स्पष्टीकरण चाहा अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा कि 500 घोषित कदमों में से सिर्फ एक कदम पर दोबारा गौर किया जा रहा है यानी स्टेट एज पेंशन के लिए मीन्स टेस्ट का रद्द किया जाना उन्होंने इस फैसले के संदर्भ में कई कमेटियों के क्याम का भी ऐलान किया आज सापसी वाई टोली मेमोर जेनोसिड नामी प्रोग्राम पेश करेगी रोश ब्रुले में आयोजित की जाने वाली इस गतिविधि में गास्तों वालाइडेन और जॉन कातिया भी हिस्सा लेने वाले हैं उमर चिमल इसके आयोजक हैं विदेश में ईरानी ताकतों ने अबनाए हुरमुज में यूएई के दो टैंकरों को निशाना बनाया अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात को हमले किए ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में भी अमेरिकी सहूलतों पर हमले किए हैं तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए रॉयल रोड लावोंचिया में 89 साल की 89 years old श्रीमती जयमुंती रामफल श्रीमती जयमुंती रामफल पैदाइशी नाम चमन जो मांती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल एक बजे के बेटे विजन रामफल के घर रॉयल रोड लावोंचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM टैगोर रोड कोंगुब में 17 साल के 17 years old माइनर जय आर्या गर्बू जो आयुष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल 11 बजे इनके पिता जगराज गर्बू के घर टैगोर रोड घोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंगुब की शमशान भूमि ली जाएगी

0: एडिशन टुमारो एट 11 एएम शोक में दुबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: On NBC Play,
2: NBC Radio.tv. Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी.
0: रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं. आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, आ पहुँची हूँ एक नई उड़ान की कहानी को लेकर, जहाँ पर एक और ऐसी सशक्त महिला जिन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए अभी तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और आज भी वे मुस्कुराते हुए अपने काम में आगे बढ़ती जा रही है. बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी एक ऐसी महिला जिनका अपना खुद का एक स्नैक है और ये स्नैक चलाती हैं बिल्मौ प्लाश पर, यानी बिल्मौ के लाप्लाश पर उनका एक स्नैक आया जाता है. तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम जरूर कहना चाहेंगे कि सफलता यूं ही प्राप्त नहीं होती. ये सफलता तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आप प्रयास करते ना रहें और अपनी मंजिल को पा ना लें. और बिल्कुल सफलता आपके बिल्कुल मंजिल पर आपका इंतज़ार कर रही है. और ऐसा ही हमारे साथ श्रीमती वर्षा किरण मंगोना जी आज हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं. आइए उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं और जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी आज की उड़ान की कहानी. वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका. और
6: नमस्ते रत्ना जी, नमस्ते सारी श्रोताओं को.
0: बिल्कुल, और मैं जानती हूँ आपका बहुत बिजी शेड्यूल है और बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलों के बाद आज हम मिल पाए हैं, आज के इस कार्यक्रम में आप आ पाए हैं. उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको और आपके हस्बैंड को जो आपके साथ आए हुए हैं. और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर बातें करेंगे, जानेंगे आपकी कहानी. तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो स्नैक है, जो आपने खोला है बिल्मौ लाप्लाश पर, ये काम में आप कितने सालों से हैं?
6: ये काम में 10 साल से ज़्यादा हो गया है जब से खोला है बिजनेस को.
0: और 10 साल से मतलब इस कार्य को आप चला रही हैं. और जैसे आपने इस कार्य की शुरुआत कैसे की, जैसे आपको कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स या किस तरह से आपने शुरुआत
6: जी
0: किया
6: हाँ,
0: था?
6: जब शुरुआत की तो कठिन थी क्योंकि सब नई थी
0: जी,
6: नया बिजनेस, नया लोग और सब लोग का टेस्ट जो है सब सेम नहीं है. तो इसका था थोड़ा सा घबराहट था. तब थोड़ा थोड़ा करके हमने शुरू की, तब पसंद आया.
0: तो वर्षा जी, आपने यही काम करने का क्यों सोचा?
6: मैं और मेरे पति फैमिलीज के शादियों में हेल्प करते थे, जैसे पकवान, स्नैक का और सूती गाजा के वगैरह. सब तारीफ करते थे कि बहुत स्वादिष्ट हैं और बोलते थे हम इस स्नैक को लेना चाहिए.
0: तो फिर आपने मतलब सोचा कि चलो कुछ करते ही हैं, मतलब ये ऐसे आपने बहुत सारी शादियों में जब आपने किया तो आपने सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई करके देखें. और आपने पीछे पलट कर नहीं देखा. और वैसे आपका ये जो काम आपने शुरू किया तो इसमें आपको किन किन लोगों का साथ मिला?
6: मेरा पति का साथ मिला, वो हमेशा मेरे साथ देते हैं. जैसे कि जब वो रहता है तो वो हेल्प करता है, वो पकाता है, तब मैं उसका हेल्प करती हूँ और सर्व करती हूँ.
0: उनको पकाने का शौक है?
6: जी हाँ, उनसे ही से सीखा हूँ मैं.
0: अच्छा, मतलब उन वो आपकी प्रेरणा रहे हैं, इंस्पिरेशन रहे हैं. और वो जब पकाते हैं तो आपने देखा कि वो किस तरह से पकाते हैं और फिर आपका भी उसमें शौक.
6: मुझसे ज्यादा अच्छा से पकाता है।
0: ओहो, मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं, देखिए जितने भी हस्बैंड्स अगर काम में, कैसे कहते हैं कि खाना बनाने में माहिर होते हैं, उनकी वाइफ तो वैसे ही बहुत लकी होती है, क्योंकि आज के समय में जब हस्बैंड्स खाना बनाते हैं, और जैसे आपने कहा कि वो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं।

0: तो ये तो बहुत ही लाजवाब बात है। और वैसे आपका जो स्नैक है वो मैं जरूर जानना चाहूंगी, जैसे हमने कहा है कहाँ पर आया है, लेकिन क्या नाम है उसका और वो कहाँ पाया जाता है, आप हमें बता सकते हैं?
1: उसका नाम है विनीत फूड पैलेस, वो पाया जाता है बेलमोर प्लाज, मीन बेलमोर बीच जोन सी पर, वहाँ उसका नजदीक ओपन जूस है।
0: बिल्कुल।

0: पाया जाता है। अगर आप बिल्मौ सीसाइड जाते हैं तो ज़रूर विजिट करिएगा विनीत फूड पैलेस और यहाँ का जो स्वादिष्ट खाना है। अभी थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि क्या क्या स्पेशलिटी विनीत फूड पैलेस में पाई जाती है। और बिल्कुल हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने ये तो बता दिया, हमारे श्रोता ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ स्पेशलिटी क्या क्या है, क्या क्या मिलता है।
1: हमारे यहाँ स्पेशलिटी है फ्रेश सी फूड्स, जैसे तजका फ्राइड फिश, राइस फिश करी, सलाद, ऑक्टोपस, और हमारे यहाँ तजका कालामो भी मिलता है, उसका मीन फ्रियर, मीन बी रिफ्रीट और क्रिस्पी, चिकन सोते, चिकन क्रिस्पी, और उसका नूडल्स में भी, जैसे मीन बी में मीन फ्रियर, और सॉस रूज क्रोवेट राइस के साथ या रोटी के साथ, सलाद, चिप्स वगैरह, जो सब मिलता है,
0: जैसे जो ऑर्डर देते हैं, जो क्लाइंट्स ऑर्डर देते हैं उसके हिसाब से
1: का मन होता है, वो क्या खाना पसंद करते हैं
0: उसके हिसाब से फिर आप बनाती हैं, ऑन द स्पॉट आप तैयार बनाकर देती हैं, जैसे उनको फ्रेश तैयार करके देती हैं। तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि ये जो काम आपने शुरू किया वर्षा जी, तो क्या ये शुरुआत में आसान था या बहुत सारे चैलेंजेस को आपने फेस किया?
1: बहुत चैलेंजेस थी, बहुत कठिन थी, क्योंकि जब मुझे मैंने खोला वहाँ पर जो स्थान था वहाँ पर आगे से दो त्रिसिक था,
0: अच्छा,
1: पकवान के, तो बहुत चैलेंजेस आए थे, तो ग्राहक का चॉइस था कि वो कहाँ पर जाएंगे, और स्ट्रेंजर से बातें करना वो बहुत मुश्किल था, नई थी। अब आप मुझे बोलेंगे
0: किसी के साथ बात करना है, तो आप बात कर सकते हो, मतलब आपने वो अनुभव से सीखा, धीरे धीरे आपने सीखा, पहले थोड़ा डर लगता था, और जैसे जब लोग आते थे और उनको जो पसंद है उनके टेस्ट के अनुसार खाना पका कर उनको देना, ये भी मैं समझती हूँ एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा होगा। लेकिन जब पहले आपके क्लाइंट आए थे और जब आपने उनको खाना परोसा था, तो वो एक्सपीरियंस आपको याद है जो आपने उनको सर्व किया और उनका क्या फीडबैक मिला था?
1: मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मेरे पति ने बनाया था, वो बहुत अच्छा था, जिससे लोगों ने खाया तो तारीफ किया, तो वो
0: एक बहुत बहुत अच्छी अलग सी खुशी, अलग सी खुशी, सैटिस्फैक्शन, बिल्कुल मैं समझती हूँ। एक अलग स्तर, एक अलग लेवल पर कि जो भी आपने चैलेंज फेस किया वहां तक आप पहुंचे, और जब क्लाइंट खुश हुए तो लगा कि चलो कोई बात नहीं, इतना चैलेंज आपने फेस किया, ये भी बहुत था। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी वर्षा जी कि जब आपने शुरुआत की थी तो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या था, लोन, बैंक का लोन लेना, परमिट मिलना, या फिर लाइसेंस प्राप्त करना?
1: नहीं, परमिट, क्योंकि दो बार मैंने किया, तब तीसरी रिजेक्ट हुआ था, तब तीसरी बार में तब मुझे मिला, तब अप्रूव हुआ, तब मिला।
0: तो जैसे ये इसका ड्यूरेशन आप बता सकती है कितना लंबा रहा होगा?
1: मे बी 1 year,
0: यानी एक साल तक आपको इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ये सारे कामों में बिल्कुल जब तक हमें परमिट नहीं मिलती हम आगे नहीं बढ़ सकते, और एक तरह से जिंदगी फिर ठप होने लगती है, फिर ऐसा लगता है कि इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी अगर आपको परमिट नहीं मिल पाती है तो बहुत दिक्कत होती है। पर आप मायूस नहीं हुई,
1: नहीं,
0: और आपने जारी रखा, आपने इस स्ट्रगल को जारी रखा। और जैसे हम कहते हैं ना, घर की रसोई, जो घर पर खाना हम बनाते हैं और जो कमर्शियल खाना बनता है, यानी जो स्नैक वगैरह में बनाया जाता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनाया जाता है, उसमें आप बता सकती है क्या डिफरेंस है?
1: हाँ, डिफरेंस है। घर की रसोई में आप पका लेते हो, पर वहाँ पर नहीं, आपको सब परफेक्ट होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, सब हाइजीन होना चाहिए। और जैसे कि घर पर आप पकाते हो तब बाद में आप सफाई करोगे, तब पर वहाँ नहीं, आप पका रहे हो तब तक साफ भी कर रहे हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप गंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि
1: बार बार सफाई करना पड़ता है, और सब पकवान जो हम कट करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल या कुछ भी है फ्राइड का टपरवे में रखते हैं.
0: तो जैसे आपके यहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जहाँ पर अगर आपको कुछ स्टोर करना पड़े तो फ्रिज वगैरह ऐसे कोई
1: नहीं है.
0: हाँ हाँ
1: हम लोग आइस बॉक्स में रखते हैं.
0: ओके, यानी वो एक तरह से प्रिजर्व्ड रहता है, कहीं कुछ खराब नहीं होता. क्योंकि ये मैं समझती हूँ, एक तो बीच पर आपको एक स्नैक चलाना जहाँ पर आपको लिमिटेड साधनों के साथ आपको क्लाइंट को भी खुश

रखना है, हाइजीन का भी ध्यान रखना है, खाना भी बढ़िया होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, तो ये एक बहुत ही सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझती हूँ। तो चलिए अभी थोड़ी ही देर में जानेंगे कि ये शुरुआत करने के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की। और बिल्कुल ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, हमारे साथ बने रहे। उड़ान की कहानी आज की कहानी है वर्षा मंगोना की कहानी, जो बहुत ही दिलचस्प है और ज़रूर आज के इस कार्यक्रम से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं थोड़ी ही देर में।

की कहानी, उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी। और आज की कहानी है वर्षा जी की कहानी। जी हाँ, हमारे साथ वर्षा जी जुड़ी हैं। विनीत फूड पैलेस की मालिक है और ओनर है, और बिल्कुल ये पाया जाता है बेलमॉ प्लाज पर। और आज की इस कहानी में बिल्कुल जो भी चैलेंजेस एक महिला को और या एक कपल को

0: फेस करना पड़ता है वो आसान नहीं होता, पर फिर भी उस कपल ने एक ऐसा जिम्मा उठाया कि करेंगे तो करके दिखाएंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि आसान नहीं था, 10 साल से वे इस काम में हैं, लेकिन ये यूं ही ऊपर नहीं आए हैं। ऐसे ही जैसे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शुरू किया था और आसपास में काफ़ी लोग थे जो ऑलरेडी फूड बिजनेस में थे, और साथ ही साथ उनके साथ एक ऐसा एक अपनी एक जगह बनाना, अपनी एक पहचान बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि कमर्शियल लेवल पर हम देखें तो किसी भी काम को सेट करने में समय ज़रूर लगता है। पर ये दिखाया, ये कर दिखाया मंगोना परिवार ने। जी हाँ, विनीत उनके बेटे का नाम है और वर्षा जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कि मॉरिशस में, जैसे हमने अभी बताया कि खाने का जो बिज़नेस है, पकवान का जो बिज़नेस है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। तो ऐसे में आपने रियल चैलेंज जो होता है वो कैसे उठाया, क्योंकि हो सकता है कि कई बार बिजनेस ना भी चले, तो ऐसे में टिके रहना या फिर चैलेंज उठाना आपके लिए कैसा रहा?
1: हम लोगों ने क्रिएट किया मेन्यू को, क्रिएट पिक्चर्स निकाला, तब पिक्चर्स को डेवलप करके हम लोगों ने बोर्ड में डाला। तो बोर्ड में डाल के जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो यही को देख के उनको उन लोगों का मन होता
0: बिल्कुल,
1: है
0: एक एपेटाइजिंग, जैसे कहता ना कि कई बार फोटो देख लो तो आपको फोटो देखकर खाने का
1: खाने
0: मन
1: का
0: करता
1: मन
0: है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो आपने एक मेन्यू तैयार किया जो अपडेटेड वर्जन में था, यानी फोटो निकाल कर आपने अपने स्नैक के यहाँ लगाया, जो और वो आप ही की बनाई हुई रेसिपीज थी, जिसके कारण उनको एक तरह से पता चलता है कि क्या क्या चीजें आपके यहाँ मिलती हैं। तो ये भी एक तरह से आपने ये चैलेंज को उठाया। तो शुरू शुरू में क्या ऐसा होता था कि आपको आसानी से क्लाइंट मिल जाते थे?
1: जी नहीं, तो फोन में फोन को निकाल के मेन्यू को मैं उन लोगों को बतलाती थी।
0: हाँ हाँ।
1: तब देखे तब हमने सोचा नहीं, हमको बोर्ड में डालना चाहिए जो उन लोगों को दिखे।
0: हाँ, क्योंकि हर बार आप फोन निकाल कर, हर बार आप किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते फोन पर, तो एक तरह से
1: कुछ लोगों उन लोगों को आसानी से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो नहीं आएंगे आपसे पूछेंगे, कुछ आएंगे पूछेंगे तो कुछ नहीं आते हैं। तो ऐसे बोर्ड में रहना उन लोगों को
0: आसान हो जाता है कि आपके आपके यहाँ पर स्नैक में क्या क्या चीज अवेलेबल है,
1: या सेम टू सेम मिलेंगे।
0: हाँ, तो क्या ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि आपके आसपास के जो कंपटीशन में लोग हैं वो सेम टाइप का खाना बनाते हैं या सेम मेन्यू वाला खाना देते हैं?
1: मोस्टली, बट
0: उसका टेस्ट अलग।
1: हाँ, टेस्ट अलग और लुक भी अलग।
0: हाँ, ओके, यानी वही चीज़ है लेकिन अलग तरीके से आपका जो प्रस्तुतिकरण है तो उसके अनुसार उसको लोग ये देखकर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मैं भी मानती हूँ कि कई बार हम कहीं स्नैक या कहीं रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रहे हैं तो जब हम देखते हैं कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे डिज़ाइन करके रखी गई है या फोटो में लगा कर रखी गई है, बहुत एपेटाइजिंग हो तो देखकर ही खाने का मन हो जाता
1: और
0: है।
1: कुछ जो आपने किया और उसका पिक्चर डाला वो दूसरा है,
0: वो एक अलग सी खुशी मिलती है।
1: डाउनलोड करके डालेंगे तो वो दूसरा।
0: वैसे स्नैक्स, ये जो आपने सी साइड पर स्नैक खोलने का जो ये आइडिया था, पहले किसके मन में आया?
1: मेरे पति का।
0: पहले आपके हस्बैंड के मन में आया, और आपका क्या रिएक्शन था इस पर?
1: तब पहले मैं घबराई सी थी, मेरे लिए मुश्किल है कम्युनिकेट करना, एंजाइटी। तब उसने पुश किया, सब में पुश कर
0: कहा हो जाएगा।
1: हाँ, हो जाएगा
0: हाँ। कर लेंगे। और फिर आपने जब शुरुआत की तो धीरे धीरे करते हुए रास्ते खुलते गए। और आपके यहाँ रोजाना जैसे सेम मेन्यू होता है या फिर अलग अलग ऑर्डर्स भी आप लेते हैं, या अलग जो जो आपके मेन्यू बोर्ड में नहीं है उसके अलावा भी कोई ऑर्डर्स अगर आपको देता है तो क्या आप वो ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं?
1: जी जी,
0: ओके।
1: क्लाइंट अपने पसंद का देता है तो मैं करती हूँ।
0: तो आपके यहाँ केवल जो लोकल होते हैं वही आते हैं या फिर कोई फॉरेनर भी होते हैं? और वो आप कैसे, या क्या क्या आप जो खाना या जो भी डिश आप प्रेजेंट करते हैं क्या वो कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं, या मान लीजिए किसी ने आकर आपसे कहा कि मुझे आपके डिश में ये चीज़ें नहीं चाहिए, या कम सॉल्ट, या फिर बिल्कुल ये, मतलब जो भी उनको जिस तरह का चाहिए, तो क्या आप वैसे कस्टमाइज करके भी देते हैं?
1: जो जो मेरे पास होता है तो मैं करती हूँ। जैसे कोई तो मिर्च फ्रिया में प्याज जो है चॉप करके बोलते हैं डालने के लिए, तो मैं डालती हूँ जो जो वो बोलते हैं उन लोगों का पसंद, जैसे बोलते हैं ना क्लाइंट किंग होता है
0: जी जी,
1: तो उन लोगों का पसंद।

0: तो क्या क्या ऐसा भी होता है वर्षा जी, क्या आपके यहाँ कोई वेजिटेरियन भी आए खाना खाने के लिए, तो फिर वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आप कैसे हैंडल करती हैं?
1: तब उसके लिए जो वेज होता है तो मैं वेज के साफ करके तब उसका प्योर वेज करती हूँ।
0: हाँ, मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, एक तरह से पूरी तरह से, यानी उन सारी चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। और जब आपने शुरुआत में, जब आपके हस्बैंड ने कहा कि हमें स्नैक खोलना है, तो क्या उन्होंने आपको सारी चीज़ें सिखाई? क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि हस्बैंड के हाथ का खाना और वाइफ के हाथ का खाना दोनों में अलग टेस्ट आ जाता है, पर वो टेस्ट को मेंटेन रखना, क्या उन्होंने आपको वो सारी चीज़ें सिखाई?
1: जी बिल्कुल, सेम टू सेम।
0: तो यानी हम कह सकते हैं कि जब
1: करती हूँ,
0: हाँ, मतलब उसी वही टेस्ट, उसमें कोई कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं,
1: नहीं उसका मेरे से ज्यादा स्वाद।
0: अच्छा,
1: थोड़ा
0: मतलब
1: सा ज्यादा,
0: ज्यादा
1: उसका,
0: उसमें हाँ। उसमें ज्यादा स्वाद है क्योंकि वो बहुत दिल से पकाते हैं।
1: और भी
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: हम लोग खुशी होते हैं उसका खाना।
0: ओहो, मतलब देखा जाए तो आप बहुत ही मॉडेस्ट है कि आप ये एक्सेप्ट करती है कि आपके हस्बैंड जो खाना बना रहे हैं वो आपसे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। भाई तब तो लग रहा है कि हमें भी एक बार विजिट तो करना ही पड़ेगा विनीत फूड पैलेस, जो बिल्मा प्लाश में पाया जाता है। और बिल्कुल वहाँ का जो खाना है, जैसे जो सी फूड खाने के शौकीन है या फिर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा अलग सा स्पेशलिटी, तो ज़रूर आप विज़िट करिए। और हम कहते हैं ना कि कई बार हम सी साइड जाना चाहते हैं, और आज के इस बिज़ी लाइफ में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता खाना प्रिपेयर करने का। एक टाइम था जब हम फैमिलीज़ के साथ खाना बना कर सारी तैयारियां करके फैमिलीज़ को लेकर सी साइड जाया करते थे, पर अब समय कुछ बदला है और समय के साथ साथ रफ्तार तेज़ हुई है। पर कहते हैं ना कि कई बार हमें खाना पकाने को टाइम नहीं मिलता, तो बहुत टाइम हम ये भी कर, ये भी ऑप्शन बिल्कुल आजमा सकते हैं कि आप ऐसे फूड कॉर्नर्स हैं जो बिल्मा प्लाज या कोई भी आप सी साइड चले जाए वहाँ पर पाए जाते हैं, और डेफिनेटली आप जाकर उन जायकों का आनंद ले, क्योंकि यहाँ पर मॉरिशन क्विजीन जो है, हमारा जो लोकल स्थानीय खाना है, उसका आप लुफ्त उठा सकते हैं, स्वाद उठा सकते हैं। चलिए लेते हैं एक और गीत का ब्रेक, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में, और लाजवाब कहानी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे वर्षा जी से।

0: की कहानी
1: उड़ान की कहानी
0: उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग मिल रहा है। हमारे तकनीक पर हमारे साथ जुड़ी हुई है अपर्णा, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरुसा बानो और हमारे प्रोड्यूसर शीतल लुपिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और बेशक आज के इस कार्यक्रम की मेहमान वर्षा जी हमारे साथ हैं, जो बिल्मा में बिल्कुल अपना एक स्नैक चलाती हैं। और आज के इस कार्यक्रम में चलिए जानते हैं, जब बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है, कई बार होता है ना कि कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जानते हैं कि इनकी लाइफ में भी क्या ऐसी कोई सिचुएशन आई है और आई है तो उन्होंने हैंडल कैसे किया है। वर्षा जी, क्या आपके लाइफ में भी कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है और आपने हैंडल कैसे किया है?
2: जब एग्जाम से ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं,
0: हाँ हाँ,
2: तब स्ट्रेसफुल होता है कि जल्दी जल्दी करना पड़ता है,
0: बिल्कुल,
2: और बेस्ट ही देना है। पर ऐसी सिचुएशन में सब ग्राहक साथ भी देते हैं,
0: जैसे कोऑपरेट करते हैं।
2: जी हाँ, पेशेंटली वेट करते हैं और कुछ थोड़ा सा वॉक करके आते हैं इसी साइड पर।
0: और तो जैसे आपको मतलब ऑर्डर दे दिया, फिर आप कहते हो उनको कि आपका ऑर्डर इतनी मिनट में तैयार हो जाएगा।
2: जी, वो लोग कुछ वॉक करके आते हैं साइड पर, और जब उनको अपना ऑर्डर मिलता है तो वो प्रेस करते हैं कि बहुत स्वादिष्ट है और पसंद होते हैं कि फिर से आएंगे।
0: ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कई बार बिल्कुल एक जैसे एक ऐसा रेस्टोरेंट चलाना जहाँ पर अकेले खुद मैनेज करना, क्योंकि बिल्कुल जहाँ पर हम बड़े रेस्टोरेंट की बात करते हैं वहाँ वेटर्स होते हैं जो आपका ऑर्डर्स लेते हैं, और यहाँ पर तो खाना भी आप ही को बनाना है, किचन भी आप ही को क्लीन रखना है और क्लाइंट्स को सर्व भी आप ही को करना है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना और एक ही हाथ से सब कुछ हैंडल करना आसान नहीं होता। और बिल्कुल मैं ज़रूर जानना चाहूँगी वर्षा जी, आप घर का काम या घर को और काम को मैनेज कैसे करती हैं?
2: इसमें बहुत साथ देते हैं मेरा पति। जैसे कहते हैं ना, पति अपना राइट हैंड होता है,
0: बिल्कुल
2: अपना पार्टनर,
0: बिल्कुल
2: वैसे ही।
0: तो एक तरह से ये बात हम कह सकते हैं कि अगर पति का साथ ना हो तो एक तरह से कहते हैं ना कि एक गाड़ी में वो दोनों पहिए सही बराबर तरीके से चलना जीवन की गाड़ी को आगे ले जाता है। और बिल्कुल हम ये ज़रूर मानेंगे जो वर्षा जी कह रही हैं कि पति का साथ पत्नी दे, और पत्नी का साथ अगर पति दे तो मैं समझती हूँ जीवन की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी सिचुएशंस को हम बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हैं। चैलेंजेस आते रहेंगे और लड़ाइयाँ, कहते हैं ना कि बहुत सारे सिचुएशंस में कई बार एक दूसरे को समझने के बजाय हम एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। पर ऐसे प्रॉब्लम्स में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बनना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्या मतलब आपके इस कार्य में आपको कोई सरकारी योजना का भी साथ मिला, मतलब आपको कोई बेनिफिट्स मिले हैं सरकार की योजना की ओर से?
2: जी, जब कोविड था तब फंड मिला था हम लोगों को, तो वो हेल्पफुल था।
0: तो जैसे काम को आगे बढ़ाने के लिए या फिर काम को थोड़ा सा और इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ये सहायता मिला?
2: नहीं, जब काम नहीं था, लॉकडाउन था,
0: तब उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए। ओके, मतलब अभी के लिए आपका काम स्टडी जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अभी के लिए फिलहाल, जैसे कह सकते हैं कि ये जो सारी योजनाएं बनाई गई थी, और कई बार होता है ना कि जैसे जो छोटे बिजनेस, छोटे कारोबार के साथ जुड़े होते हैं उनको काफ़ी सारी योजनाओं का भी फायदा मिलता है, और जैसे हमारे साथ वर्षा जी आज जुड़ी हैं और उनको भी इस योजना का फायदा हुआ जब वे कोविड के दौर से गुजर रहे थे, और कोविड के दौर दरमियान बहुत सारे ऐसे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल के स्केल बिजनेस को हैंडल करते हैं उनको कई सारे तरीके से बहुत सारे फ़ायदे प्राप्त हुए सरकारी योजना के द्वारा। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वर्षा जी। वर्षा जी, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपका तो सी साइड पर ये पाया जाता है फूड स्नैक, क्या ऐसा भी होता है कि कोई टूरिस्ट आपके यहाँ आए जो आपके यहाँ कुछ नया टेस्ट करना चाहते हैं और कई बार दूसरी लैंग्वेज में वे आपसे संपर्क करते हैं या बात करते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: जी होता है।
0: ओके, तो आप कैसे हैंडल करती हैं?
2: कुछ नहीं समझते हैं इंग्लिश या फ्रेंच, तो इशारे में या वो समझ
0: मतलब कुछ हाँ, किसी ना किसी तरीके से आप कम्युनिकेट कर लेते हैं
2: जी, ओके वो उसको भी जब कम्युनिकेट या साइन की लैंग्वेज से
0: हाँ
2: उनको पता चल जाता
0: पता है, चल जाता है तो जैसे उन्हें समझ में आ जाता है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। ओके तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जैसे हम समंदर के किनारे हैं और समंदर के किनारे सबसे बड़ा चैलेंज होता है खाना खराब हो जाने का बहुत ही ज़्यादा और खासकर जब गर्मियों का सीज़न हो तो गर्मियों के सीज़न में जब खाना खराब हो जाता है तो आप कैसे हैंडल करती है कैसे मैनेज करती हैं सारी चीज़ों को संभालना और जैसे वो ख़राब ना हो उस पर ध्यान देना आप कैसे मैनेज करती हैं?
2: तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पकाते हैं जब फिनिश होता है तब
0: दोबारा से पकाते हैं यानी बहुत बल्क में बना के नहीं रखते
2: जी नहीं और फ्रेशली मेड ज़्यादा
0: बिल्कुल क्योंकि सी फूड है और जो फ्रेशली मेड होता है वो ज़्यादा
2: और ग्राहक हम लोगों को गरम खाना को पसंद करते हैं
0: खाना जब स्वादिष्ट हो गरम हो और जैसे मतलब ताज़ा पकाया गया हो तो ऐसे फ्रेशली ऑर्डर्स को वे ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्या ऐसे भी होता है कि आपके यहाँ बच्चों ने कोई स्पेशल ऑर्डर दिया हो?
2: जी बच्चे को क्रिस्पी पसंद है और चिप्स और नूडल्स फ्राई नूडल्स
0: तो ये उन लोगों का स्पेशल मेन्यू ऑर्डर रहता है हमेशा के लिए। ओके तो जैसे लाजवाब बहुत सारी चीज़ें आप बनाती हैं क्या ऐसा भी होता है वर्षा जी कि आपको बाहर से कोई ऑर्डर आता है मतलब आपको वहाँ स्नैक में ऑर्डर ना मिले लेकिन किसी ने आपको ऑर्डर किया है कि भाई हम आएंगे और टेक अवे लेकर जाएंगे तो क्या ऐसी भी फैसिलिटीज़ आपके यहाँ प्रोवाइडेड है?
2: जी हाँ
0: ओके
2: वो लोग फोन करते हैं फिर फोन में अपना ऑर्डर देते हैं और टाइम भी तब वो आके लेके जाते हैं।
0: ओके तो यानी हम बिल्कुल हमारे साथ बने रहें हम नंबर भी ज़रूर शेयर करेंगे वर्षा जी का और अगर आपको मन में भी आप कहीं बेलमाव के आसपास है और कभी आपको सी फूड खाने का मन करे तो बेशक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वर्षा जी से। अभी थोड़ी ही देर में हम नंबर शेयर करेंगे। और बिल्कुल कभी ऐसा हुआ है क्या आपके यहाँ अलग से कोई बहुत ही बड़ा ऑर्डर आता है या फिर मतलब आपको डिलीवरी करनी पड़ती है क्या ऐसा भी होता है?
2: जी होता है वो लोग अपना ऑर्डर देते हैं और फिर बोल देते हैं कि वो कहाँ पर हैं इसी साइड पर
0: ओके
2: तब ऑर्डर करते हैं
0: तो जैसे फिर आप जाके उनको डिलीवरी करते हैं तो चलिए ये भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करती हैं। और क्या सोशल मीडिया पर भी आपका कोई पेज है जिसके द्वारा लोग फॉलो कर पाए?
2: सोशल मीडिया पर मैंने टिकटॉक पर और फेसबुक पर पोस्ट करती हूँ।
0: ओके तो ये भी एक तरह से लोगों को अट्रैक्ट करता है और इससे आपका क्लाइंट्स का जो सर्कल है वो भी बढ़ता है। तो बिल्कुल आज के ज़माने में सोशल मीडिया के द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। और बिल्कुल इसी के साथ साथ धीरे धीरे करते हुए एक कारोबार की शुरुआत आप जब करते हैं पहले के समय में कहा जाता था कि एक कारोबार को लगभग 5 से 7 साल लगते हैं उसको एस्टैब्लिश होने के लिए लेकिन आज ज़िंदगी की रफ्तार काफ़ी तेज़ है 7 साल का इंतज़ार बहुत कम लोग कर पाते हैं इसीलिए सोशल मीडिया के थ्रू हमारे इस कारोबार को हम स्पीड अप कर सकते हैं हमारे इस काम को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। और बेशक अगर आप बिल्कुल अपने काम के प्रति बहुत लगन रखते हैं तो सफलता दूर नहीं होती बस आपको मेहनत रोज़ करनी है थोड़ी थोड़ी ही सही धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ना है अपने प्रयासों को जारी रखना है और बिल्कुल इनोवेशन भी करते रहना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी ही देर में जानेंगे कि क्या वर्षा जी ने भी कोई इनोवेशन किया है अपने काम में जब से उन्होंने शुरुआत की है। लेते हैं गीत का ब्रेक और आते हैं अभी थोड़ी ही देर में।

की कहानी, उड़ान की कहानी। जी हाँ, उड़ान की कहानी जारी है। और बिल्कुल आज के समय में अगर आप किसी भी काम में इनोवेशन ना लाएं तो भाई ग्राहक तो भाग ही जाएगा। और यहाँ पर तो हम जब कहते हैं ना कि एक ऐसे कमर्शियल किचन की बात करते हैं, तो कमर्शियल किचन में तो हमें इनोवेशन हर घड़ी होना चाहिए। आइए जानते हैं, वर्षा जी, जब आपने शुरुआत की थी तो उस समय में आप क्या परोसते थे, क्या पकाते थे, और आज के समय में क्या उसमें कोई आपने अंतर या कोई इनोवेशन लाया है?

0: जी आगे मैंने शुरुआत की थी रोटी कारी से रोटी कारी मिन फ्रेयर मिन बी आलिम तब अब ज्यादा फ्राइड फिश है कालामोर मिन फ्रेयर ये सब ज्यादा
1: ओके और जैसे हम टूरिस्ट लोगों की बात करते हैं तो क्या टूरिस्ट लोगों को यहाँ का लोकल टेस्ट पसंद आता है
0: जी
1: कुछ या फिर वो लोग उनका ही जो टेस्ट होता है उसी प्रकार का खाना ढूंढते हैं
0: कुछ अपने अपने अपने पसंद का जैसे अपना देश का पूछते हैं और कुछ नहीं लोकल वो टेस्ट को चेंज यहाँ का टेस्ट करना चाहेंगे
1: तो जब वो लोग कहते हैं कि उनके देश का तो आप कैसे मैनेज करती हैं मतलब उनका जो कहते हैं कि उनका जो टेस्ट है उसके अनुसार अगर आप पका सकते हो तो वो कैसे मैनेज करती हैं
0: जी तो वो लोग ज्यादा क्रिस्पी खाते हैं
1: अच्छा
0: क्रिस्पी या फ्राइड ये और जब वो चेंज करना चाहेंगे तो वो सर्च करते हैं मुझसे पूछते हैं क्या है लोकल खाना यहाँ का क्या टेस्टी है मैं क्या प्रपोज करती हूँ उन लोगों को
1: अच्छा,
0: तब मैं
1: उन फिर लोगों वो ट्राई करते हैं उसके अनुसार
0: और मैं टेस्ट भी करवाती हूँ फ्रेश कालामोर को वो टेस्ट करके तब यही लेते हैं
1: अच्छा मतलब फ्रेश कालामोर जो आप बोल रही हैं वो जो फ्रॉस्ट किया हुआ
0: नहीं
1: जो तैयार जो मतलब हम कह सकते हैं कि तुरंत जो समंदर से निकाला हुआ है वो ताजा वाला जो होता है वही पकाकर आप पकाकर उनको देती हैं तो ये जो सारी चीजें हैं फिश ऑक्टोपस या जो भी चीजें हैं वो आप फ्रोजन वाला यूज करती हैं या फ्रेश वाला यूज करती
0: फ्रेश वाली
1: अच्छा
0: तो हाँ मेरे पति वो जाते हैं मच्छी मारने और कुछ हम लोग किनते भी हैं जैसे कालामर ज्यादा वही फिशिंग करते हैं तब यही फैसिलिटी है आपको फ्रेश मिलेंगे
1: अच्छा मतलब उसके टेस्ट में भी फर्क पड़ जाता है
0: जी बहुत बहुत बहुत
1: ओके यानी आपके यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें आप बनाते हो
0: स्मेल वो
1: अलग ही
0: अलग ही है
1: अलग
0: ये
1: ही
0: है। आपको आश्चर्य करेगा
1: ओके मतलब ये आपको खाने के लिए और उत्सुक करेगा एपेटाइजिंग होगा और जैसे आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड जो है वो फिशरमैन है यानी पेशिया का काम भी करते हैं और वो जाके जैसे जो है ताजे जो सी फूड है वो खुद लेकर आते हैं तो उसी से
0: वो फिशिंग करते हैं अपने शौक से
1: अच्छा
0: उनको पसंद है फिशिंग का तो वो जाते हैं तब मिलते हैं तो यही
1: यूज करते हैं यूज करते हैं या तो फिर आप किसी से खरीदते हैं
0: जी खरीदती भी
1: अच्छा मतलब उसी टाइम पर आपको शॉप के लिए अगर जरूरत पड़े तो आप खरीदती भी हैं और अगर फिशिंग करने के टाइम पर आपके हस्बैंड को कुछ प्राप्त होता है तो वो आप अपने स्नैक के लिए इस्तेमाल भी करती है ये भी बहुत ही लाजवाब है और बिल्कुल जितनी महिलाएं ऐसा कोई छोटा मोटा कारोबार जो घर में शुरू करना चाहती हैं क्योंकि महिलाओं का एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सारी महिलाओं में ये एक शौक होता है खाना बनाना बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं और बिल्कुल खाने के शौकीन कहते हैं ना कि इंसान के दिल तक अगर आपको पहुँचना है तो रास्ता पेट से होकर जाता है और बिल्कुल अगर वो महिला जो जिनके हाथों में जादू होता है जो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं वो ये कार्य बहुत अच्छी तरह से निभा पाती हैं तो मैं पूछना चाहूंगी वर्षा जी हमारे इस शो में बहुत सारी महिलाएं इस कार्यक्रम को पसंद करती हैं देखती हैं या बहुत सारे पुरुष भी हैं जो प्रोग्राम को देखना पसंद करते हैं तो मैं ज़रूर पूछना चाहूंगी कि जो महिलाएं खाना बनाने का शौक रखती हैं उनको पकाने का बहुत मन है और किसी कारोबार में जुड़ना चाहती हैं एक व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए
0: उन लोगों के सबसे पहले हाइजीन होना चाहिए और कैसे ग्राहक से बात करना अपने क्लाइंट से अच्छी स्वभाव स्माइल में रहने के लिए फ्रेंडली चाहिए और जैसे मैंने बोला था अपना क्लाइंट्स जो है किंग होता है तो हम लोगों को उन लोगों के हिसाब से करना पड़ता
1: यानी उनको जो पसंद है वो आप उनको प्रोवाइड आपको उन्हें प्रोवाइड करना यानी केवल स्वादिष्ट खाना बनाना ही एक कला नहीं है साथ ही साथ आपका अच्छा स्वभाव आपका अच्छा व्यवहार आपके क्लाइंट के प्रति आपका जो कनेक्शन है जो केमिस्ट्री आप डेवलप करते हैं बिल्कुल बेशक जैसे वर्षा जी बता रही हैं कि बात करने का ढंग और किस तरह से आप अपने ग्राहक को आकर्षित करते हैं अपने खानों के द्वारा अपने भोजन के द्वारा अपने व्यंजन के द्वारा और साथ ही साथ उन्हें वो सारी सहूलियत जो उन्हें पसंद है आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो ये एक कारोबार में, एक व्यवसाय में, खासकर जब हम कमर्शियल किचन की बात करते हैं, तो बेशक इस कार्य में ये सारी चीज़ें होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आती है सारी फॉर्मेलिटीज़, यानी परमिट निकालना, लोन के लिए अप्लाई करना, ये तो चलिए हो जाता है सेकेंडरी पर, प्राइमरी लेवल पर ये सारी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और बिल्कुल, आप एक महिला हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती हैं और चेहरे को हंसता हुआ रखती हैं, कभी भूलती नहीं है स्माइल करना। तो वुमेन एम्पावरमेंट, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिला सशक्तिकरण आपके लिए क्या है?
0: मेरे लिए सब महिला का की शक्ति है, जो घर पर होता है, जो अपने बच्चे को का देखभाल कर रही है, जो काम भी कर रही है, सब अपने अपने जो अपने ड्रीम जॉब कर रहे हैं या परिवार के लिए, अपने लिए।
1: जी, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें
0: सब, हाँ, नारी शक्ति
1: हाँ। यानी एक तरह से नारी को हम हमेशा
0: सब
1: कहते हैं,
0: सेम है ना?
1: बिल्कुल, एक नारी के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का दौर होता है, पर ऐसे में हम कहते हैं कि एक नारी, उसे शक्ति का रूप क्यों ही नहीं माना गया है, बस उसमें धैर्य होना चाहिए, उसमें संवेदना होनी चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें सम्मान होना चाहिए। और बिल्कुल कहते हैं ना कि कई बार क्रोधित भी हो जाती है महिला, पर उसे काबू में रखना और दया के साथ, प्यार के साथ उसे संभालना, ये शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए हर महिला आज इस स्तर पर पहुंच चुकी है। और हम कह सकते हैं कि ये सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है, बहुत ही भारी भरकम शब्द है। और बिल्कुल हम ये कहेंगे कि एक महिला को समाज में अपनी एक जगह बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक एक ऐसा कह सकते हैं कि स्टेप है, कदम है। और बिल्कुल हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी सबसे पहले, और मेरा हिंदी थोड़ा सा ख़राब है,
1: बिल्कुल नहीं,
0: क्षमा करना।
1: नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है, क्योंकि हमारे लिए ये कार्यक्रम ज़्यादा आवश्यक तब होता है कि आप जब आते हैं इस मंच पर, इस मंच के द्वारा हम अपने जो ऑडियंसेस हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनके साथ हम कनेक्ट होते हैं। और भाषा एक माध्यम है जो हमें जोड़ता है, एक कम्युनिकेशन, एक तरीका है जो हमें जोड़ता है। और मेन तो ये है कि हम अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप भी किसी कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं। और बेशक हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें बहुत बहुत सहयोग मिला है अपर्णा का, साथ ही साथ हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा बानो, और हमारे साथ जुड़ी हमारी प्रोड्यूसर शीतल लोबिन जी। तो बिल्कुल हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, वर्षा जी, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहें, विनीत फूड पैलेस आना चाहें, तो आप ज़रूर हमें नंबर दे सकती हैं, जिससे कि फिर अगर किसी को भी आप तक मतलब आना है, या जो लोग बेलमार जाते हैं आपके यहाँ आकर फ्रेश सी फूड ट्राई करना चाहते हैं, तो बेशक वे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना फेसबुक पेज या फिर आपका जो भी इंस्टाग्राम पेज है या
0: टिकटॉक,
1: हाँ जी टिकटॉक पर किस नाम से आप प्रचलित हैं, आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि लोग आप तक पहुँच सके।
0: जी, मेरा टिकटॉक का नाम है वर्षा आमसान मांगोना, और नंबर है 5792025 जो कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे।
1: तो बिल्कुल मैं रिपीट करना चाहूँगी, फेसबुक और टिकटॉक पेज पर वर्षा जी रामसरन, वर्षा रामसरन मंगोना के नाम से प्रचलित हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें व्यंजन के लिए, फ्रेश सी फूड के व्यंजन के लिए, तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं वर्षा जी को 5792025। बिल्कुल सही कहा
0: जी,
1: जी।
0: और टिकटॉक पेज पर होगा, वहाँ पर मेन्यू,
1: हाँ जी,
0: और जहाँ पर पाया जाता है अपना ट्रिसिक, वो भी है।
1: ओके, तो मैं एक बार फिर से वर्षा जी से कहना चाहूंगी, वर्षा जी आपके यहाँ क्या क्या चीजें मिलती हैं एक बार फिर दोहरा दीजिए, जिससे कि हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं और अगर कुछ खाने का मन करे तो आप जा सकते हैं। अब आपको पता है कहाँ जाना है आपको, तो जरूर आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं।
0: जी, मीन फ्रिया है, मीन फ्रिया पुल, मीन फ्रिया कैरामो, मीन फ्रिया

0: crevettes, mille frais œufs, riz frites, sauce rouge crevettes, crispy chicken, chips, और भी है फिश, फ्राइड फिश या मसाला, जो भी उन लोग क्लाइंट्स के चॉइस पर अगर वो चाहते हैं. कभी आया है उन लोगों ने आया है और आके उन लोगों ने बोला नहीं आज दूसरा खाने का मन है, क्या प्रपोज करती हो, तो या उन लोगों ने अपना मेन्यू दिया है.
1: तो इसके साथ साथ अगर वेजिटेरियन के लिए भी कोई व्यंजन आप बनाती हैं तो इसके इसमें क्या क्या वेराइटीज़ हैं?
0: वेराइटीज़ हैं प्योर वेज, जैसे वेजिटेबल्स, और कभी क्या है शैम्पियन, शैम्पियन माई, ये सब होता है.
1: जैसे लेगिम सोते वगैरह सारा कुछ बनाती हैं?
0: नहीं, ज़्यादा वो लोग मीन या रिफ्रिट कोचते हैं.
1: ओके ओके ओके.
0: या चिप्स.
1: ओके, तो जी हाँ, ये थी जानकारी विनीत फूड पैलेस. और आज हमारे साथ जुड़ी विनीत फूड पैलेस की जो ओनर है, और बिल्कुल आज के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी वर्षा जी और उनके पति उनके साथ आए हैं, और बहुत ही शांत स्वभाव के, और जैसे उन्होंने बताया कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, तो ज़रूर हम ट्राई करेंगे. और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का समय हो चला है. वर्षा जी, आप आई हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस प्रोग्राम को आपने चार चांद लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. और आज के इस सफ़र में बिल्कुल आपकी जो लाइफ का जो स्ट्रगल है वो जारी रहेगा, पर हम आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देते हैं आपके आगे फ्यूचर प्लान्स के लिए. और इसी के साथ बिल्कुल आज के हमारे जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, आपको हम कहेंगे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ अगले सप्ताह, एक नई और उड़ान कहानी. तो इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति. नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। राष्ट्रसभा में आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय बजट में हालिया घोषित कदमों में लाए गए बदलावों के संदर्भ में रहा। विपक्ष नेता ने जानना चाहा कि क्यों इस कदम पर बदलाव लाया जा रहा है। अपने जवाब में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि 500 घोषित कदमों में से सिर्फ एक पर दोबारा गौर किया जा रहा है, यानी स्टेट एज पेंशन के लिए मींस टेस्ट का रद्द किया जाना। उन्होंने इस फैसले के सिलसिले में कई समितियों के क्याम का भी ऐलान किया है। कई दशकों से निजी कॉलेज मॉरिशस में शिक्षा के विकास में सक्रिय तरीके से योगदान दे रहे हैं। इस साल कई इदारों ने अपने वजूद का 60वां यानी की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। यूनिवर्सल कॉलेज उनमें से एक है जो इस साल अपनी 65वीं सालगिरह मना रहा है। 14 जुलाई की तारीख फ्रांस के लिए बेहद ही अहम। वो अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। मॉरिशस और फ्रांस के बीच सदियों पुराना रिश्ता है। उस वक्त से जब टापू में फ्रांसीसी हुकूमत थी, मॉरिशस में आज गुजरे जमानों के बावजूद फ्रांसीसी विरासतें जिंदा हैं। इन गहरे संबंधों के आधार पर हमारे देश और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ क्षेत्रों में साझेदारी है। विदेश में राष्ट्रपति को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलने वाला है। यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई ताकि राष्ट्रपति में पुनः निर्माण कार्य किए जा सकें। 1 मिलियन वासी तंबुओं में अभी तक रह रहे हैं क्योंकि इसराइल और हमास के बीच लड़ाइयों की वजह से काफ़ी तोड़फोड़ और नुकसान हुए। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रामधुनी लेन बॉडी जामुगत में 89 साल की 89 years old श्रीमती आलूपी रामधुनी पैदाइश नाम सिबरन, जो लयका चाची के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ थी आज शाम चार बजे इनके बेटे मनोज रामधुनी के घर रामधुनी लेन बॉडी जामुगत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 4। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: 14 जुलाई हमारे सभी श्रोता और सभी दर्शकों का स्वागत है आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें ये जो प्रोग्राम है इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं हमारे MBC प्ले ऐप पर भी। आपको ये भी याद दिला दें इसी कार्यक्रम का रिब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही दोपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी को बता दें कि इस महीने की 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ होप मनाया गया, एक ऐसा दिन जो अपने आप में बहुत ही गहरा महत्व रखता है। होप, आशा की बात करें तो कहते हैं कि जो दुनिया है आशा पर टिकी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में कोई ना कोई आस होती है, कोई ना कोई उम्मीद होती है जिसके सहारे हम अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। तो इस दिन का क्या महत्व है, क्यों इसे मनाया जाता है और अभी के समय में इस दिन की इतनी आवश्यकता क्यों है, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच जो है मिस हर्षा चाकुरी जी जुड़ चुकी है। ER हॉस्पिटैलिटी से है, सेफ्टी एंड हेल्थ वेलबिंग से जुड़ी हुई है और वेलबिंग में काफ़ी अपना योगदान देते हैं, और साथ ही हमारे बीच अभ्यास से नीरज जी भी जुड़ चुके हैं। सो हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। नमस्कार आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप हमें बताएं कि ये होप, ये उम्मीद होती क्या है।
1: सबसे पहले तो सुमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद हम मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अभ्यास को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। उम्मीद की हम बात करते हैं, आपने वहीं से शुरू किया था कि उम्मीद पे ही ये दुनिया टिकी है
0: जी।
1: अगर हम कहें कि ये मानव जो शरीर है यही उम्मीद है, यही अपॉर्चुनिटी है, यही होप है। जब तक ये है, जब तक ये चल रहा है, ये सांसें चल रही हैं, तब तक होप है। अगर ये सांसें छूट गई तो होप भी चला गया, उम्मीद भी चली गई। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जीवन ही उम्मीद है, ये मानव जीवन ही उम्मीद है, उम्मीद है हमारे विकास की, उम्मीद है जहाँ हम रुक गए थे वहाँ से आगे बढ़ने की, उम्मीद है हम जिस बंधन में फंसे हैं उससे छूटने की। तो योग को अगर हम कहें तो ये उम्मीद है हम कैसे इससे बाहर निकल जाएं। तो अभी हमें मान लीजिए कि किसी भी चीज़ के लिए पेन होता है, तो हम कहें कि हम पेन हो रहा है, आर वी कर्स्ड, और दिस इज अ सिम्टम कि हमें बताया जा रहा है कि पेन क्यों हो रहा है, हम कहाँ फंसे हैं
0: जी।
1: तो आगे फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मानव जीवन ही उम्मीद है हमारे विकास की, हमें आगे बढ़ने के लिए।
0: और ये उम्मीद हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि शायद जिस व्यक्ति के जीवन में उम्मीद नहीं होती है उसके भीतर जीने की आशा नहीं होती है ना। जैसे अपने दर्द की बात की, ये दर्द है तो ये दर्द हमें एहसास दिला रहा है कि हम जी रहे हैं,

0: अगर हमें चीजें महसूस नहीं होंगी तो शायद जीने का एहसास भी नहीं होगा, तो अपने आप में ये भी एक उम्मीद ही है। चलिए हर्षा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के इस विषय पर आपके क्या विचार हैं।
1: सबसे पहले मैं MBC का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं इतनी हाईली फिलोसफिकल

0: जैसे मैं नीरज जी के साथ शेयर कर रही थी, जब हमारी ज़िंदगी में अलाइनमेंट नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगी, तो होप ही रहेगा
1: जी,
0: एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जब मैं अलाइनमेंट की बात कर रही हूँ और डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ, ये यम, ये नियम और मेडिटेशन प्राणायामा अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। अगर ये हमको अपनाते नहीं है तो होप will be on your hope.
1: Exactly. Yeah. बिल्कुल सही कहा
0: And आपने. our dream will not be realized.
1: बिल्कुल. क्योंकि कहीं ना कहीं एक होप, एक उम्मीद की बात करते तो एक सपने की तरह होता है ना, जिसे हम देख रहे हैं। लेकिन अगर सपना हम देख रहे तो सपने को पूरी करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है ना। क्योंकि अगर मैं सपना देख रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे उस किस राह पर जाना है अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप मेरे उस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, जिम्मेदारी मेरी है। तो नीरज जी कुछ और जोड़ेंगे इस पर?
2: नहीं, ये बहुत ही मतलब हम उम्मीद की बात करते हैं, हम आशाओं की बात करते हैं, लेकिन इसके दो पहलू हैं एक्चुअली। एक तो जैसे हमने बात की कि ये मानव जीवन ही उम्मीद है, जीवन ही उम्मीद है ना। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये जीवन ही उम्मीद है। लेकिन मैं अगर दूसरे पहलू की बात करूं कि मान लीजिए कि मैं बचपन से बड़ा हुआ, मुझे बताया गया कि देखो नीरज, ये जो चीज़ है ना, ये तुमको प्राप्त हो जाएगी तो यही खुशी है। मान लीजिए मुझे बताया गया, तो मेरी एक सर्टन कंडीशनिंग हुई
1: जी।
2: और इसको दुख कहते हैं
1: जी।
2: है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये दुख है, मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है ना कि मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि वो दुख है।
1: हाँ।
2: और अब हमें आशा है कि हम इस दुख से बाहर चले जाएं ना, कैसे भी करके बाहर चले जाएं। लेकिन उसके अंदर बहुत जब हम सटल लेवल पे जाएंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि जहां से हमको दुख मिल रहा है वही अपॉर्चुनिटी है उस दुख से ऊपर उठने के लिए
1: जी,
2: है ना। तो उम्मीद जीवन है तो उम्मीद है। अब दुख से हमें ऊपर उठना है तो दुख से हम कैसे ऊपर उठे? उसी चीज को जिससे हमें दुख हो रहा है उससे, अभी जो हम उम्मीद सोच रहे हैं, जिसको हम आशा मान रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि हमको वो प्राप्त हो जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी
1: जी।
2: बट जीवन ये कह रहा है कि देखो वो जिस तरीके से आ रहा है बस उसकी समझ को बदल लो
1: जी।
2: और वो कैसे बदलेगा कि अभी जैसे कि आपने बड़ा अच्छा बोला कि इसी शरीर में हम सब कुछ को फील कर रहे हैं, सुख हो या दुख, चाहे आप अच्छा बोल रही हैं, बुरा बोल रही हैं, या कुछ भी हो रहा है, वेयर वी आर फीलिंग, हम यहीं पर फील कर रहे हैं। तो वहां बदलेगा अभी कहां पर? यहीं पर बदलेगा।
1: बिल्कुल।
2: तो उम्मीद जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, वो हर एक एक्ट के साथ, हर एक जीवन के अनुभव के साथ, जो इस शरीर के माध्यम से हमें मिल रहा है, वो हमको कह रहा है कि हम इससे विकास कर सकते हैं, इससे इवॉल्व हो सकते हैं,
0: प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। और इनर वर्क की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी फाउंडेशन को मजबूत न करें तो मुश्किलों का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनर वर्क इज रियली इंपॉर्टेंट।
1: और अभी के समय में हमारे सामने चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी से कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें, कुछ दशकों पहले की, हमारे माता पिता के जब शुरुआती दौर था तभी जीवन शैली हमारी अलग थी, लाइफस्टाइल अलग थे, चैलेंजेस अलग थे, अपॉर्चुनिटीज अलग थे। अभी जो है हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गई है।
0: फास्ट-पेस्ड वर्ल्ड,
1: हम सब चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं ना। एक उम्मीद, एक इच्छा पूरी नहीं होती है कि उसके खत्म होते होते दूसरी इच्छा जाग जाती है। और कहीं ना कहीं ये हमारी परेशानी का कारण भी बन रहा है, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है वो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, बस बढ़ते ही जा रही है। इसमें उम्मीद क्या रोल प्ले करता है?
2: देखिए, वो उम्मीद क्या रोल प्ले करता है, एक इच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अगर उम्मीद, जैसे मान लीजिए कि इच्छाएं हैं, इच्छाएं बुरी नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि इच्छाएं बुरी हैं, और इच्छाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर वो इच्छाएं अवेयरनेस के बिना हैं तो फिर वो हमको कहीं भी ढकेल सकती हैं। हम कहेंगे कि आज जितने भी हीनियस क्राइम हो रहे हैं उसके पीछे तो इच्छा ही है, अगर मैं बोलूंगा तो, है ना। लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है उसके पीछे भी इच्छा ही है। सो देयर इज जस्ट टू थिंग्स, मतलब इच्छा ही एक तरफ जो है उसको उम्मीद है, उसको भी उम्मीद ही है जहां पे हीनियस क्राइम हो रहा है कि मैं ऐसा कर लूंगा और मैं इससे बच जाऊंगा, और एक तरफ इच्छा है जो बड़ा कार्य हो रहा है वहां भी इच्छा है। तो अगर इच्छा के पीछे एक व्यापक इंटेंशन नहीं है, एक एक सोच जो अपने से ऊपर नहीं है. अभी क्या है, इच्छा को अगर मैं बोलूं, अगर हम समझने का प्रयास करें, सो वी हैव 5 senses, उसकी पूर्ति ही इच्छा है. आंखों से जो हमको अच्छा लग रहा है हम उसको

0: देखना चाहते हैं, कानों से जो हमको अच्छा लगता है वो हम सुनना चाहते हैं, टच एवरीथिंग. सो सेंसेस को ही हम अभी मान रहे हैं कि उसकी पूर्ति ही इच्छा है. और अभी अगर हम बोलें कि वी वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनेयर, मेरी इच्छा है मान लीजिए, उसमें कुछ बुरा नहीं है. लेकिन उसके साथ अगर हमको ये है कि दुनिया मुझे जो है बहुत अच्छा बोलेगी, और देन दोस केमिकल्स हमारे अंदर, वो केमिकल रिलीज हो रहा है और वही हमको सुख या दुख दे रहा है
1: जी,
0: तो फिर अभी भी हमारा जीवन छोटा है, इस मानव जीवन के अनुरूप नहीं है. लेकिन अगर हम पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बड़ा बहुत इच्छा बहुत बड़ी है, और उसके पीछे क्या है कि एक तो मेरी विकास यात्रा, मेरी खुद की विकास यात्रा हो, मतलब व्हेन आई एम, मतलब जब मैं उस पाथ पे हूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. जैसे कोई मान लीजिए कि बिजनेसमैन बन रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, या कोई किसी कार्य को भी कर रहा है, तो उसके जीवन में अच्छा या बुरा होता है. जैसे हर्षा जी हैं, ये कॉर्पोरेट में काम करती हैं. अब कॉर्पोरेट में कोई कभी कोई पॉलिटिक्स कर दे रहा है, कभी कोई इनके खिलाफ कुछ काम कर दे रहा है, तो या तो हम उसको कर्स करें कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इस मानव जीवन को समझ लें कि वो हो रहा है तो उससे मैं इवॉल्व हो सकती हूँ, कि नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग,
1: एग्जैक्टली
0: है ना. तो हम उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख लें, उम्मीद उम्मीद, या फिर एज अ कर्स देख लें.
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद. आपने जो बातें कही, मैं इस पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि यानी कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसे हम किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं ये मायने रखता है ना, कि अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, है ना. चलिए हर्षा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो है उम्मीद दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ होप, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों इसे मनाया जाता है?
2: आशा जगाता है, एक दूसरे का सहारा बनना, और मुश्किल समय में भी हिम्मत ना हारना, हम उन लोगों को सिखाते हैं, इसलिए हम ये मनाते हैं. और लोगों को मेंटली मजबूत बनाना, इसलिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ होप को सेलिब्रेट करते हैं. और हमारी जनरेशन जो है, फ्यूचर जनरेशन है, इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ फैलाते हैं, और अपने यंगस्टर्स से बोलते हैं कि वह क्या अच्छी, क्या अपनाना चाहिए और क्या नहीं अपनाना चाहिए. जैसे कि ड्रग्स की इश्यू बहुत अलार्मिंग हो चुकी है, और अभ्यास मैं आई एम वेरी इम्प्रेस बाय अभ्यास कि वो कंस्टेंटली फाइट कर रहे हैं.
1: चलिए, यहाँ पर जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस पर, इंटरनेशनल डे ऑफ होप पर आज हम चर्चा कर रहे हैं. 4028085 है नंबर हमारा. अगर आज के इस विषय पर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बेशक आप हमारा साथ दे सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं. नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हम उम्मीद की बात करें, और खासकर अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस जो कुछ दिनों पहले मनाया गया, तो समाज पर इस उम्मीद का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑब्वियसली किसी भी एक बात को लेते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है. तो समाज के दृष्टिकोण से इस उम्मीद का जो है क्या नज़रिया हो है, या समाज पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, जब हम उम्मीद की बात करते हैं, यू नो, जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इस नेगेटिव और पॉजिटिव में पढ़ना ही नहीं चाहता. क्योंकि कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है कि जो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है. मान लीजिए कि अगर मैं किसी नेगेटिव इमोशन में अभी फंसा हूँ, मान लीजिए, जस्ट उसको समझाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि उस नेगेटिव इमोशन में फंसे रहने के चलते बहुत सारी क्लैरिटी मुझे मिली, है ना. ऑल्दो दैट वाज नेगेटिव जो दुनिया के ग्राउंड पे, बट मेरे लिए तो उससे निकलने की यात्रा ही वही है. तो मैं कह रहा हूं कि जीवन में जो कुछ जिस तरीके से हमको मिल रहा है और मिल रहा है, वही राह है, वही पथ है, और इस पल में, इस क्षण में ही है वो. अगर मैं अभी आपके साथ हूं, आप, हम लोग तीनों एक साथ बैठे हैं, तो एक प्रयोजन के साथ बैठे हैं. शायद वो प्रयोजन हमको नहीं पता है, लेकिन देयर इज अ, यू नो, यूनिवर्सल अवेयरनेस, है ना, अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस की हम बात करते हैं. उस यूनिवर्सल अवेयरनेस को पता है कि मेरी विकास यात्रा कैसे होगी. सो दैट्स व्हाई मेरा जीवन एक तरीके से डिजाइन किया गया है, आपका अलग तरीके से किया गया है, इनका अलग तरीके से.

0: किया गया है, और एक ही सिचुएशन को मैं जैसे फील करता हूँ आप बिल्कुल अलग तरीके से फील करती हैं, ये बिल्कुल अलग तरीके से फील करती हैं। तो उम्मीद जो है, अगेन हम उम्मीद पे हम आते हैं, उम्मीद यही है कि सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि हम अपने आप को पहले ठीक कर लें, सबसे बड़ी उम्मीद। जैसे ही हम उसको करना शुरू करेंगे तो फिर हमको सोसाइटी में अपने आप ही जो है, मान लीजिए कोई ड्रग एडिक्ट है तो या तो हम उसको आते समय बहुत अच्छा बोल रही थी हर्षा जी कि हम उसको स्टिग्मेटाइज कर लेते हैं ना, उसके बारे में भला बुरा कहते हैं,
1: लेकिन कर लेते हैं।
0: हाँ, जज करते हैं क्योंकि, और जज क्यों करते हैं क्योंकि हम अपने आप को भी जज कर रहे हैं, हम भी अच्छे बुरे से अपने आप को जज कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि जैसे ही हमने अपने आप को जज करना बंद कर दिया कि अच्छा या बुरा, और जीवन को जैसे आ रहा है वैसे जीना शुरू कर दिया अवेयरनेस के साथ, तो फिर उस व्यक्ति के लिए भी हम एक होप बन जाएंगे। लेकिन जब तक हमने अपने ऊपर काम नहीं किया है तब तक होप इज जस्ट अ वर्ड, उम्मीद जो है एक शब्द है।
2: चलिए एक श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं। 4028085 है नंबर हमारा, और जितने भी श्रोता जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे हम मांग करेंगे कि आपके जो विचार है या आप जो कुछ जोड़ना चाहते हैं इसी विषय पर आधारित हो तो अच्छा होगा, धन्यवाद। और चलिए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो, नमस्कार।
3: नमस्कार सुनी जी।
2: नमस्ते धनी जी, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और भाई जी जो बोल रहे हैं, और आपके मेहमानों को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
3: जी, और वो अच्छी तरह से समझा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा एक शब्द है
2: जी,
3: इसमें दिमाग, दिमाग और सोच कोई जगह है यहाँ? भाई जी ने बोला कि हमारे शरीर ठीक है परंतु दिमाग भी इसमें, दिमाग की जगह है इसमें, दिमाग सोच और दिल। धन्यवाद।
2: धन्यवाद धनी जी। चलिए हम चाहे हम उत्तर हम नीरज जी से ही लेंगे।
0: जी जी बिल्कुल जी। जब हम शरीर की बात करते हैं और जब हम योग में शरीर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अंतःकरण की भी बात करते हैं, है ना? तो जब हम शरीर की बात कर रहे हैं तो एक तो हम जो बात कर रहे हैं एक ग्रॉस बॉडी की बात कर रहे हैं ना, कि जो कि दिख रहा है
2: जी।
0: लेकिन जैसे धनी जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है यह भी हमारे अंग हैं
2: जी,
0: है ना, ये हमारे पार्ट हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे अलग हैं। अभी हम जैसे कि अभी हम सांस ले रहे हैं लेकिन हम देख तो नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही मन काम कर रहा है लेकिन मन को जानते नहीं है, कितनी अच्छी लेकिन है तो हमारी पार्ट ही है, इट्स पार्ट ऑफ अस। बुद्धि भी हमारा, हमारे शरीर का एक अंग है। तो आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये जैसे ये ग्रॉस बॉडी है ऐसे ही सटल बॉडी है, चित मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी हमारा पार्ट है, और सबके अपने अपने काम है। मन का काम मनन करना है, बुद्धि का काम विवेचन करना है, चित्त का काम चिंतन करना है, और अहंकार का भी अपना काम है। तो इसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये भी जो है, तो इसीलिए हर कुछ एक पार्ट है। मन है तो हम मनन कर पाएंगे, तो मन से हम क्या मनन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे जीवन में कोई घटना घट रही है, अभी उम्मीद की बात हो रही थी, और वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है और मेरे शरीर में दुख फील हो रहा है ना, हमको फील हो रहा है, वी आर फीलिंग इट। मन तो एक सिर्फ करण है जिसके माध्यम से शरीर जो है फील कर रहा है, मतलब, और शरीर के अंदर मतलब एक चेतन सत्ता है ना जो जो फील कर रही है। लेकिन अब या तो हम ऐसा फील करते रहें कि ओ हम बहुत दुखी हैं, हम ही सबसे बुरे इंसान हैं, सबसे खराब हैं, या तो फिर उसी मन का एक सदुपयोग है, एक व्यापक उपयोग है, अवेयरनेस के साथ है कि हमारे पास हर समय विचार की एक शक्ति है जिसके माध्यम से चीज तो वही है लेकिन उसकी दृष्टि हमने बदल दी। ये सिर्फ एक मानव के पास ही इसकी शक्ति है, किसी और जीव के पास, किसी योनि के पास नहीं है। और हर बार जब हम उसको अलग अलग दृष्टिकोण से, एक व्यापक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो वो चीज बदलती जा रही है, और मेरा बॉडी जो है माइंड और बॉडी का एक सिंक्रोनाइजेशन होता जा रहा है, और योग तो यही है।
2: यही है। चलिए एक और श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं। 4028085 है नंबर हमारा। हेलो, नमस्कार। इंदिरा जी आपका स्वागत है, बताइए आज के इस विषय पर आप क्या जोड़ना चाहती हैं?
4: मैं जिसको सुनने में बहुत बहुत पसंद हुई हूँ, क्योंकि

0: डॉक्टर जी और बहन जी ठीक ठीक जवाब दे रहे हैं
1: जी।
0: तो मैं सुनने को थैंक कह रही हूँ।
1: अच्छा जी,
0: ओके,
1: बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: ओके जी, चलिए, अच्छा लगता है जब हमें इस बात का अनुभव होता है कि हमारे जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद तो कर रहे हैं, और यही हम उम्मीद करेंगे कि इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं जो है आपको लाभ पहुँचे, और कहीं ना कहीं मतलब कैसा होता है ना कि जो कुछ भी होता है उसमें से कुछ अच्छा अगर हम निकाल कर अपने जीवन में उतार पाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, अभी के लिए एक गाने के साथ कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: की चर्चा ये प्रोग्राम एक बार फिर से हमारे सभी श्रोता और सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ होप पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उम्मीद, उम्मीद अपने आप में सुनने में बड़ा छोटा लगता है शब्द, लेकिन अपने आप में बहुत ही गहरा महत्व है। उम्मीद का मतलब ये नहीं है कि कुछ प्राप्त करना या कुछ हासिल करना या अपने लक्ष्य तक पहुँचना। उम्मीद का मतलब ये भी होता है कि अपनी समस्याओं में किस तरह से हम समाधान ढूंढ रहे हैं, किस तरह से अपने हालातों से ऊपर कर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभार अभी बातों बातों में हमारी प्रोड्यूसर शीतल जी ने एक बहुत अच्छी बात जोड़ी कि कभी कभार होता है कि जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं तो निराश हो जाते हैं। तो निराश न होना भी अपने आप में एक उम्मीद की बात होती है। और हमारे साथ हर्षा जी है, हर्षा जी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, हेल्थ और वेलबींग में अपना ये लोग काफ़ी योगदान देते हैं। तो अगर हम खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, जहाँ पर चैलेंजेस है, जहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है, जहाँ पर कभी कभार बहुत से लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स का भी सामना करना पड़ता है, बहुत से जो है बुरी आदतों का शिकार भी हम हो जाते हैं, तो ऐसे में उम्मीद कैसे लिए, किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल साबित होती है?
1: हम अपने इंटेंशन से जुड़े रहना चाहिए
0: जी,
1: पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने वायु से स्टिक रहना चाहिए। हम क्या है, वी डोंट लेट दिस सिचुएशन डिफाइन अस, यू सी। सो इसलिए हम कंस्टेंटली अपने आप पर काम करना चाहिए
0: जी।
1: जब आप अपने आप पर काम करते हैं तो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और आप जब मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो जैसे नीरज जी ने कहा कि सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट्स टू टेक प्लेस। तब कैसे सिंक्रोनाइजेशन काम करता है, मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब हम कॉन्शियस ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट हो जाती है, सो वी आर इजीली ड्रॉन टू थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर अस। वी आर अट्रैक्टेड टू थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर अस, या तो एडिक्शन को ब्रेक करती है। जैसे एक इंसान स्मोक करती है, एडिक्टेड टू ड्रग, अगर आप कंस्टेंटली कॉन्शियस ब्रीथिंग करते हैं तो वो एडिक्शन को तोड़ता रोक सकते हैं।
0: ओके,
1: ये एक टूल है।
0: ओके,
1: या दैट यू कैन यूज यू नो टू फेस योर ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल।
0: ओके, और कॉन्शियस ब्रीदिंग की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे जीवन का हिस्सा भी बन सकता है, सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही में नहीं, आई बिलीव हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो हम चाहेंगे कि कोई टेक्निक जो है आप हमारे जितने भी श्रोता और दर्शक जुड़े अगर उन्हें बता सकते, क्योंकि आजकल के हमारी लाइफ ऐसी हो गई कि हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है, जहाँ पर हम उम्मीद को सबसे पहले खो देते हैं, है ना, विश्वास को सबसे पहले खो देते हैं। तो कोई ऐसी बेसिक टेक्निक है, ब्रीदिंग हो गया या कोई ऐसे आसन हो गए या कोई ऐसी चीज हो गई जिसे हम रोज अपनी लाइफ में एज अ प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं, जिससे जो है हमारा डेडिकेशन बढ़े लाइफ की ओर, देखने का नजरिया बढ़े, कुछ ऐसे टिप्स बता सकते हैं आप, हम जोड़ सकते हैं हमारे साथ? तो
1: हाँ, मैंने यम और नियम के बारे में बात की है और प्राणायामा के बारे में बात की है। अपनी I will refer to myself, right? क्योंकि मैं एक डिफ़िकल्टी में गुजर चुकी हूँ, और at the right moment I was introduced to pranayama.
0: Okay.
1: Yeah. Mm-hmm. And then I started practicing pranayama, and it was nearly for 2 years.
0: Okay.
1: And after 2 years I felt the difference.
0: जी.
1: तो जब मैंने ये difference महसूस की तो आत्मविश्वास बढ़ने लगा
0: जी,
1: मोटिवेशन बढ़ने लगा
0: जी,
1: और मेरे ऊपर जो

0: चेंज आना शुरू हुआ तो बहुत पॉजिटिव था
1: जी।
0: तो इसलिए लोगों को एनकरेज करती हूँ कि ये प्राणायाम और कॉन्शियस ब्रीथिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए
1: जी।
0: अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल,
0: तो मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसलिए ये टूल्स जो हैं, जैसे अभ्यास सिखाते हैं, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए
1: जी। और अपने यम नियम की बात की हमने, अनुशासन डिसिप्लिन की बात की, कहीं ना कहीं जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं एक अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है ना। सुबह उठने का एक समय, रात में सोने का एक समय, खाने पीने का एक समय, ये सारी चीज़ें हमें जो है लाइफ में परफेक्ट पूरी तरह तो नहीं बनाती है, लेकिन एक कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो हमें लाइफ में बहुत आगे ले जाता है
0: जी।
1: नीरज जी,
2: मुझे लगता है कि मैं इसके लिए सबसे आखिरी इंसान हूँ इसके बारे में बोलने के लिए, जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है। मैं आते समय हर्षा जी को कह रहा था कि रात्रि में मैं जो है ना कल 3:30-4 बजे सोया, इसलिए मेरी नींद नहीं खुल रही थी। तो जी बिल्कुल, मैंने भी सुना है, तो मैं सुनी सुनाई बात कह सकता हूँ, लेकिन मेरे जीवन के अनुभव को मैं यहाँ पे नहीं कह सकता, क्योंकि ये बोलना जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उसके लिए एक तरह से आई एम चीटिंग ऑन देम, यू नो, मतलब तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता इस डिसिप्लिन की बात। हाँ, लेकिन मैंने देखा है लोगों को आसपास, मेरे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हर्षा जी हैं, ऐसे ही मेरे टीम में एक आला जी हैं जो यूक्रेन से हैं, जो कि बहुत डिसिप्लिन हैं, अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जीती हैं। मेरे आसपास में जो लोग जिनसे मैं घिरा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही अपने जीवन में डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन
1: का पालन करते हैं,
2: करते हैं।
1: चलिए एक और श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं और देखते हैं लाइन पर कौन है। 4028085 है नंबर हमारा। हेलो, नमस्कार।
3: नमस्ते सुमी जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्ति जी, आप कैसे हैं?
3: मेहमान को भी, मैं ठीक हूँ, को भी नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार
3: जी। आप लोग उम्मीद के बारे में बात कर रहे हैं
1: जी।
3: मैंने हमेशा सुना है मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा
1: जी, बिल्कुल।
3: तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, एक्सेप्टेंस जरूरी है
1: जी,
3: जीवन में
1: जी।
3: तो अगर ये ठान ले तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्ति जी आपके विचारों के लिए। बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा उम्मीदें ही हमें निराशा की ओर ले जाती है ना। एक कहावत है ना कि जितनी चादर हो पैर उतना ही फैलाना चाहिए, लेकिन वहीं पर एक और बात है जो इसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि सपने तो आप बड़े बड़े देख ही सकते हैं, और अगर आप में वो क्षमता है, आप में वो विश्वास है, तो उन सपनों को आप पूरा भी कर सकते हैं। मतलब कि देखने का नज़रिया दोनों तरफ से है, किस तरह से और किस तरह के आपके जीवन की जो आपकी फाउंडेशन है, आप किस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर उम्मीद अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, उम्मीद की अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने युवाओं की बात की, कॉर्पोरेट लेवल पर बात की, आजकल जैसे कि हमारे मॉरिशन समाज में हमारे जो है बड़े बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण बहुत से बड़े बुजुर्ग जो है अलग रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जीवन में एक अलग राह पकड़ लेते हैं, तो बड़े बुजुर्गों के बीच उम्मीद का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऐसा होता है कि बीमार पड़ने से एक व्यक्ति अपने आप में ऐसे ही निराशा में गिर जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, और वहीं पर जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको निराशा ज़्यादा घेरती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, उनको क्या जो है बताना चाहेंगे?
2: बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि अभी मैं उस जीवन के अनुभव में नहीं हूँ, फिर भी मेरे घर में भी मेरे बूढ़े माता पिता हैं जो अकेले रहते हैं
1: जी।
2: वो झारखंड में, भारत में रहते हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अगर अभी जैसे मेरे पिता बीमार हो गए थे और मतलब उनके पैर से भी चलने में थोड़ी दिक्कत है और वो गाड़ी भी नहीं चलाते हैं
1: जी, जी।
2: तो ऐसे समय में बड़ी मुश्किलात बढ़ जाती है, तो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं उनको फिर जब देखता हूँ तो चूंकि बहुत शुरू से मैंने देखा है कि वो हमारे जो अभ्यास और सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज से जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: और हमेशा चाहे जीवन की किसी कैसी भी परिस्थिति हो उसको वो अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, और उसमें जो है उन्होंने हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने एक स्वरवेद नामक एक सदग्रंथ की संरचना की है, उसका वो नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं।

0: नित्य प्रतिदिन है ना, क्योंकि वो हमारे जीवन के उद्देश्य से हमको जोड़ता है, है ना। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तो मान लीजिए कि ऊपर नीचे तो होता ही है जीवन में, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनके जीवन में बहुत ऊपर नीचे होता है और अभी भी हो रहा है, बहुत बीमार चल रहे हैं, लेकिन तब भी जब एक चीज़ वो कहते हैं कि जब तक सांस है ना, तो अभी जब हम आशा की बात कर रहे हैं, तो जब तक सांस है तभी तक हमारे जीवन में हमारे विकास की, हमारे आध्यात्मिक विकास की अब जो है जो कि जो एक तरह से बोला जाए कि आशा है,
1: उम्मीद कायम है,
0: उम्मीद कायम है
1: जी।
0: और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगेन जैसे एक तो चीज़ हम बोलते हैं कि हमने कुछ प्राप्त किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम सबका ना एक जीवन एक रूप से दिया गया है। तो मान लीजिए कि बुढ़ापे में भी अगर हमें किसी तरह के अनुभव मिल रहे हैं जो कि अच्छे नहीं है मान लीजिए, या अच्छे भी हैं, तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारे अंदर एक अनुभव प्राप्त हो कि जब हम जवान थे फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे शरीर में बल था तो हमें क्या करना चाहिए था, वो हमें बुढ़ापा बताता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी फिजूल का हो रहा है, हर कुछ एक प्रयोजन से, एक व्यापक प्रयोजन से हो रहा है, है ना। वो बुढ़ापे का कष्ट भी एक प्रयोजन से है कि कैसे, चूंकि हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, है ना, मतलब कर्म के अनुसार जन्म की बात करते हैं, तो फिर जब जन्म हमारा होगा तो आत्मा उस ज्ञान को कभी भूलेगी नहीं, उसके अंदर वो ज्ञान जो है स्थापित हो जाएगा कि अच्छा बुढ़ापा आता है और कष्ट होता है और उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अपॉर्चुनिटी तभी है जब मेरा शरीर स्वस्थ है
1: जी,
0: है ना, जब मेरा शरीर जवान है।
1: यानी कि हमें अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करना भी अपने आप में एक उम्मीद है
2: जी,
1: है ना। और कहीं ना कहीं हमारे जो है विचारों को बदलना, समय के साथ चीज़ें बदलती है, हम वहीं अटके रह जाएंगे जहां पर हम कुछ साल पहले थे, तो शायद आज के जीवन में जीवन को जीना कठिन हो जाएगा। तो थोड़ा सा बदलाव अच्छा होता है, लेकिन जो भी बदलाव हो वो सकारात्मक हो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है, है ना। तो चलिए, यहाँ पर आज की चर्चा, ये कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ होप पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हाईली हम सबको इन्फ्लुएंस करती है, फिर चाहे हर उम्र के लोग क्यों ना हो। और कभी कभार सोशल मीडिया की चीज़ें कुछ हमें इस तरह से असर करती हैं, हम पर इम्पैक्ट करती हैं कि हम निराशा से घिर जाते हैं, जबकि वो शायद हमसे डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं है। तो किस तरह से इस वेब से हम अपने आप को निकाल पाए?
3: मैंने जैसे कि कॉन्शियस ब्रीथिंग में बात की है और जो मैंने एक्सपीरियंस की है और अल्लाह जी से सीखा है मैंने, और जब आप कॉन्शियस ब्रीथिंग करते हैं तो आपकी बुरी आदतें
1: उस पर आप कंट्रोल पाती हैं
3: जी बिल्कुल। तो जब मैंने शुरू की थी कॉन्शियस ब्रीथिंग, then I had a conversation with Allah and I told Allah I've stopped scrolling in social media.
1: Okay.
3: Because your parasympathetic nerve is getting activated there. So that's why I stopped scrolling. Or aisi bhi buri aadatein meri jo which was within me, I started getting rid of it gradually. So awareness, logon ko ye sab bata

0: आदतें मेरी मेरी जो विच वॉज विद इन मी, आई स्टार्टेड गेटिंग रीड ऑफ इट ग्रेजुअली.
1: जी
0: तो अवेयरनेस लोगों को ये सब बता.
1: ये उम्मीद दिवस सकारात्मक साबित हो, हम चाहेंगे थोड़ा सा उदाहरण देकर आप इस पर बात करें, क्योंकि आजकल बच्चों में उम्मीद जगाना बहुत जरूरी है.
2: जी आप ठीक कह रहे हैं. अगर निराशा माता पिता में है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा बच्चों में.
1: बिल्कुल.
2: तो कहीं ना कहीं जब हम वो सिर्फ एक मिरर है
1: जी.
2: जो हमारा जीवन है. जैसा मान लीजिए कि मैं पिता हूँ और मेरे जीवन में एक निराशा है, तो वो मेरा बच्चा जो है मिरर है सिर्फ उसका. वो सिर्फ हमको रिफ्लेक्ट, वो हमको बता रहा है कि देखिए पिताजी आपका जीवन ऐसा है. अगर वो निराशा में जा रहा है तो वो ये नहीं बता रहा है कि मैं निराश हूँ, वो बता रहा है कि आप ऐसे हैं इसलिए मैं ऐसा हूँ, है ना. एक तो एक पहलू वो है. तो और हाँ, अभ्यास जो है, हमारे इंस्ट्रक्टर हैं रूमी घोष और इश्मीत हैं और निवेदिता हैं, रिचर्ड हैं, सभी लोग जाते हैं स्पेशल नीड्स स्कूल में. ADSP है, चिल्ड्रन फाउंडेशन है जिनके साथ हम काम करते हैं, ट्रॉशेटिया करके एक स्कूल है रोज हिल में, वहाँ पे भी हम जाते हैं. इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के साथ जो है, मतलब जो जेल प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, तो ओपन जेल है उसमें विमेन जेल है और मेन जेल है उसमें रूमी और रिचर्ड जो है रेगुलर सेशंस लेते हैं, और उससे बहुत ही एक सकारात्मक प्रभाव उन पे भी पड़ रहा है. उनके जीवन में जो है वो एक उम्मीद की किरण जो है, मान लीजिए कि मैंने जीवन में, जैसे कि बच्चों की बात हो रही थी, तो बच्चों के लिए तो है ही कि जब वो बहुत कम उम्र में मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ जाते हैं जो उनको एक सकारात्मक जीवन की तरफ, एक जीवन जहाँ पर आशाएं हैं, और आशाएं जो हैं वो ज्ञान के साथ हैं, आशाएं जो हैं वो अज्ञानता के साथ नहीं है, है ना. तो हमारी जो शुरू में बात हुई थी कि आशा जो है वो ज्ञान के साथ है, और आशा जो है एक अज्ञानता के साथ भी है, और उस अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है, और उसकी भी मतलब, और मैं ये नहीं कहूँगा, और वो सीमा नहीं है. हो सकता है कि मैं एक हीनियस क्राइम को कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से, जब तक जीवन है मुझे फिर से जीव उठने की उम्मीद है. तो अगर कोई जेल में पहुंच भी गया, उसने कुछ कर भी दिया,
0: तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
2: तो फिर से उसको उठने की उम्मीद है. और योग जो है उसको फिर से वो उम्मीद देता है.
1: बिल्कुल. और कहीं ना कहीं ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए. जैसे आपने जजमेंट की बात की, हम आसानी से लोगों को आजकल जज करते हैं, है ना, और सुनी सुनी बातों पर ज़्यादा हम गौर करते हैं, जबकि मेरा और आपका जो पर्सनल रिश्ता है वो दिखाता है कि मेरा आपके प्रति क्या विचार है, मेरे आपके प्रति क्या भाव है. हम औरों की बातें सुनकर कभी कभार हम अपने रिश्तों को बिगाड़ देते हैं. जैसे आपने जेल की बात की, जैसे कि भले ही उन्होंने कोई बुरा काम किया है, लेकिन एक अवसर उन्हें भी मिलना चाहिए अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का. तो कहीं ना कहीं उम्मीद इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. और देखते ही देखते हमारे कार्यक्रम का जो समय है ये भी समाप्त होने को चला. ये एक ऐसा विषय है, शायद एक प्रोग्राम में इसे समाप्त करना मुश्किल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जीवन के समान है ना, जीवन से जुड़ा है. जितनी बातें होंगी उम्मीद उसके साथ जुड़ते जाएगी. तो हर्षा जी, आज के इस विषय को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे?
3: आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग दैट नीरज जी जस्ट सेड अबाउट योग, यू नो, वी इजीली स्टिग्मेटाइज पीपल एंड ऑल. योगा, व्हाट इज रियली योगा, इज लाइक आप अपनी माइंड और योग अपनी माइंड और बॉडी से को कंट्रोल करना चाहते हैं. तो आसनास क्यों करते हैं? अगर आप आसनास करते हैं तो आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल रख पाते हैं. तो जब आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल रख पाते हैं तो अपनी माइंड पर
1: भी रख पाते हैं.
3: तो इसलिए जब आसनास करते हैं तो मीनिंगफुली करना चाहिए. आसनास इज नॉट ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस, यस, देयर इज समथिंग डीपर टू इट. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रू एसेंस ऑफ योग, एंड देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी कैन हैव कंट्रोल ऑन आवर माइंड. तो ये मेरी मैसेज है.
1: बहुत धन्यवाद हर्षा जी. नीरज जी, जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं और दर्शकों को जो इस समय हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं?
2: मैंने तो बहुत कुछ बोलता ही रहा आज, और हर्षा जी ने अपने जीवन में उसको उतारा है।

0: तो अभ्यास जो आपने एक बात कही थी बुज़ुर्गों को लेके भी, तो अभ्यास जो है वो योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से भी, हमारा एक ऋषि लोक एक हमारे पूरे सिस्टम का एक पार्ट है ऋषि लोक जो है, जो आयुर्वेद की बात करता है। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका नाम जो है डॉक्टर रघु है, और वो आए भी हैं एमबीसी में, कभी कभी आते भी हैं। और तो मैं कह सकता, मैं ये कहना चाहूँगा बुज़ुर्गों के लिए खासकर कि, और सभी लोग जुड़े ऐसे, तो बुज़ुर्ग भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ूँ, बच्चे भी जुड़े हैं, योग और आयुर्वेद दोनों से हम जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन जो है, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो वो कहीं ना कहीं हम उस पर एक मतलब उसको स्टेबलाइज कर पाएंगे योग और आयुर्वेद के माध्यम से, क्योंकि दोनों अभिन्न अंग हैं। क्योंकि योग और आयुर्वेद जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीवन की हर एक अंग जो है, चाहे वो भोजन है, चाहे हम कैसे वॉक कर रहे हैं, सब जो है योग और आयुर्वेद का पार्ट है। तो अगर हम उसको अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारे बुजुर्ग भी स्वस्थ हो जाएंगे और मेरा जीवन भी आगे चल के अच्छा होगा, और जो हमारे बच्चे हैं उनका जीवन भी अच्छा होगा।
1: बिल्कुल। तो चलिए,
2: पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, अपने परिवार और दोस्तों से बात करना चाहिए, और छोटी लक्ष्य बनाना चाहिए, और वी शुड ट्राई न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ।
1: बिल्कुल।
2: दिस इज़ द वे फॉरवर्ड।
1: थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी और नीरज जी, आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। और अंत में यही हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस जो है, ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में उम्मीद कितनी ज़रूरी है। जीवन में किसी भी परिस्थिति से आप क्यों ना गुजर रहे हो, उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उम्मीद रखते हैं तो आपकी आधी परेशानियाँ वहीं समाप्त हो जाती हैं, और धीरे धीरे फिर आपको अपनी सभी समस्याओं का हल मिलने लगता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे अभ्यास को, जिनसे जुड़कर हमें आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला, और जो है आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए और आज के इस विषय पर इतनी सारी जानकारियां दी। आशा करते हैं जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े आज के इस कार्यक्रम से आपने भी लाभ उठाया होगा। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को, हमारी टेक्निकल टीम को, प्रोड्यूसर हमारी शीतल जी आपको धन्यवाद, हमारे कादे और उरुषा का भी सहयोग मिला, आप दोनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, और बस अपने उम्मीद को मत खोने दीजिए, उम्मीद को बनाए रखिए और देखिए जीवन में किस तरह से जो है सब कुछ अच्छा होने लगता है। नमस्कार, आप सभी को शुभ दिन।

0: आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ। नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 38 किस्म की पैदावारों के लिए लागू है। इनमें शिशुओं के खाने पीने की चीजें, तेल, दूध वाली पैदावारें शामिल हैं। राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि सरकार कंसोलिडेटेड फंड में 2.5 बिलियन रुपए लगाएगी ताकि जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित रहने के लिए परियोजनाएं चलाई जा सकें। इथियोपियन एयरलाइंस की पहली मुर्शद सुरान के दो दिन बाद कूटनीतिक और आर्थिक नतीजे सामने आ रहे हैं। इथियोपिया के राष्ट्र विदेश मंत्री हादेरा अदमासू और डेलीगेशन ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से एक रस्मी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तिजारती, पर्यटन और निवेश को और मजबूत करने की बातचीत हुई, खासतौर पर एक ऐसे वक्त पर जब इथियोपिया दुनिया में सबसे गतिशील अर्थनीतियों में से एक है। इस 14 जुलाई को पुलिस ने एक थंडर स्ट्राइक कार्रवाई चलाई। नॉर्दर्न डिवीजन और मेट्रो नॉर्थ के सहयोग से रात के 3 बजे से सुबह 10 बजे के बीच ये कार्रवाई चलाई गई। मुख्तलिफ जुर्मों के लिए 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें घरेलू हिंसा, बुजुर्गों पर के प्रति बदसलूकी और गैर कानूनी तरीके से मुर्शस में रहने के जुर्म शामिल हैं। विदेश में गजापति को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलेगा। यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसका ऐलान किया गया ताकि गजापति में पुनर्निर्माण कार्य किए जा सकें। 1 मिलियन वासी तंबुओं में रह रहे हैं क्योंकि इसराइल और हमास के बीच लड़ाई से बहुत नुकसान हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: You're listening RM Free Radio. Radio. आपके सितारे
1: और चलिए दोस्तों साथ दे रहे हैं आप RM3 रेडियो मनोरंजन पर एक बार फिर वो दिन जहां पर मैं बनती हूं आपकी म्यूजिकल हमसफर। मैं हूं परी आपके साथ ऑन रेडियो मनोरंजन लेकर आई हूं प्रोग्राम आपके सितारे। और जैसे कि आप जानते हैं हर एक का सितारे के ऊपर हम इस शो को डेडिकेट करते हैं। तो आज जिस सितारे को हम चुनकर लाए हैं उन्हें जाना जाता है एज डिम्पल क्वीन ऑफ बॉलीवुड। सो यस, इट्स वन एंड ओनली प्रीति जिंटा। उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स और उनके कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स आप पहुंचाएंगे अगले दो घंटे। बॉलीवुड की सबसे बबली, एनर्जेटिक और डिंपल क्वीन प्रीति जिंटा के नाम एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी स्माइल देखते ही मूड फ्रेश हो जाता है। उनकी इनोसेंस, कॉन्फिडेंस और नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड की मोस्ट लव्ड एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। तो बस उन्हीं के कुछ प्यारे गाने आपके लिए लेकर आए हैं। और प्रीति जिंटा की बात हो और ये गाना ना चले ऐसा कैसे हो सकता है, फ्रॉम द फिल्म दिल है तुम्हारा। ये गाना प्रीति जिंटा के सभी फैंस के नाम, फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। चलिए दोस्तों मेरा यानी कि परी का साथ दीजिए शाम के 6 बजे तक। ऐसे ही कुछ प्यारे गीत आपके लिए हम चलाने वाले हैं, आपका साथ रहेगा और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी होने वाले हैं। 5250620005250620 होगा आपका इंतजार।

0: के सितारे
1: सो वेल फ्रेंड्स आज प्रीति जिंटा और उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स आप तक पहुंचा रहे हैं थैंक यू सो मच इतने प्यार से आपने हमें चुना यानी कि रेडियो मनोरंजन को चुना एज योर रेडियो पार्टनर सो मैं हूं परी आपके साथ और दिन के 4:22 हो रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं तो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस का हम वेलकम कर रहे हैं 5250600520526200 पर जहां पर आपके स्वीट मैसेजेस आप हम तक पहुंचा सकते हैं तो चलिए दोस्तों प्रीति जिंटा के बारे में हम बात कर रहे हैं इनका जन्म हुआ ऑन 31st of January 1975 शिमला में हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ और बहुत ही कम लोग जानते हैं उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स और क्रिमिनल साइकोलॉजी की पढ़ाई की है बॉलीवुड में आने से पहले वो टीवी कमर्शियल्स करती थी और 1998 में उन्होंने डेब्यू किया दिल से फिल्म के साथ और पहली ही फिल्म में ऑपोजिट शाहरुख खान वो नजर आई और उनका साथ दिया शाहरुख खान और मनीषा कोइराला ने मूवी में उनका रोल भले ही छोटा था लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फिल्मफेयर ने उन्हें बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिया छोटा सा रोल लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल रोल और उसके बाद तो कह सकते हैं दैट वाज नो लुकिंग बैक तो आज उन्हीं के कुछ पॉपुलर गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं दिल से फिल्म से शुरुआत हुई और उसके बाद एक के बाद एक बस अपनी सक्सेस की सीढ़ियाँ वो चढ़ती गई तो चलिए दोस्तों अभी हमारा साथ दे रहे हैं प्रीति जिंटा के कुछ प्यारे गाने आज आपके नाम और इस वक्त अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ड्रॉप इन आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस इस वक्त वक्वा से हमारा साथ दे रहे हैं मिस्टर गोविंद रघुनंदन आपकी ब्यूटीफुल वाइफ वेदा और अभी तो अपना टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं सो आई हैव अ वंडरफुल टाइम एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप आपके नाम सभी हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस आप हमारा साथ देते रहिए प्यारे गाने हम आप तक पहुंचाते रहेंगे एंड फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग कहते हैं कि गाना ऐसा है जिसे हर वक्त सेलिब्रेट करने का मन करता है घर में कोई भी सेलिब्रेशंस हो इस गाने को जरूर सुनना पसंद करते हैं सो दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म क्या कहना गोज आउट फॉर एवरीवन जो हमारा साथ दे रहे हैं प्रीति जिंटा स्पेशल आपके सितारे प्रोग्राम ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन एंजॉय दिस वन

0: RM3 Radio.
1: आपके सितारे।
2: तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के बारे में, जो उनकी स्माइल के लिए काफ़ी पॉपुलर है और लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है। चैलेंजिंग रोल्स हो या फिर रोमांटिक रोल्स, हर एक रोल को बाखूबी निभाती है। और बात की हमने उनकी डेब्यू फिल्म जो हुई थी इन 1998 जो थी दिल से, और उसी साल उनकी दूसरी फिल्म सोल्जर भी रिलीज हुई अपोजिट बॉबी देओल, जहाँ पर उनकी स्माइल को, उनकी एक्टिंग को, उनके लोग लुक्स को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद। सो यहाँ पर आपको बता दें, प्रीति जिंटा ने एक आईपीएल टीम पंजाब किंग्स भी खरीदी है और वो एक को ओनर है, और साथ ही हमेशा जब भी उनकी मैचेस होती हैं, उनकी टीम की मैचेस होती हैं, वो हमेशा रहती है वहाँ पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो ये तो बात हुई उनकी टीम की, जहाँ पर जो उनके फैंस हैं वो मैदान में उन्हें देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि पता होता है कि जब पंजाब किंग्स का जो मैच होने वाला है तब प्रीति जिंटा कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आए।

आएंगी उनकी झलक देखने को जरूर मिलेगी। तो वेल आपको बता दी दैट 1998 से उनकी शुरुआत हुई और साल 2000 आते आते प्रीटी जिंटा ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, क्या कहना कल हो ना हो, वीर ज़ारा, सलाम नमस्ते एंड मेनी मोर। सो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम। सो ये है फ्रॉम द फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, जहां पर उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। चुलबुली बबली एक्ट्रेस से एक ऐसा रोल जिन्होंने सबकी आंखों में आंसू लेकर आए, एक ऐसा किरदार जो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली निभाया। और इस फिल्म में उनके साथ रानी मुखर्जी और सलमान खान भी नजर आए। चलिए दोस्तों, यहां पर कुछ और उनकी पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स हम शेयर करने वाले हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम आपके सितारे, मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक। और चलिए यहां पर साथ दे रहे हैं हमारे कुछ और दोस्त भी, विजया जी हमारा साथ दे रही हैं आप, सो वार्म वेलकम आपका ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। और सरिता जी कटरबोन से कहती हैं कि आपका शो काफी पसंद आ रहा है, प्रीटी जिंटा काफी क्यूट एक्ट्रेस और सोल्जर फिल्म के गाने को आप बहुत पसंद करती है, वीर ज़ारा फिल्म भी उनकी आपको बहुत पसंद आई। तो बस सरिता जी साथ जुड़े रहे, कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आपके लिए चलाने वाले हैं। फॉर नाउ फ्रॉम द फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250 6200 5250 6200।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए अभी के लिए रेखा जी हमारा साथ दे रही हैं, आप डेडिकेट कर रही हैं गाना फॉर बेटा अंश पोमो जी से हमारा साथ दे रही हैं, तो वो वेलकम आपका रेखा जी ऑन रेडियो मनोरंजन। ऐसे ही साथ देते रहिए और ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपको हम सुनाते रहेंगे। और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर, जहां पर कुछ और प्यारे गाने, प्रीति जिंटा से जुड़ी हुई कुछ पर्सनल प्रोफेशनल बातें आपसे हम शेयर करने वाले हैं। इट्स योर प्रोग्राम आपके सितारे, मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक। कुछ प्यारे गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं एंड फ्रॉम द फिल्म दिल है तुम्हारा, ये गाना आप सभी के लिए, क्योंकि हमारा दिल तो आप ही का है, हमारे डियर लिसनर्स जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। सो आवाज़ें यहाँ पर कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक की, अ ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ऑल द फैंस ऑफ प्रीति जिंटा, फॉर ऑल द फैंस ऑफ रेडियो मनोरंजन। चलिए साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों, एक खूबसूरत सा गाना आप सभी के नाम साथ दे रहे हैं आप। सो जैसे एक बार फिर आपको याद दिला देंगे, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620052506200 पर मैं परी कर रही हूँ आपका इंतजार।

0: आपके सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, प्रीति जिंटा के कुछ प्यारे गानों के साथ आज हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, आपके सितारे प्रोग्राम। इस आवर में आप सभी का वार्म वेलकम, आप सभी का स्वागत करते हैं। 5:04 ट्यूसडे आफ्टरनून, 14th of July, और आज प्रीति जिंटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि डिफरेंट फिल्मों के साथ उन्होंने हमें एंटरटेन किया, सबसे ज़्यादा पसंद आई लोगों को उनकी स्माइल और उनकी इनोसेंस जो हर फिल्म में नज़र तो आती थी, लेकिन फिर एक फिल्म ऐसी आई जिसने हर किसी का दिल जीत लिया, क्योंकि कहानी थी एक एलियन की। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो ऐसी फिल्में तो कम ही देखने को मिलती है, लेकिन जब ये फिल्म आई तो ऋतिक रोशन और पीटी जिंटा की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी को भी लोगों ने पसंद किया। तो चलिए उसी फिल्म का ये गाना फॉर एवरीवन जो हमारा साथ दे रहे हैं। बात कर रहे हैं फिल्म कोई मिल गया की, जिसमें नजर आई थी पीटी जिंटा ऑपोजिट ऋतिक रोशन, एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी के लिए। Enjoy this one. I love.

सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर पीटर जिंटा के बारे में हम बात कर रहे हैं और पीटर जिंटा सिर्फ एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे फियरलेस एक्ट्रेसेस में भी उनका नाम आता है। चाहे मीडिया के सामने अपनी बात रखनी हो या किसी इशू पर अपना ओपिनियन देना हो, प्रीति ने हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कही और इसी वजह से उन्हें बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का टैग भी दिया गया है और शायद इसी कॉन्फिडेंस ने उनको एक डिफरेंट कैरेक्टर बनाया इन बॉलीवुड। और कहती हैं कि वो जैसी हैं वो एकदम रियल है, जो उनके दिल में है वही उनके जुबान पर है। तो बस जैसे हम कहते हैं कि जैसी वो है वो बिल्कुल वैसी ही उनके फैंस को पसंद आती है। सभी के लिए एक और प्यारा सा गाना और प्रीति ज़िंटा पर पिक्चराइज्ड ये गाना फ्रॉम द फिल्म वीर ज़ारा परफेक्टली सूट होता है उनकी पर्सनालिटी को, उनके सभी फैंस जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं एंड ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 RM3 रेडियो मनोरंजन, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250602000 पर।

तो जी हाँ दोस्तों, आज प्रीति जिंटा स्पेशल लेकर आए हैं आपके लिए और बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि उनकी जोड़ी जो है वो काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ बनी, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी जोड़ी को पसंद किया गया शाहरुख खान के साथ, जहाँ पर पहली ही फिल्म में उन्होंने उनके ऑपोजिट काम किया और उसके बाद वीर ज़ारा, कभी अलविदा ना कहना और बहुत सारी और फिल्में भी जहाँ पर उन दोनों की जोड़ी को लोगों ने पसंद किया। हाउ कैन वी नॉट मेंशन वीर ज़ारा, जो एक आइकॉनिक लव स्टोरी बन गई और

एक्टिंग हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ, हमेशा से काफ़ी बेबाक रही है और उनकी जो बातें हैं वो सीधा कहते हैं ना कि जो दिल में होता है वही उनके ज़ुबान पर होता है. दैट्स प्रीटी ज़िंटा फॉर यू. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसी ब्यूटिफुल एक्ट्रेस को. और वैसे तो इनका जन्मदिन जनवरी के महीने में आता है, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ उनके प्यारे गाने आपको सुनाया जाए और क्यों ना आज आपके साथ इन स्पेशल मोमेंट्स को शेयर किया जाए. सो यहाँ पर वीर ज़ारा फिल्म की हमने बात की है एंड उसी फिल्म का ये ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सुपर रोमांटिक गाना. कहते हैं कि वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, लेकिन इस फिल्म ने हमें बता दिया कि अगर प्यार सच्चा हो तो ये वक्त को भी हरा सकता है. सो फॉर ऑल द फैंस ऑफ प्रीटी ज़िंटा जो हमारा साथ दे रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल द फैंस ऑफ शाहरुख खान, एंजॉय दिस वन.

0: के सितारे।
1: सो वेल फ्रेंड्स, अगर यश चोपड़ा की मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरीज की बात हो तो वीर ज़ारा का नाम जरूर आएगा। प्रीति ज़िंटा ने ज़ारा के रोल को इतने ग्रेस और डिग्निटी के साथ निभाया कि आज भी लोग उस कैरेक्टर को याद करते हैं। शाहरुख खान और प्रीति की केमिस्ट्री ने इस फिल्म को एवरग्रीन बना दिया और जब भी ये गाना यानी कि तेरे लिए या फिर दो पल रुका बजता है तो दिल खुद ब खुद इमोशनल हो जाता है। दैट वॉज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लव स्टोरी। वीर ज़ारा फिल्म का ये गाना था आप सभी के नाम। सो वेल फ्रेंड्स, प्रीति ज़िंटा की हम बात कर रहे हैं और इंडस्ट्री में दोस्ती निभाना आसान नहीं होता, लेकिन प्रीति ज़िंटा ने सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन और इवन बॉबी देओल के साथ हमेशा से एक अच्छी बॉन्डिंग बनाए रखी। और बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि वो प्रीति ज़िंटा को प्यार से प्रीतम सिंह करके बुलाते हैं और आज भी उनकी दोस्ती उतनी ही गहरी है। ऑफ स्क्रीन इंटरव्यूज में भी उनका फन लविंग नेचर साफ नजर आता है और वो सेट्स पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जानी जाती है। सो दैट्स प्रीति ज़िंटा आपके लिए और उन्हीं के कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स आज हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। और एक फिल्म ऐसी भी आई थी जहां पर उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की का किरदार निभाया। प्रीति ज़िंटा ने अपने करियर में सिर्फ ग्लैमरस रोल्स नहीं बल्कि उन्होंने ऐसी फिल्में भी चुनी जो सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। क्या कहना, उनमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जब इस तरह के सब्जेक्ट्स में बॉलीवुड कम रुचि लेता था और ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में कम ही बात होती थी, तब प्रीति ज़िंटा ने एक अनमैरिड मदर का रोल निभाया और ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स ने भी उनकी परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ की। साथ ही उन्होंने इस फिल्म के साथ बता दिया कि वो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक एक्टर भी है। सो दैट्स प्रीति ज़िंटा और आज उन्हीं के कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स लेकर आए हैं आपके लिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

और लव लाइफ की बात करें तो उनका नाम कुछ स्टार्स के साथ तो कम ही जुड़ा, लेकिन नेस वाडिया एक जाने माने बिजनेसमैन उनके साथ उनका नाम जुड़ा था एंड काफी सीरियस रिलेशनशिप था। काफी सालों का ये रिश्ता एक दिन टूट गया और उसके बाद शी वॉज क्वाइट हार्ट ब्रोकन, लेकिन उसके बाद उन्हें प्यार मिला एक फॉरिनर में। जी हाँ, जेन गुड इनफ के साथ उन्होंने शादी की और फिर सरोगेसी से वो बनी मदर दो ट्विंस की। इसके बारे में भी बात होगी, प्रीति जिंटा की कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी के लिए दिल चाहता है फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम। एंजॉय दिस वन।

0: के सितारे।
1: और चलिए दोस्तों, 4 बजे से ये सफ़र शुरू हुआ था और धीरे धीरे आगाज़ के बाद अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ हमारा ये प्रोग्राम। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा 2 घंटों का ये प्रीति ज़िंटा स्पेशल अपने खूबसूरत मंजर तक पहुंचने वाला है। आज हमने याद किया एक ऐसी एक्ट्रेस को जिनकी मिलियन डॉलर स्माइल, अडोरेबल डिम्पल्स और नेचुरल एक्टिंग ने बॉलीवुड को काउंटलेस अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दिए। दिल से लेकर कल होना हो तक, वीर ज़ारा, सलाम नमस्ते और कोई मिल गया तक, प्रीति ज़िंटा ने हर रोल में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, प्यार पर यकीन दिलाया और जिंदगी को मुस्कुराकर जीना भी सिखाया। शायद इसीलिए सालों बाद भी उनकी फिल्में देखते ही एक अलग सी वॉर्म्थ और नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। आप सभी का दिल से शुक्रिया जो आज इस म्यूजिकल सफर में हमारे साथी बने, और उम्मीद करते हैं कि प्रीति ज़िंटा की यादों को आपने भी ताज़ा किया होगा हमारे साथ। मैं हूं परी और अभी के लिए तो मैं आपसे ले रही हूं अलविदा, लेकिन अलविदा ले रही हूं बस कुछ 6 मिनटों के लिए, बिकॉज एक बार फिर आपसे मिलने आएंगे शाम ठीक 6:30 बजे, लेकर आएंगे आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है नई सोच। कुछ पॉजिटिव ब्यूटिफुल सॉन्ग्स के साथ आपके दिल को बहलाएंगे, आपको थोड़ा सा इमोशनल करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद कुछ रोमांटिक गाने, और साथ रहेगा आपका और मेरा रात के 9 बजे तक ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन जिन्होंने इतने प्यार से हमारा साथ दिया। और इस शो को क्लोज करने के लिए इससे बेटर और कोई सॉन्ग हो नहीं सकता। कल होना हो फिल्म का ये गाना जिसमें नजर आई थी प्रीति ज़िंटा, और उनकी एक्टिंग को लोगों ने इतना सराहा कि इस फिल्म के लिए उन्हें एक अवार्ड भी दिया गया। तो बस जिंदगी में भी वो जीतती ही आई है और जीतती ही रहे, यही विशेज़ हैं उनके सभी फैंस की ओर से। ऐसे ही हर एक सितारे को सेलिब्रेट करते रहेंगे, आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम एक बार फिर लेकर आएंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचार बुलेटिन की ओर, उसके बाद लेकर आएंगे प्रोग्राम नई सोच। मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड, दिल से साथ निभाइए हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन पर।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: घड़ी मिलाते चलें, शाम के ठीक 6 बजे हैं।

0: पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। सरकार पेंशन सुधार पर बरकरार है क्योंकि मौजूदा प्रणाली का समर्थन नहीं किया जा सकता। विपक्ष नेता केपीएनक्यू के जवाब में प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि बजट प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त खर्चों में बदलाव नजर आने लगे हैं। प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 38 किस्म की पैदावारों के लिए लागू। इनमें शीशों के खाने पीने की चीज़ें, तेल, दूध वाली पैदावारें शामिल। राष्ट्रसभा में पीएमक्यूटी के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया। संसदीय प्रश्नों के सत्र के दौरान विपक्ष सांसद जोआना बेहोंशे ने मॉरिशस में जल सुरक्षा के सिलसिले में सवाल किया। मंत्री पैट्रिक असियाबादे ने ऐलान किया कि देश के उत्तर में एक डिसैलिनेशन इकाई स्थापित की जाएगी। और गजापति को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलेगा। ईयू के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। नमस्कार, आदाब। सरकार पेंशन सुधार पर बरकरार है क्योंकि मौजूदा प्रणाली का समर्थन नहीं किया जा सकता। विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि बजट प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त खर्चों में बदलाव नजर आने लगे हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे पर बगैर गौर करते हुए। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने 6 कदमों के बारे में भी बात की जिन्हें अमल में लाया जा चुका है ताकि इस सुधार के अतिरिक्त दाम और सार्वजनिक कर्ज के घाटे को कम किया जा सके। राष्ट्रसभा में ही प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी को लेकर बातचीत, यानी एक सत्र के दौरान प्लास्टिक प्रधानमंत्री ने कहा कि शिशुओं के खाने पीने की चीज़ें, तेल, दूध वाली पैदावारें, प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी के उन 38 किस्म की पैदावारों में शामिल हैं जो लागू हैं। राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि सरकार कंसोलिडेटेड फंड में 2.5 बिलियन रुपये लगाएगी ताकि जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित रहने के लिए परियोजनाएं चलाई जा सके। मालवीय चाकोनात की तसुनारान।
1: प्रधानमंत्री ने सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपए का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी 38 श्रेणियों के उत्पादों पर लागू नहीं होगा क्योंकि इसका आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है और फिलहाल इनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
2: The House may wish to note that there's already a climate and sustainability fund to support national initiatives to protect, manage and invest and as well restore our natural ecosystems and combat the effects of climate change. For the financial year 2026-2027, government will transfer 2.5 billion rupees from the consolidated fund to the climate and sustainability fund. There is presently a scheme operated by the Mauritius Revenue Authority which provides for a financial incentive to be granted to exporters and local recyclers of waste PET bottles to encourage the removal of waste plastic bottles from the waste stream. Under this scheme, exporters of waste PET bottles are refunded an amount of 15 rupees per kilogram of waste PET bottles exported and local recyclers an amount of 30 rupees per kilogram of waste PET bottle which are recycled locally. Given that the excise duty will be extended to cover plastic bottles, the refund scheme will also be extended to cover waste public plastic bottles to be exported or recycled, whether they are subject to excise duty or not.
1: सांसद दोहयाउन ने नफरत भरी भाषणों की निगरानी और रोकथाम, विशेष रूप से ऑनलाइन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। प्रधानमंत्री ने इस विरासत को संरक्षित करने और लागू कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: In a bid to oppress the previous government, close access to social media and slowed internet debit. When we came to power, we vowed that never again should we allow our shared peace to be corroded by totalitarian minds. We condemned any attempt to muffle expression. This is an imperative in a multicultural and pluralistic democratic society. Madam Speaker, I shall be ruthless against anyone, and I repeat, against anyone who jeopardizes national unity and social cohesion. Government remains resolute in its determination to preserve the

0: the unity of our nation and to assure that Mauritius continues to be peaceful, inclusive and a harmonious society. Any new measure must remain proportionate and consistent with the constitutional protection for freedom of expression.
1: सांसद झमन का प्रश्न फरवरी 2025 में तेहूज में 114 मिलियन रुपए की बरामदगी की जांच से संबंधित था। प्रधानमंत्री ने गिरफ्तारियों का घटनाक्रम प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी भी शामिल है।
2: Can the Honorable Prime Minister inform the House whether the FCC is enough equipped, has a required technical expertise and manpower to carry such cases, as there is a long list of cases pending at the level of the FCC?
0: That is actually the case, and I think I must accept what the Honourable Member is saying, that we need experts to deal with all those things. They're not trained enough for that. That is why we have people from former Scotland Yard officers who are actually helping them, assisting them in their inquiry.
1: डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने सांसद काजैन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान 6 नई विदेशी एयरलाइनों ने मॉरिशस के लिए कमर्शियल उड़ानें संचालित करने हेतु आवेदन किया है।
0: गवर्नमेंट इज पर्सुइंग ए पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ एयर एक्सेस थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट्स। दिस अप्रोच एम्स टू एनहांस एयर कनेक्टिविटी व्हाइल एंश्योरिंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंटिन्यूड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ of our national carrier, that is Air Mauritius Limited. Madam Speaker, air connectivity is extremely important for the development of our country. Any decision for opening up our airspace to any airline would be taken after a thorough assessment has been made as to the benefits that may accrue to Mauritius from such an agreement.
1: सांसद अंकुचिल का प्रश्न ट्रियानो के सबवे में कैमरे लगाने के बारे में था। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि सेफ सिटी प्रणाली के कैमरे सबवे के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मॉरिशस टेलीकॉम नई तकनीकी विशिष्टताओं पर काम कर रहा है।
3: संसदीय प्रश्नों के सत्र के दौरान विपक्ष सांसद जोआना बेरोंजे ने मॉरिशस में जल सुरक्षा के सिलसिले में सवाल किया। मंत्री पैट्रिक असियावादेन ने ऐलान किया कि देश के उत्तर में एक डिसैलिनेशन इकाई स्थापित की जाएगी जो सौर ऊर्जा से कार्यरत होगी। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस इकाई के जरिए रोजाना 10,000 से 50,000 वर्ग मीटर जल का उत्पादन किया जाएगा ताकि घरों, खेतों, व्यापारों और पर्यटन गतिविधियों की मांगों को पूरा किया जा सके। मंत्री पैट्रिक असियावादेन को सुनते हैं।
4: Le gouvernement étudie la mise en place d'une unité de dessalement alimentée par l'énergie solaire dans la région du Nord. Une expression of interest a été lancée en septembre 2025, l'année dernière, pour la réalisation d'une étude de faisabilité portant sur la mise en place d'une usine de dessalement de grande capacité, comprise en 10 000 et 50 000 mètres cubes par jour, dans le nord du pays. Monsieur le Vice-président, 4 candidats présélectionnés ont été invités à soumettre leurs offres dans le cadre d'un appel d'offres lancé en mai 2026, cette année-ci. Les propositions doivent être reçues au plus tard le 24 juillet de cette année-ci, donc dans quelques jours. Donc le contrat sera attribué et l'étude est prévue d'ici septembre 2026 et va durer autour de 8 à 10 mois.
3: बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको बता रहे थे, सरकार पेंशन सुधार पर बरकरार हैं क्योंकि मौजूदा प्रणाली का समर्थन नहीं किया जा सकता। विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि बजट प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त खर्चों में बदलाव नजर आने लगे हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे पर बगैर गौर करते हुए। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने 6 कदमों के बारे में भी बात की जिन्हें अमल में लाया जा चुका है ताकि इस सुधार के अतिरिक्त दाम और सार्वजनिक कर्ज के घाटे को कम किया जा सके। दसापाला सोमी विधि मासीपुरन।
5: In the light of the changes or policy reversals in relation to the measures
1: अपने प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के माध्यम से विपक्ष नेता ने पूछा कि क्या बजट में किए गए परिवर्तनों के बाद एक संशोधित व्यापक आर्थिक और बजटीय ढांचा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री के अनुसार लगभग 500 कदमों में से केवल एक की समीक्षा की गई है, पेंशन के लिए मींस टेस्ट को हटाना। डॉक्टर नवीन रामगुलाम का कहना है कि बजटीय प्रक्रिया में इस तरह की स्थिति के लिए पहले से ही प्रावधान है।
0: With the removal of the means test, it is estimated
1: मीन्स टेस्ट को हटाने के साथ जनवरी से जून 2027 की अवधि के लिए स्टेट एज पेंशन के तहत अतिरिक्त व्यय का अनुमान 6.2 बिलियन रुपए है, जो कि जीडीपी का

0: एग्जीक्यूशन का मूल्यांकन पहले से ही शामिल है जो इस तरह की स्थितियों को पूरी तरह से ध्यान में रखता है। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि अप्रोप्रिएशन एक्ट 2027 को 232.4 बिलियन रुपए के कुल बजट के साथ अपनाया गया है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट एस्टीमेट्स 2026-2027 के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीओपी के भुगतान हेतु 30.1 बिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। जनवरी से जून 2027 की अवधि के लिए स्टेट एज पेंशन के भुगतान हेतु 20.5 बिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। मेंस टेस्ट को हटाने के कारण स्टेट एज पेंशन को वित्त पोषित करने के लिए आवश्यक सटीक राशि अभी ज्ञात नहीं है, क्योंकि सरकार को अभी उन भावी पेंशन भोगियों की सही संख्या नहीं पता है जो 60 वर्ष की आयु से ही अपना पेंशन लेना चुनेंगे। बजटीय प्रक्रिया में संविधान की धारा 105 के अनुसार यदि आवश्यक हो तो किसी भी संबंधित व्यय मद के लिए सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत करने का प्रावधान भी है, इसलिए अप्रोप्रिएशन एक्ट की कुल राशि को बदलने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नेता का कहना है कि मेंस टेस्ट को हटाने और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली अतिरिक्त लागत के बाद सरकार ने बजटीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए पहले ही 6 कदम लागू कर दिए हैं।
1: These include first,
0: इन कदमों में शामिल है, पहला, निवेश परियोजनाओं की प्राथमिकताओं की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरा, वित्त मंत्रालय के एक अतिरिक्त वित्तीय सचिव की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई गई है जिसका उद्देश्य प्रत्येक मंत्रालय के खर्चों की जाँच करना और डायरेक्टर ऑफ ऑडिट की रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई करना है। इसके संबंध में कई बैठकें हो चुकी हैं और खर्चों को तर्कसंगत बनाने के रास्ते तलाश दिए गए हैं। तीसरा, मैं व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता पर एक स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता करूंगा जिसका उद्देश्य दोहराव, अक्षमताओं और फिजूल खर्ची की पहचान करना है। प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करनी होगी। चौथा, वित्त मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसे कर प्रणाली की गहन समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है ताकि उसकी निष्पक्षता, दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सके। टैक्स विशेषज्ञों से गठित और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ साथ डॉक्टर फिलिप बेकर जैसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा समर्थित ये समिति अगले महीने अपना काम शुरू करेगी। इस समीक्षा को पूरा होते ही कदम लागू किए जाएंगे जिनसे सरकारी राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। पांचवा, वित्त मंत्रालय कुछ गैर रणनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री और साथ ही कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने पर विचार कर रहा है ताकि इन परिसंपत्तियों का मूल्य बढ़ाया जा सके और राज्य की हिस्सेदारी को लाभदायक बनाया जा सके। छठा, CSG अंशदान के संबंध में सरकार एक सुचारू संक्रमण की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को स्थायी रूप से समाप्त करने से पहले सीमित अवधि के लिए इन अंशदानों का एक हिस्सा कंसोलिडेटेड फंड में जमा करना जारी रखने पर विचार कर रही है।
1: टू क्रेडिट पार्ट ऑफ द CSG कंट्रीब्यूशंस टू द कंसोलिडेटेड फंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड बिफोर दिस प्रैक्टिस इज फेज्ड आउट एंटायरली।
0: जोली जोंगा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या बजट में शागस समझौते से मिलने वाली अपेक्षित राजस्व को शामिल किया गया है।
1: एग्रीमेंट हैज बीन साइंड विद द यूके टू रिमाइंड यू एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड दे हैवंट गोन टू द प्रोसेस इन द यूके। We are very confident, Madam Speaker, that this will happen.
0: विपक्ष नेता का एक और प्रश्न, क्या सरकार पेंशन सुधारों पर वापस विचार करने का इरादा रखती है?
2: Will government backpedal completely on the pension reforms altogether?
1: No question of doing that, Madam Speaker. We all know, and they know, that the basic retirement pension is unsustainable in its actual form. Now they're promising, if ever. They come back, they will continue on the same path of unsustainability, which brought the country in the financial abyss we find ourselves today.
0: यूनियनों द्वारा घोषित आम हड़ताल की स्थिति में अंत में जोली जोंगा ने पूछा कि क्या सरकार पूरे फाइनेंस बिल को स्थगित करने का इरादा रखती है?
2: Will the Honorable Prime Minister consider suspending the finance bill first and engage in genuine tripartite social dialogue, or is it prepared, Madam Speaker, to plunge

0: the country into economic paralysis.
1: First of all, I did not hear the union say that they want to suspend the finance bill. You were saying that. I didn't hear the union say that. And secondly, there will be no change from what I have said. And that's it.
2: राष्ट्रसभा में आज मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर बहस की गई। भूमि और आवास मंत्री ने इस विधेयक को पेश किया जिसके तहत मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सेवाएं शुरू की जाएंगी। इस इकाई से देश क्षेत्रीय जल के बारे में जानने और सच्चाई प्रकाशित करने का मौका मिल रहा है देश को। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि ये बिल एक छोटे टापू देश की प्रभुसत्ता की भी बुनियाद है। उन्होंने इस विधेयक के तीन पहलू आम किए, कानूनी जिम्मेदारी और जियोग्राफिकल हकीकत, शागुस द्वीप समूह पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता तथा आर्थिक पहलू और क्षेत्रीय जल का विकास शामिल है। मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल को आज पेश किया गया। अन्य खबरों में एपिलेप्सी के खिलाफ प्रेस्क्राइब प्रिगाबालिन दवा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रगनोश लोग इसका अलग तरीके से सेवन कर रहे हैं। एफसीसी ने इस दवा की सप्लाई के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय की फार्मास्यूटिकल सेवाओं में कई खामियों का उल्लेख किया। इसके जवाब में आयात की प्रणालियों और प्रक्रियाओं के एक जायजे से पता चला है कि फार्मास्यूटिकल सेवा जिम्मेदार ने कहा कि कानूनी ढांचा पुराना हो गया है और इसे फार्मेसी क्षेत्र से जुड़े कानूनों पर दोबारा गौर करने की उम्मीद है। इस 14 जुलाई को पुलिस ने एक थंडर स्ट्राइक कार्रवाई चलाई। नॉर्दर्न डिवीजन और मेट्रो नॉर्थ के सहयोग से रात के 3 बजे से सुबह 10 बजे के बीच ये कार्रवाई चलाई गई। मुख्तलिफ जुर्मों के लिए 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें घरेलू हिंसा और बुजुर्गों के प्रति हिंसा तथा गैर कानूनी तरीके से मॉरिशस में रहने के अपराध शामिल हैं। इथियोपियन एयरलाइंस की पहली मॉरिशस उड़ान के 2 दिन बाद कूटनीतिक और आर्थिक नतीजे सामने आ रहे हैं। इथियोपिया के राष्ट्र विदेश मंत्री हादिरा अदमासू और डेलीगेशन ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग पोटली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तिजारती, पर्यटन और निवेश को मजबूत करने की बातचीत हुई, खासतौर पर एक ऐसे वक्त पर जब इथियोपिया दुनिया में सबसे गतिशील अर्थनीतियों में से एक है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर यह विवरण।
3: इथियोपियन एयरलाइंस की पिछले रविवार को प्लेजांस के लिए पहली उड़ान न केवल एक नए हवाई संपर्क की शुरुआत है बल्कि ये मॉरिशस और इथियोपिया के बीच आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय भी खोलती है। इस मंगलवार विदेश राज्य मंत्री आदिरा अदमासू के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल जिसमें इथियोपियन एयरलाइंस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर लेमा गुतेता भी शामिल थे, का पोटली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम द्वारा स्वागत किया गया। बातचीत का मुख्य केंद्र हवाई संपर्क को मजबूत करना और मॉरिशस तथा अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक के बीच व्यापारिक आदान प्रदान का विकास करना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इथियोपिया 2026 में 9.2% की दर के साथ अफ्रीका में सबसे तेज आर्थिक विकास दर्ज करने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और सेवाओं में बड़े निवेश से प्रेरित है। मॉरिशस के लिए ट्रेजरी बिल्डिंग में हुई ये बैठक अफ्रीकी महाद्वीप के एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी के साथ साझेदारी को गहरा करने की साझा इच्छा को दर्शाती है।
4: अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म, मॉरिशस इज नोन फॉर इट्स फाइनेंशियल सेंटर।
3: पर्यटन के अलावा मॉरिशस अपने वित्तीय केंद्र और चीनी उद्योग के विकास के लिए जाना जाता है, अतः कई अनुभव और विशेषज्ञता पाई जाती है जो मॉरिशस इथियोपिया के साथ साझा कर सकता है। दूसरी ओर इथियोपिया एक औद्योगिक तथा कृषि केंद्र है जो विकसित हो रहा है। उसका कृषि खाद्य तेजी से बढ़ रहा है। उद्देश्य है दोनों देशों की जानकारियों को साझा करना ताकि दोनों देशों को लाभ हो। एक 130 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ इथियोपिया आज अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये उच्च क्षमता वाला बाजार मॉरिशस की कंपनियों के लिए नई संभावनाएं प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र AFCFTA के ढांचे के भीतर।
2: आज 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। फ्रांस और मॉरिशस के बीच सदियों पुराना रिश्ता है, उस वक्त से जब टापू में फ्रांसीसी हुकूमत थी। मॉरिशस में आज गुजरे जमानों के बावजूद फ्रांसीसी प्रतीक और विरासतें जिंदा है। इन गहरे संबंधों के आधार पर हमारे देश और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ क्षेत्रों में साझेदारी है।

0: विदेश की खबरें। गजापति को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलेगा। यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसका ऐलान किया गया ताकि गजापति में पुनर्निर्माण कार्य किए जा सकें। 1 मिलियन वासी तंबुओं में रह रहे हैं क्योंकि इसराइल और हमास के बीच हुई लड़ाइयों में बहुत नुकसानात हुए हैं। ईरानी ताकतों ने अबनाए हुरमूज में यूएई के 2 टैंकरों को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात को हमले किए। ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में भी अमेरिकी सहूलतों पर हमले किए हैं। और अब फुटबॉल की बात। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज रात फ्रांस और स्पेन की टीमें मैदान में उतरेंगी। ठीक 11 बजे ये मैच प्रसारित किया जाएगा और कल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला होगा।
1: पिछले 2-3 सालों में ये दो टीमें 2 बार आमने सामने आई हैं और दोनों बार स्पेन की जीत हुई है। एक यूरो 2024 के सेमीफाइनल में, दूसरा 2025 के यूरोपियन नेशंस कप के सेमीफाइनल में। फ्रांस पासा पलटना चाहेगा। सेमीफाइनल में बदले की खुशबू मिल रही है, पर स्पेन के मैनेजर लुइस दे ला फुएंते सीना ठोंक कर कह रहा है कि फ्रांस को 2 बार लगातार हराने वाली टीम स्पेन ही है। ये एक चेतावनी है फ्रांस के लिए। मैदान में 2 अलग अलग खेल का अंदाज होगा। स्पेन गेंद को ज्यादा अपने साथ रखता है और उनकी ताकत चट्टान जैसा डिफेंस है। इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन रक्षा पंक्ति अब तक स्पेन के गोलकीपर पर केवल 1 गोल स्कोर किया गया है। 650 मिनट तक गोलकीपर उनई साइमन पर गोल नहीं बना है, ये एक रिकॉर्ड है। सामने है फ्रांस की धुआंधार जानलेवा अटैक, ऐसे खिलाड़ी जो किसी भी डिफेंस को चीर फाड़ सकते हैं। मोरक्को को आराम से हराकर इनमें आत्मविश्वास आया है। दिमागी खेल बहुत होगा दोनों मैनेजर के बीच। जिजे देशों खिलाड़ी और मैनेजर के रूप में वर्ल्ड चैंपियन बना है, ऐसे मौकों से वो गुजर चुका है। दे ला फुएंते बीच मैच में अपनी टीम को बदलना जानता है। आज दाव पे है न्यूयॉर्क का एक टिकट। मौका है फ्रांस को अपना बदला पूरा करने के लिए और 14 जुलाई के दिन स्पेन से लगातार हार से छुटकारा पाने के लिए। मैदान में स्पेन फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उस पर कोई तरस या रहम नहीं दिखाएगा। फ्रांस के जश्न पर पानी फिरने का काम कर सकता है।
0: और बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, पूर्व दक्षिण और पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों तथा हवाई ढलानों पर हल्की वर्षाएं होंगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगुनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगुनों में, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 20 से 22। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:46 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिव नागिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए थोड़ी देर में।
1: NBC Radio.TV.
0: कोंकाहोल केन्या में 70 साल के 70 years old श्री हरिदत्त बिसुनी जो राज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल दो बजे के बेटे हरीश बिसुनी के घर कोंकाहोल केन्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंकाहोल केन्या की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। कोंकावाल क्यूपिप में 86 साल की 86 years old श्रीमती सानवंती सिहरी पैदाइशी नाम रामधनी जो शांति के नाम से ज़्यादा

जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर कोंकावाल क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM आली डिजा कासिया बुवालूमी 60 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री गासेन नियासीमुलू जो बाओलैन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके घर आली डिजा कासिया बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM टैगोर रोड गोंगकोक में 70 साल के 17 ईयर्स ओल्ड माइनर जय आर्या गर्बू जो आयुष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल 11 बजे इनके पिता जगराज गर्बू के घर टैगोर रोड घोंगोप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंगोप की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM रॉयल रोड लावंचुआ में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जयमंती रामफल पैदायशी नाम चमन जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल एक बजे इनके बेटे विजन रामफल के घर रॉयल रोड लावंचुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM वन वे स्ट्रीट शिमेग्रोनी में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बिंता रंगासामी पैदाशी नाम तिहा जो सुरेखा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थे कल दो बजे इनके पति सादा रंगासामी के घर वन वे स्ट्रीट शिमेग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM एवेन्यू सिमोनेट कानोट में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री बलराम कुडनी जो ब्लोका के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थे कल 10 बजे इनके घर एवेन्यू सिमोनेट कानोट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोता सैंपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 15 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मों ब्लां शामुनी और आसपास के इलाकों में, और बुधवार 15 जुलाई को रियांबेल, सुरिनाम, मोसलमान, दनपत और सां ली सुआ मेर रियांबेल में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और बुधवार 15 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक शातू, बेनारस और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय आम जनता को सूचित करता है कि गुरुवार 16 जुलाई 2024 को दिन के 10 से शाम 4:30 बजे तक सर अनिरुद्ध जगन्नाथ हॉस्पिटल फ्लैक में सीबी द्वारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के चलते बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी।
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: नई सोच।
1: तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रोग्राम नई सोच। वादा किया था समाचारों के बाद लौट कर आएंगे, तो लेकर आए हैं हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम आपके लिए। मैं हूँ परी आपके साथ, और ये जो हमारा शो है एक ऐसा सफर जहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की, और उन छोटी छोटी बातों की जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देती है। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी खुशी, कभी चैलेंजेस, कभी सक्सेस और कभी फेलियर्स, लेकिन एक चीज जो हमेशा हमारे कंट्रोल में है वो है हमारी सोच। तो अगले कुछ मिनटों के लिए बस म्यूजिक नहीं बल्कि दिल से निकली कुछ बातें होंगी जो शायद आपके दिन को थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा बेहतर बना देगी। और साथ में कुछ ऐसे गाने लेकर आए हैं जो आपकी मुस्कुराहट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। लाइफ के चैलेंजेस को हम तो फेस करते ही रहते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन जिंदगी खूबसूरत जरूर होती है, और इसे खूबसूरत बनाना बिल्कुल आप ही के हाथों में है दोस्तों। तो चलिए, मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। अभी के लिए ये प्यारा सा गाना श्रेया घोषाल की आवाज डेडिकेट कर रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स के नाम। हैव अ वंडरफुल इवनिंग रेडियो मनोरंजन के साथ।

और वैसे तो दोस्तों जिंदगी में हमें कितना कुछ सीखना होता है और कभी नोटिस किया है कि सूरज हर रोज बिना फेल निकलता ही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल बारिश थी या आंधी आई थी, वो बस अपना काम करता है। वैसे ही हमें भी हर सुबह एक नया मौका मिलता है। कल अगर कुछ गलत हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो आपको उदास कर गया, कोई आपसे नाराज हो गया, कोई दिन आपका खराब गुजर गया, कोई प्लान शायद फेल हो गया, तो याद रखिए दैट एक दिन आपको फिर मिलने वाला है जो एक नई शुरुआत होगी। यानी कि हर एक दिन एक पॉजिटिव स्टार्ट लेकर आता है। कल जो भी हुआ उसे भुलाकर बस आगे बढ़ना है और आपका जो बेस्ट चैप्टर है वो आपको लिखना है। जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और अक्सर हम इन चीज़ों से भी थोड़े से उदास हो जाते हैं कि शायद सोशल मीडिया पर हम देखते हैं किसी ने एक नई गाड़ी खरीद ली, कोई नया घर खरीद रहा है और हम सोचते हैं कि हम तो बस जीवन की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। बस वो कहते हैं ना कि हर दिन अपने जो एंड्स हैं उन्हें मिलाने की एक जद्दोजहद में लगे रहते हैं और तभी हम सोचते हैं कि किसी की ज़िंदगी कितनी रंगीन है, कितनी ब्यूटीफुल है, जहाँ पर उनकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन दोस्तों वेकेशन, न्यू कार, प्रमोशंस, हैप्पी फैमिली, इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स और रियल जिंदगी यानी कि रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। कंपैरिजन जो है वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चुरा लेती है और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपकी ये खुद की रेस है और इसे आपको खुद ही दौड़ना है। और अगर आज आप कल से बेहतर है तो ये बात याद रखिए दैट यू आर ऑलरेडी विनिंग इन लाइफ। तो हमेशा अपनी जिंदगी को बस खुद से ही कंपेयर करें। जो भी जद्दोजहद आप कर रहे हैं, जो भी अचीवमेंट्स आपके हैं, वो आपके खुद के हैं और आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि जिंदगी आपको बहुत सारे मौके देती है और आप लाइफ में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। जिंदगी है दोस्तों हर रोज कुछ नया सिखाती है और कुछ गाने ऐसे लेकर आती है जो हमें मुस्कुराने की वजह देते हैं। चलिए सभी के लिए ये गाना हमारे सभी दोस्तों के नाम। जिंदगी की जद्दोजहद से अगर आप भी लड़ रहे हैं, ऐसे गाने आपको मोटिवेट करते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी को जीना है क्योंकि जिंदगी तो मिलती है बस एक बार।

और जी हाँ दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम नई सोच अभी के लिए शाम के 6:50 मैं हूँ फरी आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद का मतलब होता है चाहे सिचुएशंस कितनी भी मुश्किल, कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, हम हार नहीं मानेंगे। कहते हैं ना दोस्तों कि एक छोटा सा बीज भी ज़मीन के नीचे होता है और उसे पता होता है कि एक दिन वो मिट्टी को चीर कर बाहर निकलेगा और एक खूबसूरत पेड़ बनेगा। वैसा ही एक बीज हमारे अंदर भी होता है और वो होता है उम्मीद का बीज, और उसे बस हमें ज़िंदा रखना होता है। होप वो लाइट है, वो रोशनी है जो अंधेरे में भी चमकती है और सब कुछ हम पर ही डिपेंड करता है। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ के लाइफ में सब कुछ अच्छा ज़रूर होगा। आज मुश्किल दिन है तो कल अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्ट फेजेस आते ज़रूर हैं, कभी करियर, कभी रिलेशनशिप्स, कभी हेल्थ और कभी परिवार, कभी फैमिली। लेकिन याद रखिए कि बैड डेज ये सिर्फ एक चैप्टर है और आपकी पूरी कहानी नहीं। अगर आज सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा तो शायद ज़िंदगी आपके लिए कुछ बेहतर लिख रही हो। कभी कभी डिले भी ब्लेसिंग होता है, और कहते हैं ना कि तारों को चमकने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, तो इस अंधेरे को भी आप ब्लेसिंग की तरह ले सकते हैं और उम्मीद का दामन इसे आप कभी ना छोड़े। तो वेल दोस्तों, आप तो हमारा साथ देते हैं और हमेशा हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में कोशिश यही रहती है कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी जो स्माइल है, उसे हम बिल्कुल ऐसे ही बनाए रखें। कभी कभार होता है कि कोई इंसान हो जो हमें कह दे कि नॉट टू वरी, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभार आपका एक फ़ोन कॉल किसी को उम्मीद दे सकता है। कभी कभार किसी को लगता है कि लाइफ में अब कोई नहीं है, कोई नहीं है जो हमारा साथ दे सकता है, लेकिन शायद उनके ज़िंदगी में वो रोशनी, वो एक इंसान आप बन सकते हैं जो शायद उनके लिए एक उम्मीद हो। कभी कभी सिर्फ एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत होती है, कभी एक स्माइल और कभी आई एम देयर फॉर यू। आप शायद किसी की प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाएं, लेकिन आप किसी की होप यानी कि किसी की उम्मीद ज़रूर बन सकते हैं। बस अगर आप किसी को एक मैसेज भेज दीजिए दैट आई एम विथ यू, और अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमें कॉल कर देना, हम आपके साथ ज़रूर हैं। शायद इतनी सी बात भी किसी को एक उम्मीद दे सकती है। यू नेवर नो, सब कुछ इतना उलझा हुआ है आज की ज़िंदगी में, हर एक इंसान कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। और जैसे हम कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के लिए बुरा ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, और ऐसा ना हो कि कोई इंसान आपकी वजह से दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, या फिर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। ऑलवेज ट्राई टू बी दैट पर्सन जो हमेशा किसी को हंसने की, मुस्कुराने की वजह देता है। अभी के लिए तो हमारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बस आप ही हमारे मुस्कुराने की वजह है। और वेल, अभी के लिए इतनी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन एक और प्यारा सा गाना आपको सुनाएंगे। जैसे हम कहते हैं लाइफ में उम्मीद, होप का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो बस ऐसा ही कुछ ये गाना भी हमें सिखाता है। फ्रॉम द फिल्म बर्फी, श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गाना हमारे सभी दोस्तों के नाम। और चलिए दोस्तों, इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं हमारे अगले प्रोग्राम की ओर, जिसका नाम है दिलों की आवाज़। पॉजिटिव बातों के बाद इट्स टाइम कुछ रोमांटिक गाने आप तक पहुंचाएं, तो बस आप भी हमारा साथ दीजिए। मैं हूं परी आपके साथ, रात के 9 बजे तक साथ रहेगा आपका और मेरा ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। आपकी दिल की बातों को समझने की कोशिश करेंगे आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस के जरिए। नंबर तो आप जानते हैं, इट्स 5250-6200 5250-6200। मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक। चलिए अभी के लिए हमने बात की पॉजिटिविटी की, उम्मीद की, तो ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम, हमारे सभी दोस्तों के नाम, सभी लिसनर्स के नाम। एंजॉय दिस वन।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 7 बजे हैं।
6: You're listening to RM3 Radio Man.

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: तो चलिए दोस्तों, नई सोच के बाद वक्त आ चला है कि कुछ रोमांटिक गानों से आपकी इस शाम को हम सजाएं। मैं हूं परी आपके साथ और आज का ये ट्यूसडे खास बिकॉज आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है और मौका मिला कि हम कुछ प्यारे गाने आप तक पहुंचाएं। एक स्पेशल प्रोग्राम जहां पर हमने प्रीति जिंटा के बारे में बात की। नई सोच प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए कुछ पॉजिटिव कोट्स के साथ और नाउ इट्स टाइम कि कुछ रोमांटिक गानों के साथ आपका ये जो दिन है उसे हम कहते हैं ना कि एक अंजाम की तरफ आगे बढ़ाएं, जहां पर दिन भर की थकान को आप दूर कर सकते हैं इन

प्यारे प्यारे गानों के साथ तो ऐसे गाने जो आपके दिल को लुभाने वाले हैं जो आपको स्पेशल फील करवाने वाले हैं तो बस आप भी हमारा साथ दीजिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन और कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम जरूर चलाएंगे अभी के लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें फ्रॉम द फिल्म एक रिश्ता आप सभी के नाम

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: और जी हाँ दोस्तों, शाम का टाइम जहाँ पर आप हमारे म्यूजिकल हमसफर बने हैं, सो आपका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं गानों को आप पसंद कर रहे हैं। अभी सुदेवी जी बाकवा से साथ दे रही हैं आप। विशिंग गुड इवनिंग सभी लिसनर्स को, और प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हैं, डेडिकेट कर रही हैं गाना ट्रियोले की दीदी ललिता और कुशाल परिवार के नाम आत्माराम भैया, दीदी सुनीता है, शोभा देवना मालिंगा के अनुषा किरण और सभी राम रतन परिवार के लिए। और एक प्यारा सा गाना आप डेडिकेट करना चाहती हैं सभी के नाम और कहती हैं हैव अ वंडरफुल टाइम, हैव वंडरफुल नाइट। साथ देने के लिए शुक्रिया सो मच सुदेवी जी, और धन्यवाद इस स्वीट मैसेज के लिए। यहाँ पर गिलीश हलोल जी हमारा साथ दे रहे हैं आप, और अगला गाना इसे हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, सेंडिंग गुड विशेज। और ऐसे ही आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुँचा सकते हैं। नंबर वही है 5250-6200, जहाँ पर मैं परी कर रही हूँ आपका इंतज़ार। और चलिए इस शाम को और भी हसीन और भी खूबसूरत बनाने के लिए वी हैव दिस ब्यूटिफुल ट्रैक। कहा ना दोस्तों, कुछ ऐसे गाने हैं जो आपकी थकान को दूर करने वाले हैं, कुछ ऐसे गाने जो आपको थोड़ा सा लाइट फील करवाएंगे, कुछ गाने ऐसे जो आपके मूड को सेट करेंगे, और कुछ गाने ऐसे जो शायद कुछ यादों को ताज़ा करेंगे। सुफना सपना मुखर्जी और कुमार सानू की आवाज़ें, ये प्यारा सा गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम लेकर आए हैं प्रोग्राम दिलों की आवाज़। चलिए साथ देने के लिए शुक्रिया। एन्जॉय दिस वन।

0: RL3 Radio. Radio. Radio.
1: और जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि हर एक गाना खास और हर एक गाना स्पेशल होता है. For now we have this beautiful track और ये है सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ ही. एक गाना ऐसा जो बहुत सी यादें ताज़ा करता है from the film दिल ने फिर याद किया. टाइटल ट्रैक लेकर आए हैं आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. तो चलिए ऐसे ही कुछ प्यारे गानों से आपकी इस शाम को हम सजाएंगे. और अगर आप भी हमारे म्यूजिकल हमसफर बने हैं तो आपके मैसेजेस डेडिकेशंस तो यहाँ पर हम पहुँचा रहे हैं आपके अपनों तक. थैंक यू सो मच इतने प्यार से रेडियो मनोरंजन को चुनने के लिए, हमारे साथ गानों को गुनगुनाने के लिए और आपकी इस शाम को स्पेशल बनाने. वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. एंजॉय दिस वन.

0: दिलों की आवाज़।
1: तो चलिए दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और शाम से अब रात की तरफ हमारा ये म्यूजिकल कारवां आगे बढ़ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं इन गानों के साथ आप भी थोड़ा सा एंटरटेन हो रहे हैं और गानों को पसंद कर रहे हैं। चलिए आपके कुछ मैसेजेस, डेडिकेशंस। अनीता जी फ्रिकन फ्लैग से हमारा साथ दे रही हैं आप और कहती हैं स्वीट स्वीट गाने हमेशा की तरह, और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना अपनी बहनों के नाम शोभा, अनुराधा, लक्ष्मी और रेडियो मनोरंजन के सभी लिसनर्स के नाम। सो थैंक यू सो मच अनीता जी, इतने प्यार से ये मैसेजेस आपने हम तक पहुंचाए। सभी के लिए जो अगला गाना है आपकी लवली सिस्टर्स के नाम, और साथ ही यहाँ पर जो अगला गाना है कहते हैं दैट आज का दिन है खास, और ऐसे में एक स्वीट सा डेडिकेशन और टाइटल ट्रैक आप डेडिकेट करना चाहते हैं। वेल, उम्मीद करते हैं दैट कोशिश करते हैं दैट इस गाने को हम आपके लिए चला पाएं, और ये होगा फॉर हस्बैंड अमजद जो इस वक्त नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, और आयशा उनकी

के लिए स्वीट सा डेडिकेशन कर रही हैं. सो वेल ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग अप आप दोनों के नाम. एंड यहाँ पर एक प्यारा सा गाना रेहाना जी फिनिक्स से हमारा साथ दे रही हैं. सो आपको भी हम बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ, गानों के साथ. आपका यहाँ पर जो साथ है वो बना हुआ है. एंड नॉट टू फॉरगेट, मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 बजे तक लेकर आई हूँ ये प्यारा सा प्रोग्राम दिलों की आवाज़. शामिल होता हुआ ये गाना, एंजॉय दिस वन.

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: एंड वेल दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट गाना जरूर होता है, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो लगता है कि बस इन गानों को सुनते जाएं, और कुछ गानों के साथ लगता है कि ओहो, लगता है कुछ यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं, यानी कि एवरी सॉन्ग इज स्पेशल एंड ना जाने कौन सा गाना सीधा आपके दिल तक पहुँच जाए. सो उम्मीद करते हैं ये गाना आप पसंद करेंगे. एंड एवरी वन हुज़ कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ, बस ऐसे ही कुछ प्यारे गानों के साथ आपकी इस रात को हम सजा रहे हैं. Music is magic and music is a therapy. और बस इस थेरेपी को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं. सुजाता गोस्वामी एंड कुमार सानू की आवाज़, एक ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम. साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स फ्रॉम द फिल्म फूल और अंगार. एंजॉय दिस वन.

एंड वेल मोहब्बत में हाल तो कुछ ऐसा ही होता है जिससे मोहब्बत करते हैं अगर उनका दीदार ना हो तो ज़िंदगी थोड़ी सी दुश्वार लगने लगती है लेकिन हम तो कहते हैं कि इश्क तो बहुत ही स्वीट सी फीलिंग होती है कभी हंसाता है कभी रुलाता है लेकिन इश्क होता बड़ा प्यारा है अभी के लिए हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आपके लिए मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 बजे तक

और चलिए दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम कि मैं आपसे लूं अलविदा. इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. लेकिन वादा रहा कि आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द. आपका साथ निभाने आएंगे जल्द ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. तब तक के लिए बस साथ देते रहिए और ऐसे गानों को सुनते रहें. विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग इट्स टाइम कि हम आपको छोड़े जाएं कुछ और प्यारे गीतों के साथ. थोड़ी ही देर में भोजपुरी प्रोग्राम सुन पाएंगे आप RJ प्रताप के साथ. तब तक के लिए दीजिए साथ ऑन रेडियो मनोरंजन. हैव अ वंडरफुल नाइट. टेक केयर. कीप स्माइलिंग and stay safe.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6 East West 98.2.
3: You are listening your RM 3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: Continuous music.
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमक धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
4: सब संगत चालों की ओर से प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और साथ में

हमने की प्रसारण चलाता रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी सब श्रोता लोग हमने स्वागत करा थे जहाँ सब भाई बहन लोग के स्वागत बा। और रात के 9:02 अभी से लेके रात के 11 बजे तो लोग पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का मन करता को भी भोजपुरी गीत सुन के नंबर वो घुमैया का जगह देव जगह विचैक या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर SMS करिए और अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत सुनिया जा। ये भैल का गाना जोड़ी छोकरी से प्यार कर रहा कुणाल ही लाल रोशन भाई है तोहर खातिर लिंस मोहयाल कांडा से हमने सुना तो सुबेन भाई देवरानी सोनु है गीत हो नाम संगीता सुकारी कृष्णे रेशमा और माला नायकन है गीत हो नाम प्रतिमा दुखित राम शामिला रोशनी केडू सदना जगदयाल सबीना मेघना आयन शिका मिस्टर मायू दया इंद्रा क्लेहामा उबियम के साथ देवन पाकिचो बिंदास राकेश रीना दुखी नताशा ये सब संगतिया लोग हमने के संग जुआ हुआ जा। और अशोक भाई भी हमने के साथ बा याद प्रिंस एंजल हेलो नमस्ते सुस्वागतम। तो जितना कोई हमने के रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर सुना था जितना कोई हमने के टिकटॉक पेज पर दिखा था है गीत और नाम जोड़ी छोकरी से प्यार करी जा।

और हमने के चना हमेशा अपन ने कहलो कि हमेशा बतलाए के घर के काम काज करेंगे ऊ चाहे छोकरा हो या छोकरी हो दोनों के चना जाने के घर के काम कैसे करेंगे कहे कि एक दिन जब हम नहीं रहा सर तो हम के लड़का लोग सकी देबू ये करे हों कि नहीं और लड़का लोग के चेहरा बताए कि कैसे बर्तन धोए के लुगा धोए के घर बहारे के अपन लसाम सफा करे के हर काम से ना बताए कि कहे कि काल के जब तुहर लड़का बड़ा हुई तो ऐदे पौधा हो जब जाए दूसर देश में पढ़ाई करे तो बेशक ऊ सकी अपन गोर पर खड़ा हो हाँ कि नहीं तो हमने माँ बाप के देव लड़का लोग के बताए कि कैसे घर के काम काज करके घर के काम काज करके शर्म नहीं बाए सब कोई के चेहरा जेंडर बेस काम नहीं है सब कोई सकी घर के काम सीखे अगला गीत कच्चू भाजी पानी कविता गीत वगैरह हवन और है गीत हमें चलावत है सर फरीजा महादू के नाम हेलो फरीजा वाह धै गीत हो खातिर क्रिश्चानो है गीत तोहर नाम और फिर यही गाना चलाव सर रीता खातिर केशव है गीत तोहरो नाम दिनेश मातो वीरेन कुमारी है गीत तोहरो नाम कल्याणी लुदात राजेंद्र नाथ बा नर्मदा गीता है गीत तोहर सब लड़का लोग के नाम योवाश योनीश याश्विनी नानी गीता हवन थोले से शिवा है गीत तोहरो खातिर लक्ष्मी चिन्ह है गीत तोहरो नाम और वंशिका भोला है गीत तोहर खातिर साथ में अरविना गुलाब देवी जेष्णा सतीश गुड़िया पद्मिनी कौदन माला ललिता गिरिधर नूश मिमी नदानी जगरू बहुत प्यार से हमने देखा तुम बहुत बहुत धन्यवाद फिर इब्राहिम साहब हवन रेहाना हसनानी फिनिक्स हवन है गीत तोहरो नाम कच्चू भाजी पानी चल एक साथ सुने गीतवा

और बेशक हम मित्रों के साथ होते हैं रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर रात के 11 बजे रे संगतिया लोग आगे जब बीफे आवे तो सब कोई बीफे के रात का तान कतहल कब एमबीसी टीवी पर फिल्म आए और हिंदुस्तानी फिल्म चलत हर खाली जेजी के रात के बहुत साल पहले बोलते हैं ये हो गले गोविंद से कहो तो जब पहल का टीवी रहा एमबीसी टीवी तो जेजी के रात के फिल्म दिखाते रही सर रात 11 बजे एफोमाशों के बाद तो सब कोई बैठ के एक साथ फिल्म दिखाते रही सर माता जी लोग पिस्ता बुई करे मकई बुई करे और सब कोई बैठ के फिल्म देखा तरी से और बचा तरी से आजकल तो सब कुछ टेक्नोलॉजी से बदल गए बा आजकल सब कोई अपन पोता में फिल्म देखेला हाँ कि नहीं तो समय के साथ सब कुछ बदलेला पर एक चीज़ नहीं बदल बा हमने अब तो लोग की दोस्ती हमने अब तो लोग के प्यार ऐसे में सुनम जा अगला गाना अच्छा लगे रहा बड़ा मजा लगे रहा गीत गैले हवन सुरेश किस्तो और गीत चलाओ जा अनिता पर टॉप खतीर बहुत बहुत प्यार के साथ रोशनी वाला ही दो है गीत और नाम अंजू और दानी जगरू गुडलैंड से और मामजल जान से भी और आती शम के साथ होते इंदिरा नंकू है गीत और नाम दया जी नमस्ते और यशना राम प्रसन्न अनिता लाल जी नमस्ते है गीत और नाम और है गीत चलाओ अब जा अंजल प्रमिला पूर्वी और अयाज मसीह है गीतोरो नाम संजय शिवजन है गीतोरो खातिर और नकुल है गीतोरो नाम फजाना सुमल हेमा हेमा हेमा कनाय नमस्ते सब कनाय परिवार यूनियन पार्क से है गीतोरो नाम युधिष सिहुदा है गीतोरो नाम चल एक साथ सुने गीतवा

अच्छा लगेगा, मजा लगेगा। हाँ अपन घर में रह के अच्छा लगेगा। कितना दिन सास के घर में रह, बोले तो अपन घर तो अपने घर रह रहा। हम नहीं बोलते सास के नहीं जाएगी, चाहे ना चाहे घूमे जाएगी, पर अपन घर तो अपने घर रह रहा। संग चलो अब हम तोरा बोलब जा कि अनार के कौन महत्व। अनार ए पोम पोमेग्रेनेट देखे बोला रहा सर। और अनार एगो अत्यंत पौष्टिक फल है। एक में विटामिन सी बा, विटामिन का बा, फोलेट बा, पोटाशियम बा, फाइबर बा और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बा। इस शरीर के जो है इम्यून सिस्टम के हौफोसे करेला और अनार खैबत ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावेला। और जो विटामिन सी है ये थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम से बचे ले रही। हृदय के लाभदायक है जिन व्यक्ति लोग के हार्ट डिजीज रहेला। अगर तू अनार खैबत वो अच्छा स्वास्थ्य खातिर डाइजेशन में तोहरा मदद करेला, पाचन में सहायक और खून हमकी खून पतला करेला। तो बेशक मौका मिली जेब बाजार तो अनार जरूर खरीद। हमें की त्वचा हमें की जन स्किन है हमें की लापो है ओकर खातिर भी बहुत अच्छा है और मस्तिष्क के स्वास्थ्य खातिर भी बहुत उपयोगी है अनार। अब अनार कैसे खाया जाला? अनार सकब स्नो खाए ऐसे बिया बिया रहेला लाल लाल टके तो सकब खाए, बिना चीनी के सकब खाए गजा मीठा रहेला और अनार स्वादिष्ट रहेला। और साथ साथ हमने के जो है शरीर के स्वस्थ रखेला। ठीक बा तो संगतिया लोग अनार जरूर खाइया जा और अगर एगो बाजार में नहीं मिले तो दूसरे बाजार में खोजिया जा। अगला गीत चली अनपर न रहिया बिस्वानी जी पा गीतवा गए वन है गीत हमने चलावत है हेमा जी के नाम रोहन बटू और दीना गनवा है गीत हो खातिर ललिता पुनीत हमने के साथ देवत वन दानुष सिंह पूर्वी है गीत हो नाम युधिश शिवदागी है गीत तोहर खातिर भी और है गीत हमने चलावत है इस विजय गुप्ता खातिर और लीना स्वरूप खातिर है गीत चली साइलेंट के से कर्मा रीता और उकर पत्नी रानी बेटी परी और उकर बेस्ट फ्रेंड हिरीश नारायण के नाम है गीत चलाव से हिरीश नारायण रहेलन मिडलैंड्स। और इबकत हम जिक्र से ढेर माना जगह में पानी करता पानी पानी बरसता तो जितना कोई अभी है पानी के मौसम में ड्राइव करते हुए तो धीरे धीरे गाड़ी चल रही है और हमें किस साथ देते रहिए। रोशन देवी है गीत तो नाम अन पर ना रही है चले एक साथ सुनम जागी तो

गुरु जी के पास जाके आ कर जा देखे हर प्रोग्राम हर गीत मांगे थे नो पर्सनल क्वेश्चन ऑन टिकटॉक पेज गीत मांगा अभी ने पूछा कि कंची करा था हुआ कि प्रोफेसर की कोची ये सब नहीं प्रोग्राम में गीत मांगे के गीत मांगे जा प्लीज प्रोग्राम में भोजपुरी तरका और अब हमने थोड़ा सुनाब जाए को कहानी बहू और सास के कहानी एक गांव में शांति देवी नाम के एगो सास रहल और उकर बहू के नाम रहल नेहा दोनों अच्छी तरह से जियत रहन से पर कभो कभो छोटा छोटा बात में नोक झोंक हो जाता हल और कभी कभो वातावरण टेंस हो जाता है कहे कि सास बहू में कभो कभो नोक झोंक हो जाता हल तो एक दिन बहू बहुत दुखी होकर गांव के एगो बुजुर्ग ज्ञानी के पास गल और जाके बोलक बाबा हम के हमार सास सुन छोटा छोटा बात में कभो कभो हम के नीचा दिखावे ला हम कौन सी करब तो बाबा मुस्कुरा के बोलक हम थोड़ा एगो उपाय बताओ हर फजीर रोज फजीर के अपन सास से मुस्कुरा के बात करिया ओकर हाथ बटैया और ओकर सेवा करिया और ओकर सही प्रशंसा करिया देखिए थोड़ा सास थोड़ा बड़ी खुशी रही तो नेहा वैसे ही करलक और सास के मदद करे सब काम में ओकर सम्मान करे और बेशक ओकर मनपसंद खाना बनाए धीरे धीरे घर में वातावरण जुन है बदलल और सास बहू में प्यार और बढ़ गल एक महीना बाद नेहा पी से बाबा लग गल और बाबा से बोलक बाबा अब हमके कोनो उपाय नहीं छेला हमार सास हमके बहुत चाहेला हमने दोनों जना में बहुत प्यार बाब हम तनको झगड़ा नहीं करी ना सर तब बाबा मुस्कुरा के बोलक बेटी सबसे बड़ा दवा है प्रेम धैर्य और सम्मान जब हमने अपनापन दिखावेला सर और

एक दूसरे के सम्मान करी जा सकता सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जा रहा। तो कहानी के जो मुगाल है शिक्षा है कि घर में खुशी प्रेम और सम्मान धैर्य चुनहा आवेरा तो हमने के जीवन सवारे रहा। जब एक हम के जब एक परिवार में हर एक सदस्य अब हर एक सदस्य के मान सम्मान करी प्रशंसा करी और सेवा करी तो घर में घर परिवार में हमेशा सुख शांति रहेगा। तो ऐसे में बर्फ जागला गीत की ओर मजा कर ले मेरी जान फिर से ना होगा जवान है गीत यश ना राम प्रसन्न खाजी चाव सर स्वीटी है गीत हो रो नाम यश साहब तो नाम यश ना राम प्रसन्न और सायरा दाहू है गीत और खातिर अब्दुल और सायरा बानु खातिर यश और होलर है ये गीत तोहर खातिर और है ये गीत हमने चलाओ स्वीटी के नाम सब रामप्रसन्न परिवार के लिए और जो नहलन गोंगोब वीरेन साहब अवंजा संजय बिहारी हमके साथ हो थोन हाय संजय ये गीत और खातिर और सब बिहारी परिवार के नाम चले साथ सुने मजा कर ले मेरी जान फिर से न होगा जवान।

0: दिया।
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: Continuous music. RM3.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: RM3 रेडियो। रेडियो
2: संगत चलो आज की दुनिया में किकर पर सकल जरा भरोसा करे किकर पर नहीं ई थोड़ा बोले के मुश्किल बा कहे कि जिकर पर सबसे ज्यादा भरोसा करबा कबो उही तोहर विश्वास तोड़ देवेला त हम तो बोला कोई पर भरोसा नहीं करिया केवल अपन गोर हाथ पर भरोसा करिया पर माँ बाप पर भरोसा करिया कहे कि भरोसा जब टूटेला तो नहीं अच्छा बा हो कि नहीं तो दुनिया जिसे जाता है तो सेकंड पुली जिसे जीएल एंड सब पर्सनल कोई पर नहीं सब भरोसा करे अभी जहाँ चला भाई दुनिया ये दुनिया ही इसे भाई क्रिक कलयुग बोला सा कि नहीं और अगला गीत कहाँ जाइबे अशोक कुमार भवानी गीतवा गए वन और है गीतवा हमने चलाओ थे साफेज खातिर आफेज वन सैम के ऐसे अनिता लाल जी मोदाल बे ऐसे बहुत बहुत प्यार के साथ और अनिता अफ्रीका फ्लाग से हवन जा हई गीत और खाती इंदिरा लावतन हवन दक्षिण में और शोभा वाकवा प्रेमीरा काटो बोन में हवन जा और राज मन्ना जी बहुत प्यार से उनकी सेवन लॉन्ग सिबुग राजा स्टीव माना और प्रवीण भैरव श्याम मंगल सुदेश जसवा कर्मा राजकुमारी और सब सब परिवार के नाम और जिमी दुखिया सवन दुखिया भी हमें साथ देवत हवन हेलो और निशान सिंह चुबा हवन लिस्का जी से गीत और थाबुचिक से गीत और सब परिवार के नाम उमा जगनायक रू है यू गीत और खातिर खास हम खास साथ में है गीत चलावते इस प्रतिमा दीना मिस्टर सौजू मिस्टर गंगू धर्म फिर वीरापेन अपाया रुसाई रुसाल खातिर और जितना हमने के संगत्या लोग हमने की सुनते अभी रात के समय है गीत लोग के नाम चाचा आत्माराम हवन चाची प्रभावती लोल और चाची ललिता कुशल त्रियोले से सबका कटिया परिवार जिराखंड परिवार महाराणा प्रताप रेन त्रियोले तो विश्व के हर को परिवार खातिर बे गीत चली कहाँ जाइबे चले एक साथ है गीत सुने

तोरा कोई को तोहफा दे तो तोहफा जरूर स्वीकार कर लिया। उन्हें ही बोलिया कि काजोवा छोटा भाई या बड़ा भा सता भा या महंगा भा कहे कि जब कोई कोई की कादू देवेला तो अपन पूरा भावना के साथ सोचों के साथ इमोशनों के साथ कादू देवेला तो कोई के तोहफा के अपमान ना करिया। चाहे कोई भी हो संगतिया हो परिवार हो जब तोहर जन्मदिन बा या कोनो खास मौका बा कोई कादू दे तो बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद और ना कि बोलिए हैं हाँ कादू दे रहे हुए कोई के अपमान नहीं करे के हैं कोई कादू दी था नहीं जनबा के का रूप में भगवान तो हर सामने चला बा हाँ कि नहीं। रात के 9:53 अगला गीत 20 बरिस के छोकरा और एक गीत हमने चलाओ अब सा वाकवा के भाई आबू के नाम कैसे भाई आबू अच्छा हुआ ना गीत और कहते तो घर ओरी तोहर लेकर सब आबू परिवार के नाम लाखोजा के संगीता मिरन गीत तोहर कहते राफिक मोहित भाई हवन तयाग से मेजबीन पोटवी से इब्राहिम पोटवी से कमला जी न्यू मोहताबाद से गीत आरोही खातिर रीता की ओर से गीत चरियो बहन रेणुका और अमृता खातिर चित्रा और ज्ञान विश्राम हवन मोदलबे से बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत दिलों के नाम चरावती से 20 बरिस के छोकरा

20 बरिस के छोकरा शादी मांगेला काम नहीं करेला खाली शराब पिएला तो 20 बरिस के छोकरा कहाँ दिखलक बा दुनिया में भय खोजता शादी करे के है जेंचनो के का बोल बा तो शादी करे के एगो उम्र है लगो माचो इतने हो प्रौढ़ता है तोहर में तब शादी करिया अब तोहर काम धाम नहीं बा तो के थोड़ा अपन बेची दे बोला था हाँ कोई अपन बेची नहीं दे एगो छोकरा के चाहे पढ़ा लिखा रहे के ओके छेना अपने को काम करे के ओकर घर रह के तब अपना छोकरी में शादी करे के अब 20 बरस के छोकरा जब शादी मांगा था तब कोई शादी अपन बेटी के नहीं दे तू सोचेला कब कब कि दुनिया में सब कोई तोहर से प्यार करे तोहरा खुशी रहेला ना ऐसा बात नहीं बा कोनो कोनो व्यक्ति तोहरा चाहेला पर कोनो कोनो व्यक्ति तोहरा नफरत भी करेला जरा संभल के रहिए जा ढेर कोई तोहरा सकेला जालू भी करे कहे कि तू काम करे तोहर परिवार अच्छी तरह से जाता तो जोन व्यक्ति थोड़ा जालू करेला ये सब टॉक्सिक पीपल से हमेशा दूर रहिए जा और बेशक अगला गीत नरम नरम प्रवेश सहाय रम हराम तो गए वन है कि तो हमने चलाओते शिवांश का तीर फरजाना रघुसरी का देवी जो ओतवार रोशनी केदू अमृता आवता तेज सुनातन श्रीना विदिशा शर्मिला सुनीता दिनेश रौधे शमिला कृष्णी इंद्राणी निष्ठा प्रसन्न पोल मॉविन और धनवंती कुंज विश्वराज है गीत राजीव बुधा के नाम व्यास बामा मिस्टर बलराम अनिष्टु रीना पुपू मानिन पांड्या और है गीत चलावसा वी अनिश और इस सब संगतिया के नाम हेमा जावरी है गीत थोड़ो खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ दान लक्ष्मी प्रीति आशा सिबेना अमृता अमृत गति रितु रितु रिया रोबर्ट गे थोरो खातिर अहमद सफिक नीता सुकुना माफ करिए और अहमद सफिक है गे तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ ईश्वरी किस्तु देवीन बीन साधे होतवन ईश्वर सुबन हवन है गे थोरो खातिर तोर बेटा पतो बेटी दामाद जोन भारवन विदेश में साथ में तोहर पत्नी युधिष से उधारी है गीत और खातिर ग्रेस एंड लेस है गीत और नाम और समीरा है गीत और खातिर नरम नरम चलेक साथ सुने गीत वाकी

0: RM3 Radio.
1: कमर, धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: रात के 10:23 हुआ था तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े रहो। रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज़, रेडियो मनोरंजन 94.95 और 98.2 MHz पर हमने की प्रसारण चला था लाइव MBC मौका से। और बहुत बहुत धन्यवाद हमने के साथ देखा तेरा बेशक। और टेलीफोन करके नंबर रखा 0818085। बोला सा कि अपन दिल की बात सब कोई के नहीं सक बताई है, जगह पर भरोसा कर बात जगह तू चाहेला जगह तू मानेला तो कर से अपन दिल की बात बताया कहे कि अपन दिल की बात सब कोई से नहीं बोल चला जो तोहर क्लोज बात और अपन बात और से जरूर बढ़िया अपन दिल की बात। और अगला गीत पैसा के पीछे न भाग हो चंदा देव जी बोधन गीत हमने चलावते इस कनाडा में दीपा तिवारी दुखित का तेरे कर पति केविन कर बेटा और सब दुखित परिवार के नाम अजय और पूनम चिंताराम हो ऑस्ट्रेलिया में गीत और खातिर इंदिरा चिंताराम मॉरिशस में माता जी गीत और खातिर चंदन बेटा बेटा चंदन बहुप्रिया सलोनी और सब परिवार के नाम रंभा हवन स्विट्जरलैंड में और जानकी परिवार जो नौकर गुडलैंड में होंजा वो लोग खातिर बस के प्रीतम राज मिला के नाम अगला गीत उदय धनी राम थोर सब परिवार खातिर अश्विन बच्चन सब बच्चन परिवार के नाम और अभिलक जी हाँ अभिलक साहब हमने के साथ देवत हन बहुत बहुत धन्यवाद गीत थोरो नाम। और जितना कोई नींद नहीं लगता गीत तो लोग खातिर और जितना कोई पैसा खुशी देख कोई खुशी अलग पति बने के करोड़पति बने के मिलियनेयर बने के तहत गीत तो लोग के नाम पैसा के पीछे न भागो चंद्रदेव जी बोधन के

संगे जानो के कहावत बा मुंह में राम बगल में छुरी त जन व्यक्ति ढेर चिकनावेला ओकर चिकनाए पर नहीं जइया काहे के ओकर दिल में कौन सी बात नहीं सके रा जाने त ढेर कोई भाई से मुंह के सामने बोलन से ए ता तू कितना निमन आदमी हव ऐसा ना छाड़े से बात करके पर तोर पीठ के पीछे उ छुरी भौंकता त ऐसा व्यक्ति से जान दूर रह के जन मुंह में राम बगल में छोरी लेके घूमेला रात के 10 बज का था होता बहुत बहुत धन्यवाद उनके साथ देख खातिर का जगह देवी जगह विचैंक का जगह देवी जगह विचैंक पर सब बजे टेलीफोन करे मिडलैंड्स के सिमलाम के साथ देवतवन बहुत बहुत धन्यवाद हमने के साथ देख खातिर और व्रतवन प्रताप जी प्रोग्राम एकदम बढ़िया बा अगला गीत सुंदर परी हार गिरीश रूपचंद गीत सुंदर परी चली और गीत सब नाचिश में जितना कोई काम करा था अभी होटल में मेट्रो सर्विसेज में पुलिस स्टेशन में क्लिनिक में अस्पताल में जहाँ कहीं भी काम होता रात के समय गीत तो लोग नाम सुंदर परी साथ में शास्त्री बनुमारी हवन और कर सब परिवार कर जितना पास से लोग अभी वन में जाता कहूँ या वन में कहूँ से आवत हो तो गीत तो लोग नाम सुंदर परी चल एक साथ सुनेंगी जो

तुरेरे तुरेरे दिल को मेरा तुरेरे रात के 10:50 हुआ था दूसरा तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन भोजपुरी दर का प्रोग्राम रात के 11 बजे रे और बोली जा सकी हमने के देश सुन बड़िए जोड़ी बा बड़िए सुंदर बा और हमने के देश के देखे खातिर विदेश से पर्यटक लोग आवेरा द सन सैन एंड सी जी हाँ ये सब देखे खातिर मॉरिशस आवेलन सर और हमने के देश के मॉक ट्वेन बोले रहल कि मॉरिशस इज ए पैराडाइज अच्छे के हमने के देश बड़िए जोड़ी बा हमने के टापू हमने के समुद्र तट हमने के हरियाली हमने के बहुजातीय देश हमने जन भाषा बोला सा और हमने के जन भाषा की जोड़ी भाषा साथ में भोजपुरी और हर भाषा बोला सा हिंदी भोजपुरी तमिल तेलुगु मराठी सब कहते भाषा बोला सा यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी और इतना जोड़ी बाई देश के क्या बोल भैया जे भी आवेला बोला ए ऊ पेला भी है जोड़ी जो मोरी सेक्स खास जोड़ी सच है कि हमने के देश बड़ी जोड़ी बा हमने के देश खाई नहीं हम जो जोड़ी छ कि नहीं है और हमने के जोड़ी देश जो है इसे ही प्रगति करती रही आगे बढ़ती रही संजय हरिचंद के गीत हमें चाहते ललिता जी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और गीत वीना के नाम वीना के उसे दुगो बेटा और सब परिवार के नाम है गीत चलाओ से मिन मिनी के नाम मिन मिनी रहेलन वाकवा डॉक्टर अंजु गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत चली नलिनी के नाम हाय नलिनी है गीत और खातिर तो सब परिवार के नाम और है गीत उस सब संगत आलो खातिर जो कोशिश तो करा था पर लाइन नाम ही रहता है गीत और नाम मोरिसवा बड़िए जोरीबा

संगत चरोग रंभा राम तोहर के गावल की शहर से आवे इगो बुरवा हई गीतवा के संगी भोजपीटर का प्रोग्राम ये पर ही समाप्त होता रात के 9 बजे से अभी हम के साथ दिलाचार रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर साथ में रेडियो मॉरिशस की टिकटॉक पेज पर हमने की देख रहा बहुत बहुत धन्यवाद जितना कोई प्रोग्राम देख लग जितना कोई प्रोग्राम सुन लग सबको की धन्यवाद तो लोग एस एम एस और फोन कॉल्स खातिर भी शुक्रिया रात के 11 बजे सुन बजा सुन रेपल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से कल फजीर के 6 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तरानी सुन बजा हमें की तरह की मुलाकात है कल बुधवार के रात के इसी तरह रात के 9 से 11 बजे ले भोजभरी तड़का प्रोग्राम में और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत दें और जी प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल नमस्ते

समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोड़ प्रणाम। इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं। सुनहरे पल कार्यक्रम एक बार फिर लौट चले हैं उसी युग में, उसी दुनिया में जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं, द 50s। खास तौर से इतने सारे गायक रहे हैं जैसे कि गीता दत्त, शमशाद बेगम, रफ़ी साहब, मुकेश, लता जी तो थी ही, आशा भोसले, पर ऐसे ऐसे और भी गायक गायिकाएं रही हैं। चले उनकी दुनिया में आज सैर कराते हैं।

1950s का दौर बॉलीवुड संगीत का सुनहरा युग माना जाता है। ये वो समय था जब गाने सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं थे, बल्कि दिल की गहराइयों को छू

जाने वाले एहसास हुआ करते थे। इस युग ने हमें दिए कुछ ऐसे अमर गायक और गायिकाएं जिनके सुरों ने पूरी फिल्मी दुनिया का दौर बदल दिया। नाम आता है गीता दत्त। अपनी मधुर, सुलझी और जज्बात से भरी आवाज के लिए मशहूर। उनके गाने जैसे बाबूजी धीरे चलना या फिर मेरा नाम चिंचिंचू, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, इनमें उन्होंने अपनी आवाज से एक नया रंग भर दिया। उनकी आवाज में नाजुक सी उदासी और खुशबू भरी मस्ती दोनों थी।

बेगम क्या आवाज थी उनका अंदाज बिल्कुल अलग था उनकी आवाज में एक देसी मिट्टी की खुशबू थी कभी यार कभी पार सैया दिल में आना रे या फिर लेके पहला पहला प्यार जैसे गाने उनके दम पे अमर हो गए शमशाद बेगम ने फिल्मी संगीत को एक पहचान दी जिसमें आवाज की ताकत और साफ रंग दिखाई देता था

1950s का दौर क्या दौर था इतने अच्छे-अच्छे गाने संगीतकार तो जबरदस्त थे ही लेकिन जो गायक भी रहे जैसे कि तलत महमूद उनका जिक्र आए बिना 50s का संगीत अधूरा है उनकी आवाज जैसे रेशम की तरह नर्म और उनका अंदाज पूरी शराफत और जज्बात से भरा हुआ था जलते हैं जिसके लिए ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जैसे गीत उनके दिल के सुकून और दर्द दोनों का इजहार करते थे और उनके गाने दिल के लम्हों से बातें करते थे

शामिल है आज के इस लिस्ट में एक प्यारी सी लेकिन दमदार आवाज सुरैया, जो एक कमाल की एक्ट्रेस भी थी। उन्होंने अपनी आवाज से भी लोगों के दिल जीते। उनके गीत जैसे तेरे नैनों ने चोरी किया और मन मोर हुआ मतवाला वगैरह वगैरह आज भी सुनने वालों के दिल में एक नशा जगाते हैं। सुरैया के सुर मीठे दर्द और कोमलता दोनों लेकर आते थे।

इनका जिक्र किए बिना तो हम रह भी नहीं पाते मुकेश जी, चाहे वो 60s हो, लेट 40s, 70s, एक दो 80s के गाने भी रहे। मुकेश लता के भाई जैसे रिश्ता ऑडियंस के दिल से बन गया था। उनकी आवाज एक आम इंसान के जज्बात की आवाज थी, साफ, मासूम और दर्द भरी। आवारा हूं कभी कभी मेरे दिल में, या फिर कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जैसे गीत उन्हें अमर बनाते हैं। मुकेश के गीत इंसानियत के जज्बात से जुड़े हुए थे।

भाई की बात चल पड़ी है तो बहना की भी बात होती है। लता मंगेशकर भारत की सुर सम्राज्ञी, उन्होंने 50s से लेकर आज तक अपनी आवाज से हर पीढ़ी को छू लिया। आएगा आने वाला, राजा की आएगी बारात और गाने तो अनगिनत है ही। उनके गाने सिर्फ सुर नहीं, एक भावना है। लता जी ने हर हीरोइन को अपनी आवाज दी और हर दिल को अपना बना लिया। जबकि किशोर कुमार एक अनोखा फनकार जिनके सुर में मजाक, मस्ती और दर्द सब कुछ था। जीवन के सफर में राही इना मीना डी का जैसे गाने देकर अपना अलग स्टाइल बना लिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी जिंदगी थी, कभी हंसाती कभी रुलाती। किशोर कुमार एक पूरी दुनिया

और 1950s के सुनहरे दौर की बात हो और मोहम्मद रफी का जिक्र ना हो, वो तो कहानी अधूरी ही रह जाती है। रफी साहब वो नाम है जिन्होंने अपनी आवाज से जज्बात का हर रंग जिया। खुशी, दर्द, इश्क, जुनून, वफादारी और देशभक्ति सब कुछ उन सुरों में समाया था। उनकी आवाज में एक रूहानी नरमी और इंसानी गर्मी थी। जब वो गाते थे तो लगता था जैसे दिल से निकला हर लफ्ज आसमान तक पहुंच रहा हो। रफी साहब एक ऐसे कलाकार थे जो सिर्फ गाते ही नहीं थे बल्कि जीते थे अपने हर

श्रोताओं, ये सभी कलाकार सिर्फ सिंगर्स ही नहीं थे, वे अपने दौर के जज्बात के आईना थे। उन्होंने संगीत को रूह से जोड़ा, हर सुर में एक कहानी लिखी और हर लफ्ज में मोहब्बत का एहसास भर दिया। 1950s के इन गायकों और गायिकाओं ने बुनियाद रखी, उसी पर आज का बॉलीवुड संगीत खड़ा है। उनके सुरों की महक आज भी हर दिल में घूमती है, जैसे पुरानी तस्वीरों में बसी यादें जो कभी पुरानी नहीं होती। शुभ रात्रि, प्रणाम।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।